सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: जिनेंद्र सोनी जी।
2: राधे राधे।
1: मर्जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मर्जी शाकाहार मेरे संस्कारों में है। मर्जी पर जब मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो तर्क कुतर्क करते हैं। मर्जी ऐसे में हम उनको
3: समय समझाएगा, उनको समय समझाएगा। जिनको संतों के वचन और सात्विक पुरुषों के वचन नहीं समझ में आते कि भाई मुर्गा बकरा इनमें सब में जीव है, आप इनको काटते हो इनको खाते हो, बोले मैं काटता नहीं, मैं दुकान से ले आता हूं, तो अगर आप ना खाओ तो वहां कटना बंद हो जाए ना, तो काटने का कर्ता प्रेरक भोक्ता इन सबको फल एक ही मिलता है, तो आप ना कहीं ना कहीं हिंसा में है और इसका जब दंड आएगा तो आपको भोगना पड़ेगा। देखो ऐसे ऐसे निर्दयी लोग हैं जो जिंदा पशुओं को जला करके उनका मांस खाते हैं।
1: कहते हैं दूसरे देश तो बहुत उन्नतिशील हैं।
3: हाँ तो क्या भोग मांस खाना शराब पीना इसको उन्नति समझते हो? अगर उन्नति समझते हो तो भ्रष्ट जीव हो तुम। क्या रुपया उन्नति है? आचरण पवित्र उन्नति है। यहाँ एक बार जिस स्त्री ने पुरुष का हाथ पकड़ लिया आजीवन निर्वाह किया, वह आज इसके साथ कल उसके साथ, पर हमारे देश का सदैव अनुकरण करते रहे अन्य देश वाले। आज हम गिर रहे हैं इसलिए कि हम अन्य देशों का अनुकरण करें। ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हमारे देश का नहीं, हमारे शास्त्रों का नहीं है, ये अन्य देशों से आया हुआ आचरण है जिसको आज स्वीकृति मिल गई है। अब देखो एक लड़की एक बॉयफ्रेंड से 10 दिन बाद ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड 20 दिन बाद उससे ब्रेकअप, तीसरा, इसको क्या बोलोगे आप? व्यभिचार प्रवृत्ति बोली जाएगी ना। अरे हम कह रहे हैं किसी लड़की को अगर ऐसा है तो एक बच्चे को वरण कर लो और उसके माता पिता से मिलके ब्याह करो, गृहस्थी में चले जाओ, कोई परेशानी नहीं। हम और पक्ष पे नहीं है, एक पक्ष पे दोस्ती करो, व्यभिचार मत करो, और जब तुम्हारी दोस्ती पक्की हो जाए तो फिर गृहस्थ धर्म में चले जाओ। फिर और जैसे गृहस्थ का प्रयोग होता है, एक आज हमारा जो गृहस्थ धर्म है बहुत संकट में है। मानो कई जगह व्यभिचार करने वाली लड़की, कई जगह व्यभिचार करने वाला लड़का, ये जब पाणी ग्रहण करेंगे तो मर्यादा में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पहले ही अपनी आदतें बिगाड़ चुके हैं। अब इनकी गृहस्थी कैसी रहेगी? पुरुष देख रहा है कि वो उनसे बात कर रहे हैं, वो देख रहा है उनके साथ जा रहे हैं, तो संबंध विच्छेद, संबंध का मिठास कहाँ रह गया, संबंध का भरोसा कहाँ रह गया, संबंध में विश्वास कहाँ रह गया, तो जीवन किस काम का? तो ये विदेश कोई उन्नतिशील नहीं है। आप क्या उन्नति मानते हो विदेश में? किस बात की उन्नति मानते हो? आनंद परमानंद कहाँ है? अगर यही उन्नति है तो हमारे पास विदेशी लोग आकर के क्यों बैठते हैं? क्यों जानना चाहते हैं कि तुम किस आनंद में हो? अरे तुम भारतवासी हो, अपने गर्व में रहो, अपने धर्म में रहो, अपनी महिमा में रहो, दूसरों की बातें मत देखो। ये संसारी पुरुष हैं, ये क्या जाने। केवल इतनी उन्नति है, अगर इतनी उन्नति है तो अपने भारत में पैसे की कमी नहीं है, एक से एक धनी है, तो क्या वो शांत है? अगर वो शांत है तो संतों के चरणों में क्यों जाते हैं? वो दान पुण्य धर्मात्मा आप क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि उसमें शांति नहीं है। शांति है दूसरों को सुख देने में, शांति है धर्म में चलने में, शांति है भगवान में। ये तो दूसरे केवल भोग योनि समझो, अन्य देशों में भोग योनि। उन्नति का मतलब क्या समझ लिया? उन्नति का मतलब रुपया होना, भोग भोगना, इतनी केवल उन्नति मानी जाती है क्या? ये तो नहीं।
2: महाराज जी मैं अध्यापक हूँ तो मेरे सामने इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन आती है। वहां पर जब इस तरह की बात की जाती है तो कुतर्क क्या आते हैं कि वो सामने से हमने उन्नति कर ली, हम बाहर जा रहे हैं और समाज में इतना गिरता जा रहा है कि पैसे को ही प्राथमिकता मान ली।
3: नहीं, वो हम कल भी कहा था एकांतिक में कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। तो अब क्या है, उल्टा है कि नहीं है? हाँ, तो अब ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है,
2: युद्ध की भी हो रही है।
3: हाँ, अब आप देखो बूढ़े माता पिता जिनको सुविधा चाहिए, जिनको तुम्हारा प्यार चाहिए, वो घर में सड़ रहे और तुम आनंद ले रहे हो देश विदेश में अपने कर्तव्यों का त्याग करके। तो विदेशी पद्धतियां हमारे देश की नहीं, हमारा धर्म प्रधान देश है। ये मूर्ख लोग हैं जो दूसरे का अनुकरण करके उन्नति उन्नति मानते हो, अपनी अवन्नति मानते हैं। अरे हम नमक रोटी खाते हैं लेकिन धर्म से जीते हैं। हम तो गए नहीं लेकिन जैसा सुना है।
4: नहीं, ऐसी है महाराज जी, मैं 25 साल से बाहर रह रहा हूँ लेकिन जो आप बोल रहे हो वो ऐसा ही है।
3: ऐसा ही है, हाँ, क्योंकि हमने सुना है, हम कभी गए तो है नहीं, हमें पता नहीं, तो फिर क्या मतलब, फिर क्या, तो क्या आप बताओ, देखो जैसे आप विदेश में रहते हो, क्या अपने देश का प्यार कहीं आपको मिलेगा? आप विचार करो, माँ से प्यार, भाई से प्यार, बहन से प्यार, पत्नी से प्यार, जो अपने देश की, अपने देश की एक मतलब रहनी है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। भला ऐसा कोई जीवन जीवन होता तुम जिसे उन्नति मान रहे हो, हमारे लिए वो तिरस्कार के योग्य है, हमारे लिए वो निंदनीय विषय है जिसे तुम उन्नति मान रहे हो। यही तो नौजवानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वही आचरण लाना चाहते हैं अपने देश में। तो नई पीढ़ी जो गिरती जा रही है, उसका कारण क्या? कितने बच्चे डिप्रेशन में हो रहे हैं,
2: बहुत बच्चे
3: हमारे सामने नौजवान आते हैं जो डिप्रेशन में हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? यही व्यभिचार, यही व्यसन, यही गंदा चिंतन। नहीं तो आप देखो, हम गांव में पैदा हुए हैं, पचासों गांव में ऐसे जो कुश्ती लड़ने वाले, पचासों गांव में स्वस्थ, कभी डिप्रेशन शब्द नहीं सुना, कभी डिवोर्स शब्द नहीं सुना, कभी हार्ट फेल शब्द नहीं सुना, मेहनत किए और आज ब्याह प्रेम संबंध होते और साल नहीं बीतता और डिवोर्स हो जाता है। ये क्या है, ये क्या चरित्र है?
2: महाराज जी, इसको सुधारने के लिए आप कुछ मुझे गाइड करें।
3: हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि अपने शास्त्रों को स्वाध्याय करके, जब तक अपने धर्म की गरिमा हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगी, तब तक आधुनिक पढ़ाई विदेशों की महिमा को समझेगा, आधुनिक पढ़ाई। और अगर अध्यात्म की बात आवे तो समझ में आ जाए। अगर हमारी बच्चियां सावित्री जी, अनुसुईया जी, इनके चरित्रों को पढ़े तो समझे, हमारे बच्चे धर्म से चलें, हरिश्चंद्र आदि के पावन चरित्रों को पढ़ें, धर्म से जो अपने जीवन व्यतीत करने वाले रहे। आप सोचो, एक कबूतर की रक्षा के लिए महाराज शिवी ने अपने शरीर को काट के रख दिया, और यहाँ कबूतर मुर्गा मुर्गी के लिए कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं। एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर को काट दिया महाराज शिवी ने, और तराजू पे रख दिया, उसको हानि नहीं होने दी कबूतर की, और आप जीवों का नाश कर रहे हो, कह रहे हो। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि अगर हम मुर्गा मुर्गी नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे जगत में, फिर इनका विनाश कैसे हो? तो विनाश का सेवा तो भगवान शंकर को है, पालन की सेवा हरि को है, और सृष्टि रचने की सेवा भगवान ब्रह्मा जी को है। तो ये मूर्ख लोग जानते नहीं। अगर नाम जप करें और 10 मिनट सत्संग को सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें तो जरूर बुद्धि परिवर्तित हो जाएगी। ब्रह्मचर्य की कमी के कारण हमारी बुद्धि रजोगुणात्मक होती चली जाती है और वो व्यसनों में उतर जाती है, और व्यसन और ब्रह्मचर्यहीनता ये धर्म रहित कर देते हैं। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारे राष्ट्र के भविष्य के सुधारने वाले हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्र के भविष्य बच्चे हैं। इन्हीं में कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, अगर ये चरित्रवान होंगे, धर्मवान होंगे, तो किसी भी पद में जाएंगे तो हमारे राष्ट्र की शोभा होंगे, राष्ट्र की सुरक्षा होंगे। और अगर भ्रष्ट पदाधिकारी हुआ तो नष्ट करने वाला ही होता है। तो बच्चे स्कूल से ही चरित्रवान बनते हैं, तो आप प्रथम गुरु हैं जो उनके चरित्र को प्रकाशित करने वाले हैं। तो आप प्रयास रखिए, भगवान से प्रार्थना करते रहिए और अध्यात्म को जोड़िए आधुनिक पढ़ाई के साथ। यदि अध्यात्म जुड़ेगा तो सुधार होगा। केवल आध्यात्मिक नहीं चल पाएगा क्योंकि उनको आधुनिकता की जरूरत है, और केवल आधुनिकता नहीं चल पाएगी क्योंकि अध्यात्म के बिना हाँ उसको सही ढंग सही मार्ग नहीं मिल पाएगा। पूरा अध्यात्म ही नहीं चला पाएंगे, वो तो हम लोगों का विषय है। केवल अध्यात्म में चलना, आधुनिक और अध्यात्म दोनों मिलके चलें तो बहुत समाज की उन्नति हो जाए।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए, गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-6575।
14: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
15: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
16: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
17: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
18: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
16: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
15: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
16: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
18: कॉल करें 87-894-18744।
19: श्रोता दोस्त सुप्रभात, प्रणाम। भक्ति गीत के बाद स्वागत बरोवा सबके कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल में। हम हैं राउर रेडियो दोस्त दीपाली। दोस्त लोग रउआ तो पता ही बा कि ई कार्यक्रम में हम लेके आवेनी अपना साथ घरेलू नुस्खा के खजाना, जैसे रउआ अपना स्वास्थ्य और सौंदर्य में चार चांद लगा सकता नहीं। तो आज भी ऐसा ही कुछ नुस्खा के साथ है बानी हम, तो चली शुरुआत करी आज के कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल के। दोस्त लोग सबसे पहले हम बताएं संवेदनशील त्वचा की देखभाल। दोस्त लोग सब प्रकार की त्वचा में संवेदनशील त्वचा की रख रखाव सबसे ज्यादा कठिन काम है। एकर कारण यह है कि कई बार ये पता ही न चल पावेला कि कौन तत्व से लाभ हुई और कौन से हानि हुई। ऐसे कौनो भी उपाय अपनावे से पहले त्वचा की जांच कईल बहुत जरूरी होला।

तथा कई बार भयानक समस्या की सामना करे के पड़ जाला। इस संदर्भ में एलर्जेटिक फैक्टर के अहम भूमिका होला। यदि कोनो उपाय एक बार कारगर सिद्ध हो जाए तो एकर मतलब ई नहीं है कि ऐसा उपाय सदा ही त्वचा खातिर लाभकारी बना रही। अतः चिकित्सा के मार्गदर्शन और परामर्श के बिना कोनो भी वस्तु के प्रयोग ना कर जाए तो बेहतर हुई। बहुतायत में देखे में आवेला कि कई प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग के बाद ऐसा पदार्थ से व्यक्ति के एलर्जी

दिखाई की मुहासा बहुतायत में विद्यमान रहेला या फिर सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग के बाद चेहरा पर लालिमा, खुजली, जलन, चमड़ी के रंग अचानक बदल गयी, फुंसी के हठात निकल आवल आदि लक्षण पैदा हो जाला। जौन व्यक्ति कील मुहासा के फोड़ देवेला उ लोग के चेहरा पर काला धब्बा पड़ जाला, फुंसी से खून और मवाद निकले लागेला और एक के बाद दूसरा मुहासा निकलते रहे के कारण चेहरा भद्दा और कुरूप हो जाला। तो यही से निजात पावे खातिर हम कुछ

दोस्त लोग अधिक चटपटा मिर्च मसाला युक्त खटाई और तेल युक्त व्यंजन के प्रयोग कदापि ना करी। मौसमी फल और हरा शाक सब्जी के प्रयोग अधिक करी। बासी भोज्य पदार्थ कभी ना खाएं। दिन में 2 से 3 घंटा के बाद 1 ग्लास पानी अवश्य पी। त्वचा के दिन में 3 से 4 बार दूध या मिनरल वाटर से साफ करी। कील मुहासा ना फोड़ी, ऐसे अन्य जगह भी संक्रमण फैल सकेला। बिना परीक्षण के कोनो दवा, लेप, सौंदर्य प्रसाधन या लोशन आदि के प्रयोग ना करी। इस प्रकार के प्रयोग से कई बार त्वचा संक्रमण युक्त हो जाला। जौन वस्तु के प्रति रउआ शंका हो कि एलर्जी होके की संभावना होके ओकर प्रयोग कभी ना करी। चेहरा सदैव दूध या स्वच्छ पानी से ही साफ करी।

या ओकरे द्वारा इस्तेमाल कइल दवा के प्रयोग ना करी। तो दोस्त लोग, अब हम बतावे जात बानी मिश्रित त्वचा की देखभाल, यानी तैलीय, शुष्क, संवेदनशील और सामान्य, यानी ई सब मिलल जुलल त्वचा की देखभाल। त्वचा में शुष्क और तैलीय दोनों गुण होला। दूसर इमे माथा, नाक तथा ठुड्डी तैलीय होला, परंतु सी जोन अर्थात गर्दन वाला भाग शुष्क होला। यही कारण संवेदनीय त्वचा की तरह एकर देखभाल भी एक टेढ़ा खीर है। तो चली ऐसे निजात पावे के हम बता दी कुछ उपाय।

ये रात के सोते से पहले मेकअप उतार दी। अधिक तैलीय पदार्थ के सेवन करे से बची। दिन में 3 से 4 बार चेहरा के अवश्य साफ करी। कौनो भी प्रसाधन के सावधानी से प्रयोग करी। एक अंडा लेके उसके सफेद और पीला भाग की अलग अलग फेंट ली। आज सफेद वाला भाग में एक एक चम्मच नींबू के रस और दही मिला के माथा नाक और ठोड़ी पर लगाई। पीला वाला भाग में एक एक चम्मच शहद और दही मिला के शुष्क त्वचा पर लगाई। आज दोनों लेप के लगभग 15 मिनट तक लगाए रह दी। अब बाद में ठंडा पानी से चेहरा धो ली। दोस्तों चली अब हम बता दी होंठ की देखभाल के कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी उपाय। होंठ के दांत से कांटे की प्रवृत्ति से सदा बची। ऐसन करे से होठ से खून बहेला गेला, घाव हो जाला और होठ सूज के लाल हो जाला। ये कारण कौनो वस्तु के खाए स्पर्श करे या पकड़े में दर्द होखल स्वाभाविक है। अधिक गर्म या ठंडा वस्तु के सेवन करे से होठ के सौंदर्य नष्ट हो जाला। ओकर रंग काला पड़ जाला जिससे सुंदरता नष्ट हो जाला। रात के होठ पर लिपस्टिक लगा के सूते से होठ के हानि होला। ऐसे सूते से पहले होठ से लिपस्टिक अवश्य हटा दी। लिपस्टिक के रगड़ के ना उतारी, नहीं एक समय कई प्रकार के लिपस्टिक के प्रयोग करी। ऐसे होठ के आकार बिगड़ेला और ओकर सुंदरता भी नष्ट हो जाला। होठ के साफ करे खातिर कभी भी ब्रश के इस्तेमाल ना करी, ना ही कोनो भी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त ब्रश या लिपस्टिक के प्रयोग करी, काहे कि ऐसे संक्रमण होकर संभव होला।

0: के प्रवृत्ति के परित्याग करी। दोस्त लोग ये सब करे से होठ की सुंदरता हमेशा बन रही। तो आज के इन नुस्खा के बारे में जरूर सोचें। तो अब हमरा के दिन यानी आपन दोस्त दीपाली के दिन जाए के विदा। हमार भेंट काल कुछ दूसर नुस्खा के साथ। तब तक सुनत रही रुआ रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75

0: तो हो सकता है कि कोई और पहले पहुंच जाए, फिर तुम रेस हार जाओगी।
1: मैं और हार जाऊंगी? मैं यहाँ के सारे पार्टिसिपेंट्स को भी हेल्प कर दूंगी ना, तो भी मैं पहले पहुंच जाऊंगी।
0: ये तो ओवर कॉन्फिडेंस है।
1: ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है। खैर तुम बोलो, करते क्या हो तुम?
0: मैं एक ट्रैवलर हूँ।
1: ट्रैवलर? ट्रैवलिंग से ज्यादा मजेदार तो ट्रैकिंग होता है। ट्रैवलिंग में क्या कर सकते हो? हाँ,
0: मैं तो ट्रैवल करते करते नए लोगों से मिलता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, कहानियाँ, शिव की कहानियाँ सुनाता हूँ।
1: शिव की कहानियाँ? इंटरेस्टिंग, मुझे भी सुनाओ।
0: हम अगर ऐसे बात करते करते जाएंगे तो रेस हार जाओगी ना।
1: अरे डोंट वरी, मैं फर्स्ट जरूर आऊंगी, और तुम मेरे साथ चल रहे हो ना, तुम सेकंड तो आ ही जाओगे। रास्ता काफी लंबा है, तुम कहानी सुनाओ, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा।
0: वैसे तुम्हें देखकर एक कहानी याद तो आ रही है।
1: अच्छा सुनाओ मुझे।
0: तुमने महाभारत के बारे में तो सुना है ना?
1: ऑफ कोर्स, करण, अर्जुन, कुरुक्षेत्र, आई नो या।
0: दैट्स कूल। ये अर्जुन की कहानी है। जब पांडव वनवास में थे तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से पशुपति यानी शिवजी से पशुपत अस्त्र हासिल करने के लिए कहा, और अर्जुन तुरंत शिव की साधना में लग गया।

0: इतनी गहरी साधना? हे युवक, कौन हो तुम?
1: मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ ऋषिवर, प्रणाम।
0: आयुष्मान भव पुत्र, परंतु तुम किसके लिए इतना भारी तप कर रहे हो?
1: जी, महादेव के लिए, उनके पाशुपत के लिए।
0: पर तुम जैसे युवक को पाशुपत की क्या आवश्यकता बड़ी पुत्र? और फिर शिव के दर्शन सरल नहीं है, उनसे पाशुपत पाना तो असंभव के समान है।
1: मुझे ज्ञात है इस बात का ऋषिवर, किंतु मैं एक क्षत्रिय हूँ ऋषिवर, हार मानना मैंने सीखा नहीं है। फिर चाहे वो युद्ध हो या तपस्या, पाशुपत तो मैं लेकर ही रहूंगा।
0: आयुष्मान।

0: प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो डमरू के नाद में डूबे हैं। तनिक एक बार इस युवक की ओर तो देखें, कैसी घोर साधना कर रहा है ये आपकी।
1: साधना इच्छा शक्ति और आत्मबल से ही पूरी होती है पार्वती।
0: इस बात में कोई दो राय नहीं है स्वामी, किंतु ये युवक साधारण साधक नहीं लगता, घोर तपस्या है इसकी। लगता है ये आपका बहुत बड़ा भक्त है। आप तो यूं ही असुरों को, मनुष्य को वरदान देते फिरते हैं, तो फिर इस युवक ने आपको अब तक प्रसन्न क्यों नहीं किया?
1: प्रिय, तुम ही तो कहती रहती हो कि मैं भोलेनाथ हूँ और सभी को वरदान देता हूँ। तो मैंने तुम्हारी बात पर विचार विमर्श किया और सोचा कि अब से ऐसा नहीं करूँगा। परंतु अगर इसने तुम्हें प्रसन्न किया है तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी साधना में कितनी श्रद्धा है।

0: कैसा भयानक शुकर है।
1: भागो युवक, अपने प्राण बचाओ।
0: अरे वो देखो, कुछ वनवासी भी उस शुकर के पीछे पड़े हैं।
2: रुकिए ऋषिवर, मैं अभी एक क्षण में शुकर का अंत कर दूंगा। ये जानता नहीं मैं कौन हूँ।
3: रुक जा बालक, मैं करता हूँ इसका अंत।
2: ये क्या किया तुमने? ये मेरा शिकार था, अर्जुन का शिकार था। ये तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस पर बाण चलाने का?
3: अर्जुन? कौन अर्जुन? मैं तुम्हें नहीं पहचानता, और तुम्हें इतना अहंकार किस बात का है?
2: मूर्ख वनवासी,

0: तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। इस आर्य व्रत का सर्वश्रेष्ठ धनुधर पांडु पुत्र अर्जुन हूँ मैं। तूने जो दुस्साहस किया है उसके लिए मैं तेरे प्राण भी ले सकता हूँ। शूकर का न सही, तेरा अंत कर दूंगा। भाग जा यहाँ से।
1: मैं भाग जाऊं? जो तुझे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है तो रुक क्यों गया? बाढ़ चला, साहस है तो प्रहार कर मुझ पर।
0: मुझे तो मैं ये ले। आ, ये क्या हो रहा है मुझे? इस वनवासी के प्रहारों से मैं कैसे घायल हो सकता हूँ? रुक जाओ, रुक जाओ।
1: क्या हुआ सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? एक साधारण वनवासी के आगे हार रहा है तू? क्या हुआ, टूट गया तेरा भ्रम अहंकारी अर्जुन? इस क्षत्रिय ने हार मान ली?
0: क्षमा करें मुझे, मैं समझ गया हूँ। आप कोई साधारण वनवासी नहीं है, कौन है आप बताएं मुझे।
1: पर अब तक तो तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहते थे।
0: हाँ, मैं कहता था क्योंकि ये संसार मुझे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता रहा, मेरे झूठे अभिमान को पालता पूछता रहा। मुझ पर कृपा करें।
1: उठो अर्जुन, भूलो मत तुम एक क्षत्रिय हो और योग्य भी। मैं शिव हूं, ध्यान से देखो मेरा ये स्वरूप। मैं यहां तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम्हारा अहंकार तोड़ने आया था।
0: आप मेरे आराध्य, मेरे आराध्य महादेव। धन्य हो गया मेरा जीवन, धन्य हो गया प्रभु।
1: हाँ अर्जुन, मुझसे हार कर भी तुमने मेरा हृदय जीत लिया। तुम सच्चे क्षत्रिय हो और सच्चे साधक भी। एक तुम ही हो जो शक्तिशाली होकर भी सर झुकाना जानता है। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ वत्स। मांगो, अपना इच्छित वर मांगो।
0: हे पशुपतिनाथ, आपकी जय हो। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अपने इस भक्त पर कृपा करें देवाधिदेव, अपना आशीर्वाद दे मुझे सत्य की स्थापना के लिए, अन्याय और अधर्म के अंत के लिए मुझे महाअस्त्र पाशुपत प्रदान करें।
1: तथास्तु।
0: धन्य है महादेव, आप धन्य है। ये कुरुवंशी अर्जुन आपके चरणों में प्रणाम करता है महादेव।
1: विजयी भव।
2: अब मैं सच्ची थक गया हूं। अर्जुन बचपन से सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने की तारीफ सुन सुनकर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, लेकिन शिवजी ने उसे एहसास दिला दिया कि वो कितना गलत है।
3: कहानी इंटरेस्टिंग है।
2: तुम किस सोच में पड़ गई हो?
3: नील, मैं भी कुछ अर्जुन की तरह हूँ ना, ओवर कॉन्फिडेंट।
2: देखो नैना, मेरा मानना है कि अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो आप में चाहे जितना भी टैलेंट हो आप कुछ सीख नहीं पाओगे।
3: सही कह रहे हो नील, अभी से मैं भी ट्रैकिंग को सीरियसली लूंगी। आई विल वर्क हार्ड एंड प्रैक्टिस रेगुलरली।
2: वैसे नैना।
3: हाँ बोलो नील।
2: मैं फिनिश पॉइंट तुमसे पहले पहुंच गया हूँ, ये देखो।
3: क्या? अरे तुम मुझसे सिर्फ एक ही कदम आगे हो और वही एक लाइन फिनिश लाइन है। मैं कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और रेस लाइन पर ध्यान ही नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, आज सेकंड आऊंगी।
2: तुम सेकंड नहीं, फर्स्ट हो।
3: क्या? पर तुम तो मुझसे पहले।
2: दरअसल मैं इस रेस का पार्टिसिपेंट ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ ट्रैकिंग का मजा लेने आया था, इसीलिए तुम अब भी फर्स्ट हो।
3: क्या बात कर रहे हो नील, पता है मैं पहले भी कई बार ट्रैकिंग कर चुकी हूँ, कई रेसेस मैंने जीते भी है और मैं कभी इतना खुश नहीं हुई। पहली बार मैंने पूरा ट्रैक एंजॉय किया और ऊपर से जीत भी गई।
2: और हार के जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं।
3: बट थैंक यू नील।
2: अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये तो शिवजी का कमाल है। चलो मैं भी चलता हूँ।
3: कहाँ?
2: मैं ट्रैवलर हूँ और ट्रैवल करने जा रहा हूँ।
3: हम फिर कब मिलेंगे?
2: मैं तो तुमसे वही मिलूंगा जहाँ शिव मिलेंगे, अमरनाथ। हो सके तो आकर मिल लो।
3: ओके नहीं, सी यू।
2: हर हर महादेव।
4: कहीं कैरम खेल रहा था तो किसी बाबा ने ये फरमाया, नशे में चूर होकर खोद रहा था कबर अपनी, होश आया तो बेहोश हो गया। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत छोटा सा फर्क होता है। बड़ू, अगर कॉन्फिडेंस है तो जिंदगी में अपन बहुत आगे जा सकते हैं, और ज्यादा शाना बना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो जीती हुई बाजी भी हार सकता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से आती है अकड़, और अकड़ तक होने भाई मुर्दा। खैर, अरे बड़ू याद नहीं क्या वो कछुआ और खरगोश की कहानी? ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप खरगोश बन जाए और कछुआ आपसे समझ गया तू आगे निकल जाए। शिव अहंकार से लड़ना सिखाते हैं, शिव हर हाल में शीलता सिखाते हैं। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैनपट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
11: स्टूडियो 5 एन इस्लामिक रेकॉर्ड लेबल। For more updates, subscribe channel and press bell icon. So-

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महा

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। भीमराव अंबेडकर विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पुलिस ने किया बरामद। आगरा का एक युवक बना लुटेरी दुल्हन का शिकार। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से कई गांव हुए प्रभावित। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय हथुआ का निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ, कल्याण पदाधिकारी गोपालगंज और प्रखंड विकास पदाधिकारी हथुआ सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में संचालित शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम एवं दैनिक दिनचर्या की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए उनके पठन पाठन, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं तथा खेलकूद से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही विद्यार्थियों के नियमित स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था के संबंध में भी अधिकारियों और विद्यालय प्रबंधन से जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों के लिए संचालित जीविका दीदी की रसोई का भी निरीक्षण किया। रसोई में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का भी उन्होंने जायजा लिया। विद्यार्थियों से भोजन की गुणवत्ता और नियमित उपलब्धता के संदर्भ में भी आवश्यक जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विद्यालय की आधारभूत संरचना का भी जायजा लिया। आवश्यकतानुसार भवन एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं की मरम्मति कार्य कराने का भी निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया। छात्रावास में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और आरओ मशीन को भी निर्धारित समय पर बदलने का निर्देश दिया गया। नगर थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सहबाजवा गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक बुजुर्ग का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि ट्रेन के चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई है। हालांकि मृतक की पहचान पुलिस के द्वारा नहीं हो सकी। आसपास के लोगों से भी पता करने का प्रयास किया गया, परंतु स्थानीय लोगों के द्वारा भी मृतक की पहचान नहीं की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद सुरक्षित हॉस्पिटल में रखा है और मृतक की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को अंदेशा है कि मृतक शायद ट्रेन यात्रा के दौरान ही ट्रेन से गिरकर मरा होगा। हालांकि इस मामले में अब तक आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। गोपालगंज जिले में भी लुटेरी दुल्हन गैंग सक्रिय हो गया है। इसके पहले भी मामले सामने आए हैं और इस बार फिर से थावे मेला परिसर से एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि लुटेरी दुल्हन का गैंग आगरा के एक युवक को अपना शिकार बनाया है। आगरा निवासी दिलीप कुमार की शादी कराने के लिए थावे लाया गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ विधि विधान के साथ लड़की से शादी कराई गई। इसके बाद लड़की अपने साथियों के साथ गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित दिलीप कुमार ने बताया कि शादी के लिए 1,20,000 रुपए उनसे लिए गए थे। 7 अगस्त को थावे दुर्गा मंदिर में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन होटल लौट आए। घर जाने के लिए गाड़ी बुलाया गया। जाने के दौरान बाइक सवार कुछ लोगों ने दूल्हे के परिजनों से मारपीट की और दुल्हन को अपने साथ लेकर फरार हो गए। कथित लुटेरी दुल्हन गैंग की जानकारी होने के बाद पीड़ित परिवार स्तब्ध हो गया। इसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। हालांकि इस कांड को लेकर पुलिस के तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया खबरों में प्रसारित जानकारी के अनुसार थावे माँ भवानी के मंदिर परिसर में ही शादी कराई गई थी और गैंग के लोग अपने सदस्यों के साथ दूल्हे के परिवार को चूना लगाकर फरार हो गए। शादी के नाम पर दूल्हे से नगदी रुपए भी लिए गए। इसके अलावा दुल्हन को जो भी गहने और जेवर इत्यादि दिए गए थे वह सब दुल्हन लेकर फरार हो गई। अब पीड़ित परिवार पुलिस से इस मामले में सहायता की गुहार लगा रहा है। नेपाल के क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण गोपालगंज में भी गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि हो रही है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी में हुई जलस्तर की वृद्धि से निचले इलाके के कुछ गांवों में पानी घुस गया है। सदर प्रखंड के रामनगर में हंदिया जगीरी टोला खाप मकसूदपुर कमल चौधरी का टोला रामपुर टेंगराही और राजवाही समेत कई गाँव पानी से घिरे हैं। माझा प्रखंड के भी निमुइया गाँव में गंडक का पानी प्रवेश कर रहा है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक गाँव के स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र हेल्थ सेंटर और प्लस टू विद्यालय पानी में डूब गए हैं। करीब 2 दर्जन गांवों का सड़क संपर्क भी जिला और मुख्यालय से टूटने की बात सामने आ रही है। नीचे उफनती गंडक नदी के वजह से इलाके के लोगों में दहशत है और दियारा इलाके के लोग बताया जा रहा है कि इलाके में कुछ जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी सड़कों पर भरा हुआ है जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर कहीं आना जाना पड़ रहा है। पानी के वजह से जलीय जंतु का भी खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोग प्रशासन से भी सहायता की गुहार लगा रहे हैं। जादोपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि धर्मपुर की ओर से चोरी की मोटरसाइकिल लेकर गमहरिया के मंगलपुर पुल के रास्ते नौतन की ओर कुछ लोग जा रहे हैं। पुलिस ने मंगलपुर पुल के पास वाहन जांच अभियान शुरू किया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार पुलिस वाहन को देखकर भागने लगे। पुलिस ने सूझबूझ के साथ घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में चंदन कुमार पिता राजकुमार महतो और विपिन कुमार पिता मंगल बीन, ये दोनों बिशंभरपुर के रहने वाले हैं। पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उक्त मोटरसाइकिल चोरी की है। पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर माले के नेता और अधिवक्ता आजाद शत्रु के जेल जाने के बाद अब गोपालगंज के जिला विधिज्ञ संघ ने 10 अगस्त को सीजेएम कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा अधिवक्ता आजाद शत्रु को जेल भेजा गया और इससे नाराज अब जिला विधिज्ञ संघ ने 10 अगस्त को सभी अधिवक्ताओं के साथ सीजेएम कोर्ट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। जादोपुर के गंडक नदी में एक युवक के डूबने की सूचना मिली है। इसके वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना स्थल पर इकट्ठा सैकड़ों की भीड़ एसडीआरएफ की टीम के साथ सर्च अभियान चला रही है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन चल रहा है। भैंसही के बलुही बाजार स्थित गंडक नदी पुल के पास की यह घटना बताई जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में कुचायकोट के मठिया हरदो पंचायत भवन पर मानसिक बीमार और बौद्धिक अक्षमता व्यक्ति योजना 2024 और स्थायी लोक अदालत का गठन आदि विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पैनल अधिवक्ता हैदर अली के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक अक्षमता, इसके लक्षण, ऐसे व्यक्तियों के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के रहने के तरीके, मानसिक बीमार एवं बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के इलाज हेतु सदर अस्पताल के अलग वार्ड की व्यवस्था और उन्हें मिलने वाली विधिक सहायता इत्यादि के बारे में आवश्यक जानकारियां दी गई। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने 41 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने ओवर ब्रिज के पास वाहन जांच करते हुए मोटरसाइकिल सवार शराब तस्कर को पकड़ा। पकड़ा गया आरोपी संतोष कुमार पंडित, पिता चंद्रिका पंडित, साकिन हरपुर टेंगराही थाना मोहम्मदपुर का निवासी है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर आरोपी को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर भोरे थाना की पुलिस ने कल्याणपुर मुसहर टोली में डीजे पर नाच के दौरान हुई मारपीट के मामले में 3 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 19/6/2026 को यहां डीजे पर डांस के दौरान मारपीट हुई थी। इस घटना में कुछ लोग घायल हुए थे। इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था और नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने आरोपियों को दोषी पाते हुए बिरजू सहनी, पिता जवाहिर सहनी, विशाल सहनी, पिता जवाहिर सहनी और पंकज राजभर, पिता हरिलाल राजभर, ये सभी साकिन कल्याणपुर भटवलिया थाना भोरे के रहने वाले हैं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और अब इन पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों ने मारपीट की घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। बरौली थाना की पुलिस ने देवापुर में ग्रामीण बैंक के सामने खड़े एक ट्रैक्टर से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बैटरी चोरी करने के मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की। इस दौरान ग्रामीण बैंक के सामने ट्रैक्टर से बैटरी चोरी होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। इसी बीच मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इस चोरी के कांड में संलिप्त संदिग्ध की पहचान की। आरोपी का नाम अंकु कुमार, पिता रंजन सिंह उर्फ टुन्ना सिंह, साकिन देवापुर बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ की गई, जिसके बाद अंकुश कुमार सिंह ने बैटरी चोरी होने की बात स्वीकार की। आरोपी के निशानदेही पर चोरी की गई ट्रैक्टर बैटरी को बरामद किया गया, जिसके बाद अब इसे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। कुचायकोट पुलिस ने भी चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गश्ती के दौरान भटवां मोड़ पर वाहन जांच शुरू किया था। इसी दौरान आरोपी मोटरसाइकिल लेकर भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर जब इसको पकड़ा और जांच पड़ताल की गई तो यह मोटरसाइकिल चोरी की निकली। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सुमित कुमार, पिता श्रवण साह, साकिन मठिया दयाराम, थाना कुचायकोट के रूप में बताया जा रहा है। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद चोरी की मोटरसाइकिल को जब्त कर इस मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। भीमराव अंबेडकर विद्यालय का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात बुजुर्ग का शव पुलिस ने किया बरामद। आगरा का एक युवक बना लुटेरी दुल्हन का शिकार। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से कई गांव हुए प्रभावित। चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: रेडियो रिमझिम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, आप सबके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े हर्ष की बात है कि प्रत्येक रविवार को संध्या 7:45 पर और रविवार को सुबह में 7:10 पर आपका संदेश मिला कार्यक्रम का रेडियो रिमझिम 90.4 के माध्यम से प्रसारण होता है। यह कार्यक्रम अपने प्रिय श्रोताओं के सुझाव, मार्ग निर्देशन का अनुपालन करते हुए हम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में विशेष करके युवा साथी अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं और वही श्रोता आपका संदेश मिला में अपना संदेश भेजते हैं जो रेडियो को नियमित और लगातार सुनते हैं। जमाना बदल गया, सुनने और समझने का तरीका बदल गया, नई नई चीजें आने लगी, विज्ञान अपने तकनीक में बहुत विकसित हो गया और आने वाले समय में और विकसित होगा। रेडियो दुनिया का एक ऐसा यंत्र है कि पूरे भारतवर्ष में 98% जनसंख्या के पास अपनी आवाज को पहुंचाता है, चाहे वह कॉमर्शियल रेडियो हो, आकाशवाणी हो, कम्युनिटी रेडियो हो या और अन्य कोई यंत्र हो, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम एक दूसरे के भावना

करते हैं और कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो रिकॉर्डेड है उसे भी हम प्रसारित करते हैं। हम यह चाहते हैं कि सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचे, जिला प्रशासन के गतिविधियों की भी जानकारी हालचाल के माध्यम से देते रहते हैं। लोगों के पास अपना बैठकर सिनेमा देखने का समय है, अब जो है ज़्यादा मोबाइल पर लोग जो है रील देखना पसंद करते हैं जो 10 से 20 सेकंड का हो और आगे बढ़ते जाए। तो अपने कार्यक्रमों का हम भी संक्षेपण करते गए और विविध कार्यक्रमों का प्रसारण रेडियो रिमझिम से करते रहते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, शनिवार के रात में अचानक कोई तकनीकी व्यवधान आ गया जिसके वजह से शनिवार के रात में और रविवार के सुबह में हम अपना प्रसारण नहीं कर पाए। इसके लिए हम अपने पूरी टीम के साथ सभी श्रोताओं के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। आज जो तकनीक का युग है, बहुत सारे तकनीक अपनाया जा रहा है, बहुत सारे चीज़ जो है जानकारी में है, कुछ नहीं जानकारी में है। दिन प्रतिदिन विज्ञान प्रगति कर रहा है, नए नए टूल्स भेज रहे हैं, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो कभी कभार रेडियो रिमझिम को भी परेशानी हो जाता है। जो उसके जानकार हैं बुलाया जाता है, वे ठीक ठाक करते हैं, फिर हम अपना कार्य शुरू करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हम अपने परम आदरणीय श्रोताओं के बातों को अंगीकार करते हैं, मानते हैं। कई हमारे श्रोता हैं जो मिलना चाहते हैं, अपनी बातें कहना चाहते हैं। ईश्वर ने सबको 24 घंटा दिया है, उसी में आपको हर गतिविधि करना है और कम से कम समय में बेहतर रिजल्ट देना है। आने वाले समय में और ज़्यादा कंपटीशन प्रतियोगिता बढ़ने जा रहा है। दुनिया का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, खेल हो, पढ़ाई हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिसमें कंपटीशन दिन रात बढ़ते जा रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए हम भी अपने कई कार्यक्रमों का संक्षेपण करते हुए प्रसारण करते हैं और हम अपनी आवाज़ जो है 3-4 तरह से बाहर भेजते हैं। आप हमें रेडियो पर सुनिए, गूगल के प्ले स्टोर में ऐप डाउनलोड करके मोबाइल पर सुनिए, इंटरनेट से सुनिए। यदि आप रेडियो रिमझिम के 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं तो बिना इंटरनेट से छोटा मोबाइल से आप हमें सुन सकते हैं। हमने ऐसी व्यवस्था की है ताकि कोई भी हमारी आवाज़ से वंचित न रहे, सुनते रहे। रेडियो पर हर तरह का कार्यक्रम दिया जाता है, आप अपने मन पसंद के अनुसार कार्यक्रम को सुन सकते हैं। जैसे प्रत्येक रविवार को हेलो क्विज कॉन्टेस्ट है, यह कार्यक्रम जो है युवाओं में एक प्रतियोगी बनने की क्षमता को उभारता है। हम कैसे किस प्रश्न का उत्तर दें, इन सब बातों के लिए हमारे यहाँ के आरजे इस कार्यक्रम का निर्वहन करती हैं और बहुत सारे हमारे युवा साथी इसमें भाग लेते हैं। वैसे रेडियो रिमझिम द्वारा इसमें उम्र का बंधन नहीं दिया गया है, आप चाहे किसी उम्र के हों, यदि आप अपने ज्ञान को या आप अपनी योग्यता को परखना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे हालचाल का प्रसारण होता है, जिसमें अपने जिले के सभी गतिविधियों की जानकारी दी जाती है और हम लोग नकारात्मक सूचना से बचते हैं, सकारात्मक सूचनाएं देने का प्रयास करते हैं। आज जो है हालचाल सुनने वालों की संख्या रेडियो पर लाखों में हो गई है और बहुत सारे हमारे आदरणीय श्रोता हैं जो रेडियो रिमझिम के YouTube पर जो आता है हालचाल गोपालगंज सुनते हैं। हमने देखा है कि उसकी संख्या कई हजारों में होती है। बड़ा अच्छा लगता है, एक सरकार के पास भी संदेश जाता है कि रेडियो रिमझिम को सुनने वालों की संख्या लाखों में है। आपको पता ही है पिछले
आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हमने बताया था कि भारत सरकार की एक टीम आई थी और वह जो है रेडियो रिमझिम के 15 किलोमीटर आवर्ती में रेडियस में वह गांव गांव घर

0: और नगर परिषद क्षेत्र में घूम घूम कर पूछा कि इस परिवार में कितने लोग रेडियो सुनते हैं, कितने लोग टीवी देखते हैं, कितने लोग दिन रात मोबाइल चलाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने रेडियो रिमझिम के पक्ष में अपनी बातों को रखा। उसमें से कई वीडियो, ऑडियो, फोटो रेडियो रिमझिम को भी मिला है। यह सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। जब आप किसी काम में निरंतर और लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता तो मिलना ही है। मान लिया जाए हम किसान हैं, धान जो है पानी में डूब गया, बाढ़ आ गया, एक साल बारिश काफ़ी हुआ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दूसरे साल अपने धान को नहीं रोपेंगे। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। रेडियो रिमझिम का मानना है कि व्यक्ति कितना हूँ पढ़ ले लिख ले, लेकिन जब तक उसे सही दिशा निर्देश नहीं मिले, अस्पष्टता नहीं मिले, अपने बातों को सही जगह पर रखने की परख नहीं हो, तो वह विद्वता जो है कमजोर पड़ने लगता है। आज भी हम देखते हैं कि हमारे कई युवा साथी हैं जो अपने बातों को मजबूती से और सच्चाई से रखते हैं। कोई भी बात कहने से पहले आपको उसके कसौटी पर सही होना पड़ेगा। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल होता है, आत्मसंयम होता है, वह व्यक्ति सफलता के शिखर पर जाना है। जीवन के कई दशक पूरा करने के बाद मैंने अनुभव किया है कि यदि सच्चाई के साथ आप हैं और उस बात को किसी को कहते हैं तो उसके दिल आत्मा तक पहुंचेगा। लेकिन आप केवल भाषण देकर निकल गए तो वह कहीं नहीं पहुंचेगा। जिस तरह हवा का झोंका आता है और चला जाता है, तो जीवन में हम यदि सत्य के साथ हैं तब हमारा आत्मबल, आत्मसम्मान बना रहेगा। जीवन में पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट आदमी खत्म कर दे, अपना आत्मसम्मान खत्म कर दे। पैसा के लिए यदि आप खत्म कर दिए तो वह व्यक्ति मृत के समान हो जाता है। व्यक्ति का सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान बहुत ही जरूरी है। इसे किसी भी हाल में बनाए रखना चाहिए। व्यक्ति जहाँ काम करता है, जहाँ रहता है, उसके प्रति भी जिम्मेवारी होती है। कल हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारे पास कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगा। कल हम किसी संस्थान में नहीं रहेंगे, कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगा। लेकिन जब हम कहीं से जुड़े हैं तो वहाँ पर जो है अपना मर्यादा, अपना सम्मान और संस्थान का सम्मान रखना चाहिए। यही सही माने में मानव शक्ति है, मानव बल है, आत्मसम्मान है। कई बच्चे पूछते हैं कि आत्मसम्मान क्या है। जो व्यक्ति अपने आप को सम्मान दे और दूसरे के प्रति भी आदर और सम्मान रखे, वही व्यक्ति बेहतर होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, जिले के विभिन्न जगहों से आप लोगों का भी बहुत सारा संदेश आया है। मिस्टर सोनू जी पढ़ेंगे और मैं अपने पूरी ईमानदारी से उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद
1: जी। सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुंचा हुआ है मेरे पास बनारसी सिंह जी का, अहिरौली से लिखे हुए हैं, मैं रेडियो रिमझिम का बहुत पुराना श्रोता हूं। मुझे सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, विशेषकर सोटी बिरजा भार रामायण मुझे बहुत पसंद है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे ग्रामवासियों को, पंचायतवासियों को और आपके परिवार के सभी लोगों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। रेडियो रिमझिम का सुबह 5 बजे से रात को 11:10 तक विविध कार्यक्रम चलते हैं, जैसे निर्गुण हुआ, सोठी बिरजाभार हुआ, कजरी हुआ, बिरहा हुआ। प्रत्येक दिन नए नए कार्यक्रम चलते हैं और हमारे श्रोता को विभिन्न कार्यक्रम बहुत पसंद आते हैं। हम जो कार्यक्रम का संरचना करते हैं या प्रसारण करते हैं, इसमें

0: हमारे टीम का यह पूरा प्रयास होता है कि हम लोग जब क्षेत्र भ्रमण करने जाएं तो बात के सिलसिले में लोगों का भी विचार लेते रहे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें निर्गुण सुनाया जाए, उसका समय बढ़ाया जाए। कुछ लोग ऐसे हैं जो भोजपुरी गीतों को पसंद करते हैं। कुछ हमारे ऐसे श्रोता हैं जो पुराने से पुराने गीतों को बहुत पसंद करते हैं। तो जो हम लोग का साप्ताहिक भ्रमण होता है रेडियो रिमझिम परिवार का, गोपालगंज जिले के 14 ब्लॉक और 2 अनुमंडल में, तो यह सब जब बातें निकल कर आती है तब हम अपने चार्ट पर सूची में उन सब कार्यक्रमों का स्थान देते हैं। केवल स्टूडियो में बैठकर हम यह नहीं सोचते हैं कि भारत की कहानियां सुनाएं, HQC हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का कार्यक्रम चलाएं। यह सब हम अपने श्रोताओं के बीच पहुंचकर बातें करते हैं। कुछ हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, वे भी अपने विचारों को देते हैं। कुछ गैर सरकारी सरकारी विद्यालय में कार्य करने वाले शिक्षक हैं, स्टाफ हैं, वे भी अपने बातों को बताते हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरह सूर्य का प्रकाश, वर्षा का पानी और हवा सबके लिए बराबर जाता है, उसी तरह रेडियो रिमझिम को सुनने वाले सभी उम्र वर्ग के लोगों के पास उनके पसंद का कार्यक्रम हम प्रेषित करें। कभी कभार तो ऐसा होता है कि तकनीकी व्यवधान से जब रेडियो रिमझिम का प्रसारण रुक जाता है तो कई सेवानिवृत्त रिटायर्ड व्यक्ति फोन करते हैं कि आपका प्रसारण क्यों नहीं हो रहा है। जैसे हमने बताया कि शनिवार के रात में ठीक 9:02 पर हमारा तकनीकी व्यवधान इतना बड़ा हो गया जो रात में ठीक नहीं हो पाया। जो हमारे टीम के लोग हैं रात को 2 तक बनाते रहे, फिर अगले दिन वे लोग कोई घर नहीं गए, सब लोग लगे रहे, तब जाकर हमारा प्रसारण शुरू हुआ। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रसारण लगातार निरंतर होता रहे, लेकिन जो काम जो मशीन कभी कभार हमें डिस्टर्ब कर देता है उसके आगे हम लोग बेबस और लाचार हो जाते हैं। और हम लोग का मानना है कि जब तक हमें ईश्वर ने आपका सेवा करने का अवसर दिया है तब तक अपना 100% लगाकर हमारी टीम देती रहे, क्योंकि सेवा का अवसर हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में नहीं मिलता है। कोई जनप्रतिनिधि बनकर सेवा करता है, तो कोई विद्यालय का शिक्षक बनकर सेवा करता है, तो कोई सरकारी कर्मचारी बनकर सेवा करता है, और वह समझता है कि सब हम अपने आप कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि विधि के विधान के अनुसार आपको सेवा करने का अवसर मिलता है, क्योंकि हम लोग के ऊपर जो बैठा मालिक है वह जानता है कि कौन व्यक्ति किस क्षेत्र में कौन सा अच्छा काम कर सकता है, उसे ही अवसर देता है। इसलिए आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा कोई अन्य कार्यक्रम आप सुनना चाहते हैं तो जरूर इसी तरह संदेश देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है पड़रिया से राजा राम प्रसाद जी का, लिखे हुए हैं, सर नमस्कार, रेडियो रिमझिम का निर्गुण और कजरी गीत बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर के बच्चे ऑनलाइन शो में भी जुड़ते हैं। मेरे पूरे परिवार के तरफ से रेडियो रिमझिम परिवार को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्रवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और नमन है। सावन का बड़ा ही पवित्र महीना सनातन धर्म में माना जाता है। इस महीना में कई प्रकार की विधि विधान द्वारा पूजा की जाती है। बिहार

0: से 105 किलोमीटर कांवर लेकर हमारे कांवरिया भाई बाबा बैजनाथ धाम जाकर जल भी चढ़ाते हैं। विभिन्न राज्यों में इसी तरह की प्रक्रिया चलती है। वैसे सावन का महीना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें किसी तरह का मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। मछलियाँ भी अंडा देती है इस समय, और जब भी कोई पर्व त्योहार होता है तो यदि वैज्ञानिक विधि से उसका कारण देखा जाए तो बड़ा ही स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। हमारे जो पूर्वज थे वह बहुत ज्ञानी थे, मेरा मानना है उनके पास ज्ञान का भंडार था। अक्षर ज्ञान भले ही कम हो लेकिन उनकी सोचने की क्षमता, उनकी परखने की क्षमता हमसे बेहतर थी। और विशेष करके जो हमारे पूर्वज थे वह निस्वार्थ भाव से अपने कार्यों को करते थे। कई जगह हमने देखा है कि गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे गांव में तालाब पोखरा बनवा देते थे। यदि गांव में जाने का रास्ता पानी से भरा रहता था तो उस पर मिट्टी डलवा देते थे। यानी जन सेवा की भावना निस्वार्थ भाव से हमारे पूर्वजों में थी। और सावन की जो आपने शुभकामना दी है हम अपने पूरे टीम के साथ सहर्ष स्वीकार करते हैं। और सावन का एक बड़ा ही मशहूर गीत है कजरी, जो प्रतिदिन शाम को 4:25 से 5 तक रेडियो रिमझिम द्वारा प्रसारित किया जाता है। उसके पहले निर्गुण चलता है, उसके बाद कजरी शुरू हो जाता है। और सावन में विशेष करके महिलाएं झूला झूलती हैं, हरा रंग का कपड़ा पहनती हैं। यानी उत्सव भरा महीना सावन को माना जाता है। हर धर्म में, हर मजहब में इसे बड़ा ही अच्छा माना जाता है जहाँ तक हम जानते हैं। और हमारे यहाँ का प्रसारित कार्यक्रम आपको बेहद अच्छे लगते हैं, यह जानकर हमें संतोष हुआ कि जो हमारी टीम लगातार मेहनत कर रही है और आप लोगों द्वारा साबशी शुभकामनाएं, बधाइयां देते हैं, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है और ज़्यादा काम करने की ललक पैदा होती है। उम्र चाहे कोई भी हो लेकिन यदि व्यक्ति ठान ले तो वह सफलता के शिखर पर चला जाएगा। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य में 80 बरस के बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठा लिए थे और अंग्रेजों का पीछा करते करते गंगा नदी पार किए। संयोग से उनके हाथ में गोली लगा और उसी हाथ को काट के वह जो है गंगा माँ को अर्पित कर दिए। तो उम्र चाहे कोई भी हो, यदि आपके अंदर आत्मबल है, काम करने की क्षमता है, जीवन जीने की ललक है तो आप मजबूती से आगे बढ़ते रहिएगा। उम्र जो है एक नंबर है, एक संख्या है। और काम करने का मन नहीं है तो आप 18-20 साल के हैं, आपको हर काम में बोझ लगेगा। जैसे पिताजी कह दिए गिलास पानी ले आवो तो इनकर यह काम बा, बैठल बैठल खाली यार हावत रह ले कि पानी ले आवो, चाय ले आवो। यह जो है सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा अपने को रफ्तार में रखें, जरूरत के अनुसार पैदल चलें, साइकिल चलाएं, बाइक चलाएं, लेकिन नियम और कायदे के साथ। एक हिंदी में कहावत है कि जो व्यक्ति हमेशा कायदे में रहता है वह हमेशा फायदे में रहता है। तो जीवन जीने का ढंग है, उत्सव मनाने का ढंग है। यदि हम सोचने लगे कि हमारे पैर में दर्द है, नहीं चला जाएगा, हमारा माथा टंटना रहा है, क्या करें, तो सोचते रह जाइएगा। उसके लिए उसका इलाज कीजिए, उपचार कीजिए, क्योंकि यह जीवन जो है बड़े भाग्य से, सौभाग्य से मिला है। इस जीवन को उत्सवपूर्ण बनाएं और निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है सबनम खातून का। रेडियो रिमझिम टीम को सलाम, मैं गोपालगंज की बेटी हूं। मेरा शादी पड़रौना उत्तर प्रदेश में हुआ है। मैं अपने मायके में रेडियो पर और ससुराल में ऐप पर सुनती हूं। बचपन से रेडियो रिमझिम से जुड़ाव रहा है। आज भी रेडियो रिमझिम अपने परिवार जैसा लगता है। दिन प्रतिदिन नए कार्यक्रम नए आरजे को सुनने को मिल रहा है, अच्छा लगता है। रात के समय में छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय शबनम जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बेटी को एक ना एक दिन माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जाना ही है, यह प्राकृतिक नियम है। जिस नियम का आपने अनुपालन किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आप एक बेटी के तरह गोपालगंज में रहते हुए रेडियो रिमझिम को शानदार तरीके से सुना और आज अपने ससुराल में ऐप के माध्यम से सुनती हैं। यह रेडियो रिमझिम परिवार के लिए गौरवपूर्ण बातें हैं। मेरा मानना है कि बेटियां कहीं भी जाएं, लेकिन अपने माँ बाप का घर जो है भूल नहीं पाती है, जीवन के किसी भी दौर में पहुंच जाए। हमें आज भी याद है कि आज से 50-60 साल पहले जब हम लोग काफ़ी बच्चे हुआ करते थे तो अपने दादी के मायके जाते थे कभी कभार, जो मेरे घर से 15 से 20 किलोमीटर था। तो जब जाते थे और उधर से लौट कर आते थे तो दादी माँ कहती थी, कौन मिला, क्या खाया, हमको कौन कौन याद कर रहा था। यह सब बातें आज भी मेरे स्मरण में है, यादों में है। तो बेटी चाहे अपने माँ बाप से भी धनवान पूंजीवान के घर में चला जाए, लेकिन जो माँ बाप का घर होता है, जहाँ जन्म स्थान होता है, वहाँ बेटियाँ उसको भूल नहीं पाती हैं। यह मेरा भी अनुभव रहा है। हम जो है अपने माताजी के साथ कभी कभार मामा जी के घर जाने का अवसर मिलता था तो देखते थे कि 3 किलोमीटर दूर से ही माताजी जो है चिल्लाना शुरू कर देती थी, माँ बाप का नाम लेना शुरू कर देती थी। एक लगाव होता है, एक प्रेम होता है और इस प्रेम को आप बनाए हुए हैं। यह रेडियो रिमझिम परिवार के लिए बहुत ही खुशी की बात है। बेटी दुनिया में जहाँ भी रहे, लेकिन अपने घर परिवार मायके को याद रखे, यह बड़ा ही सौभाग्य की बात है। आप रेडियो रिमझिम से फरमाइश किए हैं कि छोटी छोटी कहानियों को भी सुनाया जाए, तो मेरा मानना है कि रेडियो रिमझिम में सोठी बिरजा भार, इसके अलावा कई कार्यक्रम है जो रात में बुधवार को भी चलते हैं। इतने कार्यक्रम हैं कि हम भी कभी कभी विस्मित हो जाते हैं। जब चार्ट देखते हैं तब याद पड़ता है, जैसे विक्रम बैताल, भारत की कहानियाँ। कोई कार्यक्रम सुबह में है, कोई शाम में है और दिन में तो ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं, तो इन सब कहानियों को आप सुने। इसके अलावा भी कोई कहानी यदि आपके दिल दिमाग में है तो जरूर अपने संदेश के माध्यम से पहुंचाएं, क्योंकि रेडियो रिमझिम श्रोताओं के आदेश का अनुपालन करने में अपनी पूरी क्षमता लगा देता है। बस इतना ही ध्यान रखता है कि भारत सरकार ने एक मार्ग निर्देशिका दिया है, उसी के अनुरूप हमें कार्यक्रमों का प्रसारण करना है और हम लगातार लंबे समय से करते आए हैं और इसी अनुपालन के करते हमें भारत सरकार द्वारा भी पूरे भारतवर्ष में प्रथम पुरस्कार मिला था। यह आपको पता ही है, क्योंकि जो व्यक्ति लंबे समय से रेडियो रिमझिम को सुनता है, यहाँ के प्रत्येक गतिविधि के बारे में उसे जानकारी होती है। आपका संदेश काफी अच्छा लगा, जो हमें मरमराहत कर दिया। आप खुश रहें, अच्छे रहें और रेडियो रिमझिम 90.4 को सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है।

0: जितेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी का कैलगढ़ से रेडियो रिमझिम परिवार को नमस्कार है। सुबह का भजन और शिव जी की कहानी तथा शुक्रवार को शाम को रामायण बहुत अच्छा लगता है। मेरा सुझाव है कि कजरी का समय बढ़ाया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
1: आदरणीय कुशवाहा जी, आपके पूरे परिवार को, पूरे कैलगढ़ के निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने जो कजरी के बारे में बताया तो हमारे कई श्रोताओं का अनुरोध आया था कि सावन के महीना में कजरी रेडियो रिमझिम में जरूर बजता है, तो उसका टाइम हम लोगों ने 40-45 मिनट का रखा है, जो प्रतिदिन शाम को 4:15 से शुरू होकर 5 तक बजता है, केवल रविवार को छोड़कर, क्योंकि रविवार को ऑनलाइन कार्यक्रम होता है जो 2 से 5 तक चलता है, और शनिवार के शाम को कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण हमारा प्रसारण रुका था, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। इसलिए इस बात को बार बार कहते हैं कि जो काम तकनीक पर आधारित है, कभी न कभी कुछ कमियां फॉल्ट हो जाता है, उसके लिए हमारे श्रोता बहुत व्याकुल हो जाते हैं। रेडियो रिमझिम के ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, फोन पर लगातार संदेश फोन आना शुरू हो जाते हैं, और जब तकनीकी व्यवधान आ जाता है तो हमारे पास कोई जानकारी देने का साधन नहीं रहता है। फिर भी हम चाहते हैं रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर इस बात को लिख कर डाल दें कि तकनीकी व्यवधान के कारण प्रसारण रुका हुआ है, यही एकमात्र उपाय होता है। तो आपने जो जिस जिस कार्यक्रम के बारे में बताया जे आपको अच्छा लगता है, यह सुनकर हमें भी अच्छा लगा, और जो कार्यक्रम का अभी आप समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसे कम से कम 1 किया जाए सावन भर। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण आपने बात कहा कि सुबह का भजन और शिव पुराण काफ़ी अच्छा लगता है, तो यह सब तो आप लोगों के मांग के अनुरूप हम प्रसारित करते हैं। यदि इसके अलावा और कोई कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो संदेश के माध्यम से हमें अवगत कराइएगा। हम सेवक हैं और सेवा भाव से अपना काम करना चाहते हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। रेडियो रिमझिम एक छतरी है जिसके अंदर रहकर हम लोग काम करते हैं, और आप लोग जैसे आदरणीय श्रोता हैं जो रेडियो रिमझिम को पूरे भारतवर्ष में रेडियो के क्षेत्र में एक ब्रांड बना दिए हैं। आज भी जब हम कुशीनगर, देवरिया या पटना जाते हैं और कहते हैं कि गोपालगंज के रेडियो रिमझिम में हम काम करते हैं, तो लोग बड़े ही आदर और सम्मान से देखते हैं। यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है कि हमारी पहचान जो है रेडियो रिमझिम से है। तो आप बेझिझक होकर अपने बातों को हम तक पहुंचाएं, और हम पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि अपने श्रोताओं के आदेश का अनुपालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है नवीन कुमार मिश्रा जी का, लिखे हुए हैं, मैं गोपालगंज में सरकारी सेवा में हूं, मुझे रेडियो का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, मैं भी रेडियो से जुड़ना चाहता हूं, कोई रास्ता बताए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे परिवार को और गोपालगंज में जिस विभाग में भी आप सेवा दे रहे हैं वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को भी रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग ऐसे हैं आज भी गोपालगंज जिले में पदस्थापित हैं, जो कभी कभार आकाशवाणी पटना में या आकाशवाणी बनारस में या आकाशवाणी गोरखपुर में काम किए हैं। प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करके पदाधिकारी या स्टाफ सिलेक्शन से निकाल कर स्टाफ बन गए हैं, लेकिन उनके अंदर एक ललक रहती है कि रेडियो पर बोलना, रेडियो के बातों को

0: सुनना अपने आप में बड़ा ही अच्छा होता है। हम एक ऐसे पुलिस अधिकारी को जानते हैं कि वह जो है अधिकारी बनने से पहले जब प्रतियोगी परीक्षा में थे तो आकाशवाणी पटना में वह कभी कभार अपना इंटरव्यू या वार्ता करने जाते थे। संयोग से एक बार मुलाकात हुआ और वह अपने अनुभव को शेयर किए। एक महिला पदाधिकारी थी जो आकाशवाणी से जुड़ी थी, बाद में पदाधिकारी बन गई। तो जीवन में आगे बढ़ने का कई रास्ते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाए और उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहता है और यह अच्छी बात है। लेकिन कभी कभार जीवन एक ऐसा करवट लेता है कि आपको जिस क्षेत्र में बेहतर बनना है आप वहां न जाकर किसी दूसरे क्षेत्र में पद और प्रतिष्ठा बड़ा मिल जाता है जो अपने मन के भावना को दबा देते हैं। यह हमने महसूस किया है। पिछले कई वर्षों से रेडियो संचालक होने के नाते कई तरह के लोगों से मिलना जुलना बातें करने का अवसर मिला है। फिर भी यदि आप सरकारी सेवा में हैं, यदि सरकार का कहीं कोई रुकावट नहीं है तो रेडियो में आप भेंट वार्ता इंटरव्यू या बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मेरे समझ से आरजे के रूप में आप न समय दे पाएंगे, न प्रशिक्षित हो पाएंगे, न कार्यक्रम में जा पाएंगे। लेकिन रेडियो से जुड़ने का कई तरीका है। यदि आपको बेहतर स्क्रिप्ट लिखने आता है तब भी जुड़ सकते हैं। यदि एक अच्छा वक्ता हैं तो किसी न किसी विषय पर बोल सकते हैं। चूंकि सरकारी सेवा का अपना एक प्रावधान होता है जिसका अनुपालन सरकारी सेवा में रहते हुए सभी व्यक्ति को करना पड़ता है, तो आप एक बार स्वयं आकर मिले तब हम खुलकर आपसे बात करेंगे। और रेडियो रिमझिम तो जितने लोगों का अवसर दिया है हमें नहीं लगता है कि वह कोई दूसरा रेडियो स्टेशन इतना अवसर दिया होगा। आज रेडियो रिमझिम में काम करने वाले कई लोग जो है पदाधिकारी बने, संविदा पर काम करने लगे, शिक्षक बने, आकाशवाणी में किसी निजी चैनल में गए हुए हैं। जिनके पास जो अनुभव होता गया वह कदम दर कदम आगे चलते गए, यह अच्छी बात है। लेकिन उनके मन में रेडियो रिमझिम के प्रति आदर और सम्मान है और जिसके पास यह चीज होता है वह जीवन में जरूर तरक्की करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है प्रवीण कुमार दुबे जी का, मीरगंज वार्ड नंबर 10 से। मैं रेडियो रिमझिम का सुबह और शाम का हालचाल प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार सुनता हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी स्वच्छ तथा स्पष्ट प्रसारण रहता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें। साथ ही देखे तो मेरे पास कई संदेश हैं लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा लें।
0: आदरणीय प्रवीण जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमें लगता है कि व्यवसाय के क्षेत्र में आप हैं, क्योंकि अधिकतर व्यवसायी वर्ग जो है सुबह और शाम रेडियो रिमझिम सुन पाते हैं। कई व्यवसायी भाई ऐसे हैं जो अपने दुकान में रेडियो रिमझिम को लगातार बजाते हैं। और आपने बताया कि सुबह और शाम का हालचाल प्रादेशिक और राष्ट्रीय समाचार सुनते हैं, तो हमारा उद्देश्य यहीं पर पूरा हो गया। मेरा भी मानना है कि जो व्यक्ति 15 मिनट का राष्ट्रीय समाचार सुन लिया उसे पूरे संसार का हालचाल मालूम हो गया और जो प्रादेशिक समाचार सुन लिया उसे बिहार के 38 जिले का सूचना मिल गया, और जो हालचाल सुन लिया अपने जिले के 14 ब्लॉक और 2 अनुमंडल का सूचना उसे प्राप्त हो गया, और यह काफी अच्छी बात है। कहा जाता है कि सूचना जिसके पास जितना अधिक होगा वह अपने जीवन में तरक्की उतना अधिक करेगा। हमने एक कहानी पढ़ा था स्पेन में कि स्पेन एक देश है जहाँ पर हर बात की सूचना त्वरित गति से कई माध्यमों से लोगों के पास पहुँच जाता है, और सूचना के पाने से व्यक्ति जो है अपने आप में पूर्ण हो जाता है। और रेडियो रिमझिम का मानना है कि कम से कम गोपालगंज जिले में जितने लोग रहते हैं वह किसी न किसी माध्यम से सरकार की सूचनाओं की जानकारी उनके पास पहुँचे, और सरकार क्या करना चाहती है, जिला प्रशासन द्वारा क्या किया गया है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी घटना घट रही है, इसकी जानकारी हमें रखनी चाहिए। हमने यहाँ तक सुना है कि जो भी व्यक्ति पदाधिकारी बनना चाहता है, UPSC हो या BPSC की परीक्षा हो, इंटरव्यू का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और सामान्य ज्ञान तो अनंत है। जिस तरह हमारा आकाश जो है जिसका कहीं अंत नहीं है, उसी तरह मेरा मानना है कि सामान्य ज्ञान भी अनंत है, लेकिन फिर भी जो मोटी मोटी बातें हैं उसे तो आत्मसात करना ही होगा। आप प्रवीण जी रेडियो रिमझिम को सुनते हैं और निरंतर सुनते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सबसे अच्छी बात है आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, जो हमारे आदरणीय श्रोता अपनी बातें हम तक पहुंचाते हैं उससे रेडियो रिमझिम परिवार का मनोबल जो है काफी ऊंचा हो जाता है। हमें नहीं लगता है कि केवल हम एक तरफा संवाद कर रहे हैं। जिस तरह प्रचार गाड़ी को हम लोग देखते हैं कि शहर में आया और एक तरफ से बोलते और दूसरे तरफ चला गया, कोई सुना कोई नहीं सुना, लेकिन रेडियो रिमझिम का दो तरफा संवाद जो है हमें यह बताता है कि हमारे सुनने वाले लोग पदाधिकारी हों, कर्मचारी हों, किसी भी सरकारी गैर सरकारी सेवा में हों, या किसान हों, जवान हों, सिपाही हों, कोई भी हो जो हमें सुनता है और अपने बातों को हम तक पहुंचाता है। हमारा मानना है कि सबके विकास के साथ ही पूरे देश का विकास होता है, इसलिए आप अपनी बातों को हम तक पहुंचाते रहें ताकि हम लोग मिलजुल कर अपने प्यारा देश भारत को मजबूत बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता बंधु, RJ सोनू जी ने बताया कि समय भी समाप्त हो रहा है, तो अब हमें भी निकलना चाहिए, और हम लोगों के देश का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार 15 अगस्त आ रहा है। हम अपने घरों पर, दुकानों पर, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर, कार्यालय में, हर जगह तिरंगा फहराएंगे और इस राष्ट्रीय पर्व को पूरे उत्साह से मनाएंगे। यह एक सरकारी छुट्टी के तरह नहीं मनाना है। हम सरकारी सेवा में हैं या गैर सरकारी सेवा में हैं, लेकिन हमें अपने घरों के ऊपर झोपड़ी हो, पक्का हो, दो तल्ला हो, तीन तल्ला हो, लेकिन हर घर पर तिरंगा फहरना चाहिए ताकि हमें लगे कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर इस राष्ट्रीय त्यौहार को पूरे उमंग और उत्साह से मना रहे हैं। आज का दिन आपका मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे अब जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़ गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291, और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं, उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714 86164।
4: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
5: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
6: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
7: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
8: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।
10: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: सुनिए,
12: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
11: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
12: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
11: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा, मिला ही नहीं
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
11: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
11: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी
9: सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान

0: दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
7: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
8: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
7: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
7: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
8: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
7: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
8: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
7: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
8: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
11: अच्छा तो हम चलते हैं।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर की पुरानी सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: जा।
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूद जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा।
3: साले डर गया, ट्यूब लाई
2: साले इतने हंसाया, तू कूद गया।
3: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

सब ठीक चल रहा था, या हम ऐसा सोचते थे। उन पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दीप्ति रमन से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे यात्रा का नेतृत्व। प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए चार विभागों को मिलाकर एक निदेशालय बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए हर महीने आयोजित होंगे सहयोग शिविर। मौसम विभाग की आज कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी। और राजस्थान में आयोजित 42वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पटना के श्रियांश यादव ने जीता कांस्य पदक। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित ये यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। इस तिरंगा यात्रा में राज्य सरकार के कई मंत्री, विधायक, अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे। इधर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। अभियान के दौरान वंदे मातरम का सामूहिक गायन, रक्तदान शिविर, तिरंगा प्रदर्शनी, सेल्फी विद तिरंगा और तिरंगा रंगोली सहित अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। तिरंगे की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: यात्रा को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह पूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वह भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। एक रिपोर्ट।
3: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिए चार विभागों को मिलाकर एक निदेशालय गठित करेगी। इसमें शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और युवा रोजगार एवं कौशल विभाग को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। श्री चौधरी ने कहा कि शिक्षा और परीक्षा में सुधार के लिए 2 राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये समितियां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराने के साथ ही परीक्षाओं को सुचारू, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कार्य करेंगे।
4: पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार जैसे बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक महीने सहयोग शिविर लगाया जाएगा। इस शिविर में मंत्री और वरीय पदाधिकारी शिक्षण संस्थानों में जाकर छात्रों से संवाद करेंगे।
4: ये सजेशन के तौर पर उनको पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यदि 30 दिन में हमने निदान नहीं किया तो मैं बिहार के नौजवानों को छात्रों को स्पष्ट करता हूं कि उसके मुख्यमंत्री के लेवल पर महीने में एक बार छात्रों के लिए अलग से सहयोग शिविर भी चलाने का काम।
0: राज्य के सभी नवगठित 211 डिग्री महाविद्यालयों में नियुक्त संविदा शिक्षकों का कॉलेजवार और विषयवार आवंटन कर दिया गया है। लोक भवन सचिवालय के अतिरिक्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में विश्वविद्यालयों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। लोक भवन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शिक्षकों को आज आवंटित महाविद्यालयों में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वी कामेश्वर राव के नाम की अनुशंसा की है। केंद्र सरकार की मंजूरी और नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालेंगे। श्री राव पटना हाईकोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
5: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 1,100 रूपए मासिक पेंशन की राशि DBT के माध्यम से भेजेंगे। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, बिहार निशक्तता पेंशन योजना समेत 6 योजनाओं के लाभार्थियों को भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव तथा समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद रहेंगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन भुगतान करना सुनिश्चित किया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल EIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वरनाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरिया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। मॉनसून के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आज कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 10 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग एवं दक्षिण भाग के कुछ स्थानों पर जबकि उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाकों में कुछ जगहों पर आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है। कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है।
0: इधर मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया और गया जिले के मदनपुर में भारी बारिश हुई। इस अवधि में गलगलिया में सबसे अधिक 128.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत प्रदेश में पंच सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि इस सम्मेलन में मुखिया, पंच और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हो रहे हैं। लोगों को इस योजना की जानकारी देने के उद्देश्य से प्रदेश भर में 15 अगस्त तक यह सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अरविंद कुमार पनघड़िया ने कहा है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य को अपनी नीतियों और कार्य प्रणालियों में आवश्यक सुधार लाने की जरूरत है। बिहार लोक भवन में आयोजित विशेष व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। व्याख्यान में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश साझा करते हुए कहा कि जो खेलेंगे वे आगे बढ़ेंगे। उन्होंने नागरिकों से हमेशा भारत का उत्साह बढ़ाने की अपील की।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: राजस्थान के जयपुर में आयोजित 42वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पटना के युवा तैराक श्रेयांश यादव ने कांस्य पदक हासिल किया है। श्रेयांश यादव ने बालक 100 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में 1 मिनट 2 सेकंड और 5 नैनो सेकंड का समय लेते हुए यह उपलब्धि हासिल की। स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 33 राज्यों के लगभग 550 तैराकों ने हिस्सा लिया। बेगूसराय जिले के मंझौल में अनुमंडलीय अस्पताल में घायल मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिनव प्रदर्शी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। साथ ही उनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए उन्हें मूल पदस्थापन मटिहानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि एक मरीज के इलाज के दौरान उसके पैर में गत्ते लगाए जाने से संबंधित समाचार सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले में संज्ञान लेते हुए यह कार्यवाही की। पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र के मसौढ़ा के पास सोनर में कार के पलटने से दो भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरवल जिले के उसरी गांव निवासी के रूप में की गई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शिक्षा से जुड़े चार विभागों का एक कल्याण निदेशालय होगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, मेटा को भारतीय कानूनों का ही करना होगा पालन। दैनिक भास्कर ने TRE-4 भर्ती से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, 2000 शिक्षक बढ़ेंगे, गणित और विज्ञान में सबसे ज्यादा। प्रभात खबर ने लिखा है, पटना समेत 18 जिले मानव तस्करी के हाई रिस्क जोन में, बिहार से महाराष्ट्र तक फैला जाल। आज अखबार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन सेवाओं से राजस्व मामलों के निष्पादन में आई तेजी। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, JPSC के तीनों सदस्यों का इस्तीफा, 10 अगस्त से CID करेगी पूछताछ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे यात्रा का नेतृत्व। प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए चार विभागों को मिलाकर एक निदेशालय बनाया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए हर महीने आयोजित होंगे सहयोग शिविर। मौसम विभाग की आज कैमूर, रोहतास और किशनगंज जिले के कुछ भागों में भारी बारिश की चेतावनी। और राजस्थान में आयोजित 42वीं सब जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में पटना के श्रेयांश यादव ने जीता कांस्य पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939951 पे।
6: Now pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.
7: Hello.
6: Pick it up.
7: Hello.
6: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
1: एफएम। थैंक यू और नमस्ते आपको।
2: नमस्ते,
1: अनिल बात कर रहे हैं टुडे।
2: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया, अपना बताइए।
2: हम भी अच्छे हैं।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
2: कुछ नहीं, बस आप सभी से बातें हो रही हैं।
1: और गाना सुनना है?
2: बता दीजिए कौन सा गाना।
1: राज मूवी का कोई भी गाना सुना दीजिएगा।
2: राज मूवी का कोई भी सॉन्ग?
1: हाँ, दीनो मौर्या और बिपाशा बसु, जिसमें से वो वाला दूसरा का।
2: और गाना बता सकते हैं कोई उसमें का?
1: उसमें सभी गाने अच्छे हैं, कोई भी बजा दीजिएगा।
2: जी जी, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ, सभी दोस्तों को और जो नहीं पहचानते हैं पहचानते हैं।
2: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मैं मोहम्मद सिराज रिशन बात कर रहा हूँ, संकोई रात कुशीनगर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: जी मैं बढ़िया हूँ, अपना बताएं।
1: हम भी बढ़िया हैं। नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ नाश्ता हो गया, खाना भी हो गया।
1: तो कौन सा गाना
0: आपका?
1: से है
0: आज सुना दीजिए, आवाज़ गाना।

0: बहुत अच्छा लग गा रहे हैं आप। वैसे गाना किसी को डेडिकेट है?
1: और कितने भी लोग सुनने वाले हैं?
0: जी जी,
1: आज शाम को चल जाएगा ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रेमबो 90.4 FM।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से।

0: जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
1: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
0: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
1: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
0: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
2: कॉल करें 70-70-75-63-100 या 70-70-75-42-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंगटोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
7: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
8: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
7: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911।

0: 9991 तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: कमरान नसीब डिस्ट्रिक्ट सिवान से ले।
1: हाँ जी, कैसे? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं अच्छा है, नाश्ता तो हो गया।
1: नाश्ता हो गया है।
2: मैं तो बारिश हो रहा है दिल्ली में।
1: अच्छा, अभी आपकी तरफ बारिश हो रहा है?
2: हाँ, अभी हो रहा है।
1: अभी तो इधर बहुत गर्मी है और धूप भी निकला हुआ है।
2: कल भी हुआ था बारिश, गर्मी तो यहाँ दिखा।
1: और बता दीजिए गाना कौन सा सुनिएगा आज?
2: फिल्म का नाम है मदर इंडिया।
1: और गाने की दो
2: गाना है गाड़ी वाले गाड़ी धीरे गाड़ी वाले गाड़ी धीरे।
1: अच्छा जी, और गाना जो रिपीट हुई है
2: जी सबसे पहले आप समीर आलम मुकेश भाई भादर बर्जू सुमित रविंदर उमर सुनी प्राम जगन कर सभी समीर आलम सेना हाजिरा अजा पन्नी नवनी और जेबुला हुसैन कितने लोग हैं सर? ओके नमस्कार।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किए कि मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 FM में।
0: भारती मैम,
1: हाँ
0: आप कैसी हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक है मैम। तो खाना खा कर आई है?
1: खाना खा के आते हैं। आप बताइए, आपका नाश्ता हो गया?
0: जी मैम, नाश्ता हो गया।
1: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी मैं पवन सिंह का जो है कि गाना ये जीजा जगले जगले बहार हरावा, शंकर भगवान को गाना सुनना है मैम।
1: जी जी, और सॉन्ग डेडिकेट भी है किसी को?
0: जी मैम, आपसे तो पहले बार बार गया है, एक बार बात हुआ था कोई भक्ति गाना पे, हे गुरुदेव आप प्रणाम आपको चरणों में, हम आपके पास कॉल किए थे, मैंने एक बार वही बात हुआ था, उसके बाद भी आपसे बात नहीं हुआ था। दो तीन बार फोन किए थे तो मुनरमा मैम उठाई थी तो उनसे बात हुआ।
1: जी जी,
0: सबको सबको डेडिकेट है मैम।
1: ओके, वैसे आप रेडियो रिमझिम कब से सुन रही हैं?
0: मैम हम मैंने छोटे छोटे बच्चे थे लो तो सन तो याद नहीं है कि कावना सन में सुने थे, मगर ना पहले नोकिया का मोबाइल था सादा से, ऊपर भी है वो नहीं तार वो नहीं होता है FM, अरे सुनते हैं लोग
1: फोन,
0: हाँ ईयरफोन, तो वो भी हम बजा लगा कर सुनते थे, मेरा मायका है जवान में महादेवा तो वहाँ पर भी सुनते थे, और यहाँ पे मैंने कभी कभार सुनते थे, बीच में टीवी आ गया तो टीवी देखना चालू कर दिया, बंद हो गया, फिर टीवी खराब हो गया तो मैंने ये चालू हो गया।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: मानी की अकेले हैं तो कोई तो मनोरंजन चाहिए, बच्चा सब तो पढ़ने चला गया है।
1: चलिए
0: आप लोग
1: बोलिए,
0: आप बोल रहे हैं कि आप लोग तो लगता ही नहीं है कि बिना जान पहचान से बात कर रहे हैं, लगता है कि कोई अपना है।
1: हाँ हाँ, बात करने से जानने पहचानने से हो जाता है।
0: जी मैम जी,
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 92.4 FM।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमज जैट पर।
10: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
11: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
10: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
11: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
12: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो
13: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 असम में। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
13: मैं भी ठीक हूँ।
9: हम सभी ठीक है। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
13: मुझे गाना सुनना है ये तुमको इंतजार में।
9: एक बार और बता दीजिए, थोड़ा स्लो बोलिएगा।
13: किसका है ये तुमको इंतजार में?
9: अच्छा जी, और गाना किसी को डेडिकेट है? बिल्कुल गाइए।
13: कोई मुश्किल कोई परेशानी आए, गले लगे कुछ ठीक नहीं हालात।

0: आप तो बहुत अच्छा गाती हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: आप जब भी फरमाइश कीजिएगा तो गा के ही बताइएगा।
1: थैंक यू।
0: गाना डेडिकेट हुई है किसी को?
1: टेली मैम को।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मतलब।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर।
0: अच्छा, बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: जी जी जी।
0: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जी पिटर का नाम है हम।
0: और गाने के बोल?
1: गाने के बोल है कागज कलम दबादला लिख दूं दिन तेरे नाम पर।
0: ओके, और गाना डेडिकेट है?
1: सोनी मैम को है, भारती मैम को है, मनोरमा मैडम को है, और गोपाल ओझा जी है, जीतन धाकड़ जी है, गजराज सिंह लोधी जी है, ये सभी को गाना डेडिकेट है।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है।
1: सॉन्ग कब आएगा ये? कल के आज?
0: आज ही आएगा।
1: ठीक है मैडम जी, धन्यवाद।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
0: वेलकम।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
5: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
11: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
11: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: Now pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
13: Pick it up, pick it up.
14: Hello.
13: Now pick your phone up.
14: Hello.
15: Jab phone gindi bajti hai to kehte hain hello.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो,
18: गुड मॉर्निंग मैम।
17: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
18: जी, मैं सुधीर कुल बोल रहा हूँ, कोरिजुमा जिला देवघर, झारखंड से मैम।
17: हाँ जी, कैसे हैं आप?
18: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
17: हम भी अच्छे हैं
18: जी। सोनी मैम आई ATM में?
17: ये तो मुझे मालूम, मैं नहीं बता सकती, ये मैनेजमेंट बताएगा हमारा।
18: जी जी जी, बुधवार को मैम फोन लगी थी मेरा, बोला की आज अल्लाह टाइम में लगाएंगे, 12:26 में लगी रही हुई, लेकिन कॉल को इग्नोर कर दिया गया, उसके बाद स्विच ऑफ हो गई।
17: अच्छा
18: जी,
17: कोई बात नहीं, आज तो लगा ना।
18: जी जी, आज तो लगी।
17: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
18: आज पुरानी फिल्म का गाना सुनना है मैम, जीने की राह फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज़ में।
17: और गाने के बोल कुछ बताएंगे?
18: जी जी जी, बता रहा हूँ, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत गाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए।
17: और सॉन्ग डेडिकेट भी है
18: जी। सबसे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रंजन को, लिसनर को और जितने भी रेडियो रंजन के प्यारे प्यारे श्रोतागण हैं, सबको दिल से सुनाना चाहता हूँ। और कुछ हमारे साथी सब भी हैं, मदन कौल हैं, विष्णु कौल है, राजकुमारी है, जुगल कौल है, कमली कौल है, राजीव रोशन, रोहित कुमार सिंह, शशिधर प्रसाद यादव, विष्णु प्रसाद यादव, भोलाना कौल, संजय कौल, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
17: ओके चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रमझम 90.4 एफएम।
18: जी मैम, कॉल रिसीव करने के लिए धन्यवाद मैम।
17: वेलकम।
2: नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसे हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक है।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: फोन लगा रही थी, लग रहा था कि आज नहीं लगेगा।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लग जाएगा।
0: लगाते लगाते 11 बजे से लगाते लगाते अभी ऐसा लग रहा है।
1: अच्छा, वैसे कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: और सब बताइए।
1: और सब तो बढ़िया है, आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
0: सब ठीक है। और आपका खाना हो गया है?
1: हाँ हाँ मेरा हो गया है।
0: चलिए सब ठीक है, कॉल लीजिए अब आराम से। मैम उस दिन गाना फरमाई थी बुधवार को, कब दूसरा गाना बजा दी।
1: अच्छा, तो वो कॉल मनोरमा जी रिकॉर्डिंग की थी, अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा गाना बजाई है वो।
0: हम फरमाए थे जी आले मकुन वरण जी, तो आप दूसरा गाना बजा दी। अच्छा है, हम सॉरी, हम जा रहे हैं कि हम मनोरमा मैम बोल रहे हैं।
1: नहीं नहीं
0: चलिए तो ठीक है, दूसरा गाना बजा दी।
1: कोई
0: फरमाई थी दूसरा गाना,
1: इस बार बता दीजिए बजा दिया जाएगा।
0: तो संतोषी माँ का गाना बजा दीजिए।
1: संतोषी माँ का भक्ति सॉन्ग तो मतलब उतना नहीं बजाते हैं लोग, भक्ति सॉन्ग भी अगर हो तो फिल्म का गाना चलता है इसमें।
0: आज बजा दीजिए,
1: कोई मूवी का ही गाना बता दीजिए।
0: मदद करो संतोषी मारा।
1: अच्छा, और गाना डेडिकेट है?
0: जी मैम, आपको और सोनी मैम को, दिव्या मैम को और मनोरमा जी को और अपनी दीदी को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों।
1: ओके ओके, तो वैसे आप रेडियो रिमझिम कितने दिनों से सुनती हैं?
0: मैं 2008 मतलब सुनती थी, कॉल नहीं करती थी। तो श्रुति मैम जब कॉल ले रही तो सुने तो हम भी कर रहे थे कॉल।
1: अच्छा,
0: जब सुने तो हम भी करने लगे कॉल।
1: रेडियो से सुनती हैं या मोबाइल फोन से?
0: नहीं, रेडियो से।
1: अच्छा चलिए बढ़िया है,
0: जब सुनी तो अच्छा लगा, सोची कि मैं भी कॉल लगा कर रेडियो पर सुनने के लिए।
1: बढ़िया,
0: अच्छा लगा है, रेडियो हम सुनते हैं हमेशा।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैम, बाय मैम।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
10: हाँ जी, नमस्कार।
9: नमस्कार,
10: मैं राकेश भारती बक्सर से बोल रहा हूँ।
9: हाँ जी, कैसे हैं आप?
10: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
9: हम सभी ठीक हैं।
10: तो भारती जी, समझ जी कहाँ हैं?
9: मैं भारती बोल रही हूँ।
10: भारती जी बोल रहे हैं?
9: हाँ।
10: एक और भाई ना, क्या नाम है उनका? मनोरमा जी। तो दो दिन से वही कर रहे हैं कभी। तो हमने सोचा कहीं वही दोनों, आप दोनों का आवाज सेम है ना?
9: अच्छा,
10: आप दोनों का आवाज सेम है। थोड़ा बहुत भारती जी का समय दीदी का थोड़ा बहुत मिलता है।
9: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
10: सुनना चाहते थे रिकेश पांडे का मोहल्ला गरमाइल।
9: कौन सा गाना, एक बार और बताइएगा?
10: मोहल्ला गरमाइल, बहुत पुराना संग है, वही टाइटल सॉन्ग।
9: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
10: गाना तो आपको सुनाना है, हम लोग है संसद में, हम लोग है और आप फैमिली है।
9: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।
10: बहुत बहुत धन्यवाद।
9: वेलकम।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरा से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक हूँ। गाना सुनना है मैडम।
1: बता दीजिए कौन सा गाना।
0: लता जी का गाना है पवन झकोरा मेरे संग गाए की गुनगुन गुनगुन हवा दे। ये गाना सुनवा दीजिएगा मेरा।
1: और गाना डेडिकेट भी रहेगा।
0: और डेडिकेट आपका नाम भूल जा रहा है मैडम।
1: मेरा नाम भारती है।
0: अच्छा, भारती भी है।
1: हाँ
0: अच्छा, तो रहुआ के बहुत बड़ा प्रणाम बा, नमस्कार बा। इतना दिन से बात कहाँ रहनी है?
1: रहनी है यही दिन, बस दूसरे दूसरे काम में बिजी रहनी है।
0: तो आज बहुत दिन के बाद वो घटाई एक जने नया आयल बड़ी वह बड़ी कोई नया आयल बड़ी।
1: हाँ हाँ
0: चल रहुआ तो मैंने राहुल आवाज सुन के बहुत प्रॉब्लम बन गए कि बहुत दिन के बाद रहुआ आज फिर प्रोग्राम में शामिल हो बने। यही तरह बीच बीच में ले तो रहे प्रोग्राम हमी से तो कम और मत दी हमनियों के।
1: ना ना क्यों के नहीं बुलाइल हमनियों के एकदम काम मिले ला पे करेला।
0: हां सही है पापा हमारा तो है ना राव का एकदम। अब रुआ जो नहीं को बजे वाला प्रोग्राम में तो रुआ खूब बढ़िया एकदम हो गेल बने रुआ खूब बढ़िया बोला था ने। हां अच्छा लगा था बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हम तो डेली हम रेडियो सुनी ले और वो भारतीय जी का प्रोग्राम था तेरा हम ज्यादा करके चाव करके सुनी ले। एक बजे के प्रोग्राम में ये प्रोग्राम में तो रहू छोड़िए दल बने का नाम से एक जन आयल बड़ी हम उनका भूला जाता नहीं
1: मनोरमा।
0: हाँ उनको बोले के बड़ा बढ़िया एक्टिव है वो देखा था नहीं। आप रेडियो सुनते हैं कब से सुन रहे हैं है? कितने दिन से सुन रहे हैं? आपको अच्छा लगता है आप ऐप पर सुनते हैं या रेडियो से सुनते हैं? मैंने एक टोन वहाँ के पूछे के आधारशिला जो बड़ा बढ़िया उनका मैंने अपना बनी वहाँ के है ना। हाँ मैंने यू सुन के हमारा बड़ा अच्छा लगता है सुनील जी ने अपना उलर लिया ना हमारे भारती जी अपना उलर लिया मनोरमा जी यहाँ अपना ले लो बड़ी अच्छा लगा था बहुत बढ़िया है ना। तो रघु ये टोन लेके चोली कोनो कोनो टोन लेके तो मैंने के भी बा अपन गाना के सुने के चाहता तो हालत में रहुआ इस प्रश्न करे की एगो अच्छा लगे खूब बात बने कहीं कहीं करे ठीक बा भारती जी। तो हमारा की है
1: हाँ ठीक बात।
0: तो हम ये भारती जी के सुनवाक बा कोनी जी तो वहाँ का प्रांतीय बताओ बड़े मनोरमा जी साथ में डेलीकेट रही और बाकी जितना मैं रेडियो सुनने वाला के साथ लिखित रही लेकिन ये गाना रही मेरे संग गाया थी गुनगुन गुनगुन आवाज रही सुनवा दे मैडम ये तो
1: ठीक बात। फिर गाना प्ले करते नहीं सुना कहीं रेडियो रिंगिंग 90.4
0: जल्दी सुनवाई हमारे भाभी जी सुना भाभी जी सुना गाना।

0: तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे।

0: विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे। तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80 29 94 911। जी हाँ, 80 29 94 911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो, नमस्ते मैम।
5: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
6: जी मैम, कैसी मैम?
5: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: हम ठीक है।
5: नाम बता दीजिएगा अपना।
6: नाम सोलह देवी।
5: अच्छा, क्या हो रहा है
6: अभी? काफी में उम्र बढ़ा रहे हैं बात करने के लिए।
5: अच्छा,
6: गाना सुन रहा है।
5: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
6: हिंदी गाना सुना दीजिए, आप देखे चला किसी को चला था।
5: एक बार और बताइएगा।
6: साधनवा बैड में गए नहीं।
5: एक बार थोड़ा सा लाइन कुछ जो याद है बताइएगा।
6: चुपचाप देखा चला किस्मत का समाचार।
5: और गाना डेडिकेट है किसी को?
6: आप लोग सुनाना चाहते हैं। हमारा हस्बैंड है, हमारा।
5: अच्छा जी।
6: हम है, हमारा बच्चा है, पार लड़के, बड़का लड़का नाम है, छोटा लड़का है राजा, मेरी बेटी है सोना कुमारी।
5: जी,
6: तो खाना ना खा लिए?
5: हाँ हाँ, हम खाना खा लिए। आप सबका हो गया है?
6: हम लोग का ही हो गया, फोन घर आ रहे हैं।
5: जी जी। वैसे आप रेडियो का कौन कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
6: सब कार्यक्रम सुनते हैं, 5 बजे से लेकर 10 बजे रात में।
5: जी जी, चलिए तब तो बढ़िया है।
6: मोबाइल पर सब सुनते हैं।
5: रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड की है?
6: नहीं, ऐसी है, एफएम है, उसी से भरा सुनते हैं।
5: अच्छा,
6: रेडियो 4 पर उसी भरा सुनते हैं, सब सुनते हैं।
5: चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
6: नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है रेडियो 90.4 FM में।
0: वालेकुम सलाम।
1: हाँ जी, कैसी हैं आप?
0: ठीक बनी है।
1: हम यू के ठीक बनी सन।
0: वो नाश्ता समय?
1: हाँ, नाश्ता तो घर पे करके आ नहीं सन।
0: लंच लेके आनी है?
1: हाँ, तब रहो
0: नाश्ता। गाना और बाजत का नहीं के?
1: गाना और निखे बाजत। कौन सा गाना? निखे बाजल
0: गाना कहाँ है? गाना कौन है? साजन मेरा उत्पाद है। कहाँ गाना बाजल?
1: अच्छा, निखे बाजल।
0: अब
1: ठीक करे क्योंकि बाजल बकाए नहीं है बाजल। आज बता दी, आज कौन सा गाना सुने?
0: ये तो पहले अगला शुक्रवार के कॉलर है, वो गाना नहीं ना बजे।
1: अच्छा जी, ठीक कर लेनी हम कहे नहीं है बाजत और गाना।
0: कौन में बोल सकते? मना में
1: भारती।
0: अच्छा, यही सर कहे गाना आज भारती में बाजे बाज जाए।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल बाजी। आज सुन ले बुआ,
0: आपको सुनाना हो
1: जाए ना? हो जाला कबो कबो, मिस्टेक हो जाला।
0: और सब ठीक बा?
1: हाँ हाँ, सब ठीक बा। तो आज बता दी कौन सा गाना सुने?
0: मोहब्बत फिल्म में गाना सुने।
1: मोहब्बत मूवी पे? और गाना कौन सा
0: है?
1: हाँ हाँ, गाना है आंखें खुली हो या हो बंद। ये ना गाना?
0: हाँ, ये गाना
1: सुना। जी जी,
0: तबियत ठीक बा?
1: हाँ हाँ, तबियत ठीक बा। और ये गाना सुना हूँ क्या? बके हुए बता दी।
0: अच्छा जी,
1: और इस सबके ठीक बानो?
0: सबको ठीक बना। छुट्टी हो गए
1: अब एक के बारे में तो हमके नहीं है मालूम। चलिए ठीक बा, गाना और प्ले कर देने सुना कहीं रेडियो 90.4 FM।
0: बाबा जी, आज
1: बाज जाए।
0: हाँ ठीक बा।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
14: Now pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
14: Pick it up, pick it up.
15: Hello.
14: Now pick your phone up.
15: Hello.
16: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
17: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
19: किस्मत बोल रहे हैं।
18: हाँ जी, कैसे
19: हाँ सब ठीक बा, तुम ठीक बोला ना?
18: हाँ,
19: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या होता है, ठीक बात दिन ठंडा दिन बा ना?
18: हाँ आज दिन ठंडा बावे, अतनी बारिश नहीं क्या हो खता अच्छा
19: जुम्मा है तो ठीक हो बाबू, सुना दिए कवाली बोलिया।
18: अच्छा, कौन सा कवाली सुने?
19: अपना मुँह से सुना अच्छा होला।
18: चलिए ठीक बाबू, गाना प्ले करते नहीं सुनते रेडियो रेंजन 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत
0: नमस्ते
1: स्वागत है
0: मैम।
1: आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
0: राज कुमार सिंटापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया हैं, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं।
0: अच्छा, और बारिश वारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
0: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
1: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
0: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोपा गया, तब बारिश हुआ, भगवान जी मेहरबान है एकदम।
1: चलिए कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
0: हाँ, दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ,
0: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
1: हाँ, मेरा तो हो गया, आप अभी तो हो गया क्या?
0: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में। नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
1: चलिए, तब तो बढ़िया है। तो बताइए,
0: हमको आज गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
1: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
0: वो वाला गाना नहीं है वो, फलाली लगाइंदा जिसे करिए। अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सी इनकम सुनवा दीजिए, अब कबो जर भी फैला कर बे असर फैला।
1: अच्छा,
0: यही कौन सी सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
1: कोई नहीं, अगली बार

0: बता दीजिएगा इस बार ये पवन सिंह का सॉन्ग बजा दूंगी।
1: यही पवन सिंह के व्यवसायी सुनवा दीजिएगा
0: जी। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
1: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
0: जी।
1: और जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबसे।
0: ओके चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं सुनते के साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।

0: बेटा, बहू घर आने वाली है। सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रमजी 9.4 FM में।
9: जी हम जैन बनारस।
8: जी कैसे हैं आप?
9: बढ़िया है।
8: क्या हो रहा है अभी?
9: गाड़ियों में काम कर रहे हैं, पावर लूम।
8: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आप?
9: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, उस तरह तू मेरी दिल एक है। कुमार सानू आवाज।
8: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
9: जी अब दोस्तों को और अपने फैमिली के साथ से लेंगे।
8: जी चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रमजान 9.4 FM।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 94.4 एफएम में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पासवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिन दे कर।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिन दे कर।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट की है?
0: लड्डू सा है, व्यासा है, राजेश है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो रिंग सुनने वाले सभी को।
1: चलिए फिर आपसे गाना शुरू करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 94.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
11: You have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमछीम 90.4 FM पे समय 9:22 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है, मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें आप तो पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरू करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहला पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बुलेट चौधरी तीन फिड़िया से और गाना सुनना है ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनू सर, मुझे गाना सुनना है। और इस मैसेज को करते हैं सत्यम जी श्यामपुर से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कैसे हैं सर, और इस गाने की फरमाइश करती हैं सरिया फ्रॉम अमोम मोजम से, और गाने का बोल देती हैं बोले चूड़िया बोले कंगना। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सनम भैया कैसे हैं आप, आशा चौहान विलेज सराफरा परसौनी से गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फ़िलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर हम सफरोज अली का आकिल टोला से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, फिलहाल बन रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइश पूरी करते हैं बुलेट चौधरी जी के फरमाइशों के साथ।

रेडियो एम जी एम 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा मैसेज करना है, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, और फिर आपकी फरमाइश हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश को प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अगले गाने हम सभी सुनते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ, लिखा गया कि सुपर सॉन्ग सुनो भाई, आँख नम हो गया। और इस मैसेज को करते हैं महमूद जी किरला से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बिल्कुल काफ़ी दर्द भरा गाना। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अंकुश कुमार सासामूसा से जुड़े हुए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है, लेकिन कौन से गाने सुनेंगे ये बता दीजिए, तभी आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश की जाएगी। आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं, और इस गाने के फरमाइश करते हैं सत्यम जी, और गाने का बोल देते हैं आ कहीं दूर चले जाएं हम। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी, आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ।

0: सुनिए सुनिए सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।
5: You have a text message.

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमछेम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और समय, तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे बढ़ा जाए आगे। मैसेज तो कई पहुँचे हुए, लेकिन मैसेज को रोकेंगे और आज हम फिर जानेंगे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी, और आज हम चर्चा करेंगे डायरिया के बारे में, यानी दस्त के बारे में। और डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार पतला या पानी जैसा मल होता है। इससे शरीर में पानी और आवश्यक लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन कहते हैं। यदि समय पर उपचार ना मिले तो यह विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर हो सकता है। इनके कारण है दूषित भोजन या पानी का सेवन, बैक्टीरियल वायरल या परजीवी का संक्रमण, गंदे हाथों से भोजन करना, बासी या खराब भोजन करना, भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। इनके लक्षण है बार बार पतला या पानी जैसा मल आना, पेट में मरोड़ या दर्द, मतली जैसा मिजाज होना और उल्टी होना, बुखार, कुछ मामलों में बुखार भी आ जाता है, कमजोरी और थकान महसूस होना, अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना, चक्कर आना, निर्जलीकरण का संकेत, ये सारे लक्षण हैं। इनके जांच है डॉक्टर द्वारा शारीरिक परीक्षण, आवश्यकता पड़ने पर मल की जांच, गंभीर मामलों में रक्त की भी जांच हो सकती है। इनके उपचार है ORS का घोल बार बार पिलाए, खूब पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और अन्य स्वच्छ तरल पदार्थ ले, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जैसे खिचड़ी, दही, केला और चावल। छोटे बच्चों को स्तनपान जारी रखें, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाई न लें। यदि डॉक्टर आवश्यक समझे तो संक्रमण के कारण के अनुसार दवा देंगे। इनके बचाव है हमेशा साफ और उबला या शुद्ध पानी पिए, खाने से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ धोए, भोजन को ढक कर रखें, ताज़ा और स्वच्छ भोजन करें, खुले में बिकने वाला अस्वच्छ भोजन ना खाए, उसे खाने से बचे, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर खाए। संभावित जटिलताएं हो सकती हैं यदि समय पर उपचार ना मिले तो गंभीर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, शरीर में लवणों का असंतुलन, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्या आ सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में जान का खतरा रहता है, कब तुरंत डॉक्टर के पास जाए ये भी हम सभी जानेंगे। तो सबसे पहले दस्त 2-3 दिन से अधिक समय तक जारी रहे, बार बार उल्टी हो और पानी ना रुक रहा हो, मल में खून दिखाई दे, तेज बुखार हो, बहुत कम पेशाब आए या बेहोशी जैसी स्थिति हो। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं या बुजुर्गों में दस्त के लक्षण हो तो ये सारे डायरिया के लक्षण हैं, और कुछ बचाव हैं, सारी गतिविधियाँ हैं। ऐसी गतिविधियाँ यदि आपको या आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस किसी भी व्यक्ति को हो तो उसको ऐसी जानकारी दें और उसको बताएं कि आप अपने आप को इलाज कराएं। यह बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, आप इसका इलाज कराते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी जानकारी रेडियो रेमछेम के माध्यम से दी जा रही सेहत सही लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, तो ऐसी जानकारी हर रोज दी जाएगी। आप सब बने रहें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। तो फिलहाल कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे और कार्यक्रम में जो भी मैसेज पहुंचे हुए मैसेज को शामिल करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नमस्ते सर, रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से गाने का बोल। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, आज हमें भी गाना सुनना है। तो बिल्कुल सुनाएंगे, और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सर मेरा गांव गलत बताएं। गलत नहीं, आप बोले थे श्यामपुर तो श्यामपुर ही बताए हैं। और इस मैसेज को करते हैं सत्यम जी, और गाने के लिए कहते हैं धन्यवाद सर गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेमछेम सुनने के लिए, सुनते रहें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और
लभेरी लाल के आवाज में बोलबम का बिरजावार धुन में गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और इस गाने के फरमाइश करने वाले हमारे सुरदागर हैं एक प्रमोद जी। तो चलिए प्रमोद जी, अंकुश कुमार जी सांसा मूसा से, तो चलिए अंकुश जी आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।

रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यदि आप इस कार्यक्रम में बने हुए तो बने रहें, और एक ही करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे कई मैसेज पहुँचे हुए कि हमारा हमारा और हमारा नहीं बजाते हैं, कई श्रोतागण की मैसेज रिपीट हुए हैं, तो चलिए एक ही करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश करते हैं पूरी, और इस गाने की फरमाइश करते हैं महमूद जी केरला से, और गाने का बोल देते हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप जो कहें वो सत्य है। और आगे मैसेज कई पहुँचे हुए लिखा गया है कि सदस्य हमारा फरमाइश नहीं बजाते हैं, तो बिल्कुल बोलते रहें कि एक एक करके फरमाइश हम प्ले करेंगे, और प्ले हो ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। रंजन जी फिलहाल महमूद जी के गाने को प्ले करते हैं, और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि सर हमारा भी, तो बिल्कुल एक एक करके बोलते रहें कि सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा, जितना हमें समय मिला है उतना में। फिलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
5: FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज है और आगे कई गाने के फरमाइश पहुँचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे, इस गाने के फरमाइश करती हैं निशा पांडे, और तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 90.4 FM पे।

सभी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसी 94.4 FM पे सुन रहे हैं। हारने के बाद ही जीत मिलती है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि और इस मैसेज को करते हैं रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने का बोल देते हैं तेरे इश्क में नाचेंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश अंतिम प्ले करते हैं और इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग सर निशा जी का, और इस मैसेज को करते हैं सफरोज अली। बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ था। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गुड नाइट, चलिए गुड नाइट। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा तो आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर, चलिए आपको धन्यवाद है निशा पांडे। और आगे बढ़ते हैं अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हुए, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में अगले सप्ताह। आप सब बने रहें, एंजॉय करें अंतिम गाने के साथ रेडियो एमसी 94.4 FM पे, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8669-73।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास बेतिया हाता गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
0: संपर्क करें 84710-3092 या 90765-6750।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-8947-0 या 9198-8869-73।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा, मिला ही नहीं
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-82-91। जी हाँ, 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। जी हाँ, 7277-16-65-96। तो दोस्तों, सावन के इस पावन अवसर में हमारे रेडियो रिमझिम के टीम की तरफ से सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक प्यारा सा गीत। और गाने के बोल हैं मेघा रे मेघा, तो एंजॉय कीजिए गाने को। और जब तक हमारे सारे श्रोतागण जुड़ रहे हैं तब तक मेरे गाने को एंजॉय कीजिए।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से एक प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थी मेघा रे मेघा। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, नाइस सॉन्ग, ओपनिंग सॉन्ग। और जितेंद्र कुमार बरौली से जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, हम पूजा गोपालगंज से, कैसे हैं आप सब? और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी नमस्कार, साथ मास्टर रोशन टेलर ग्राम धनु से और आपके कार्यक्रम के साथ जुड़ चुका हूँ और हालचाल काबा बताएं। और कार्यक्रम की शुरुआत बहुत खूबसूरत गाना से मैडम जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हालचाल तो ठीक बार वो सब बताएं, रो लोकेशन बानी लो। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचल हुआ जी की लिखा था नहीं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, उत्तम सोनी हरपुर से, और मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत आपका चॉइस लाजवाब है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि खाली गाने चल रहा है, ऑनलाइन चलाई प्रोग्राम भारती जी, तो हाँ हाँ गाना तो चलत रहा है और ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू हो गई बा और मैसेज करे वाला बानी दिलीप राम, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके। और यहाँ की तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचल बा जे कि लिखते नहीं हमके गाना सुने के बा और गाने की बोल बा तेरे गालों की चांदनी। तो चलिए बिना देरी किए प्यारा सा सॉन्ग प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
4: कब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
5: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
5: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
5: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
7: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार तहे दिल से फिर से स्वागत करती हूं और योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि खुशियों से नाराज है मेरी ज़िंदगी, बस प्यार की मोहताज है मेरी ज़िंदगी। हंस लेता हूँ लोगों को दिखाने के लिए, वैसे तो दर्द की किताब है मेरी ज़िंदगी। भारती जी शुक्रिया गाना चलाने के लिए, दिलीप राम दिल्ली से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाना आपका मैंने प्ले किया, आपको अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज है जो कि पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा, नेम है, नेम आप बताइएगा। तो आपका नाम राकेश भारती बक्सर से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती मैम, आज मेरा सप्ताह पूरा हो गया और मेरा गाना भी बजा दीजिएगा। तो जी आपका सप्ताह कल पूरा होगा और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर हर महादेव भारती जी, और मैसेज करने वाले हैं सनी शर्मा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है उत्तम सोनी जी की तरफ से, और गाने के बोल है जिंदगी की तलाश में, और हाँ उनकी तरफ से वॉइस मैसेज पहुँचे हुए। तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है।

0: हाय जी मैम, नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, कैसे हैं आप? ठीक है ना? उम्मीद है आप एकदम मस्त और बिंदास हास होंगे। और मैम एक लिंक भेज रहा हूँ, उसे प्ले कर दीजिएगा। और जितने रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं, मैं सभी लोगों को सुनवाना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, सुना दीजिएगा प्लीज। और जितने रेडियो रिमझिम को सुन रहे हैं, सभी प्यारे प्यारे लिसनर लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं उत्तम सोनी हरपुर से। जी मैम, ये सॉन्ग सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, और उसके बाद सागिर जी है, आज़ाद जी, और सन्यासी रंजन बाबा, और मुकेश भैया, कमरान जी, शाहजहाँ जी, और खुशबू जी, शबनम सिद्दीकी जी, राजू भैया, और दिलीप भैया, और मुकेश भैया, और संदीप भैया, और मुकेश भैया, ये जितने लोग हैं, और बहुत से लोग छूट गए हैं, तो मैम सबको सुनाना है, अब प्लीज़ सुना दीजिएगा। ठीक है, आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। और सन्यासी रंजन बाबा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन है, मैं सुना रहा हूँ, सुनिए, है ना? और ये अच्छा बाटे, हमके उम्मीद बाटे आपको भी अच्छा लगे। वो कह देना, कुछ रिश्ते किताबों जैसा होता है, कि कुछ रिश्ते किताबों जैसा होता है, हर पन्ना यादों से भरा होता है, आखिरी पन्ना बंद हो जाता है, पर कहानी कभी दिल से नहीं जाती है ना?
1: जब तुम चली जाओगी, मिलने आऊंगा मैं तुमसे, बहुत खुशी होगी मुझे तुम लोगों।

0: मेरी आवाज पहचानोगी ना, पहचानोगी ना मेरी आवाज, जरूर पहचानोगी मेरी आवाज।
1: तो चलिए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ही।

अभी हम लोगों ने सुना उत्तम सोनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मैं मनीष राजा फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और हमें भी गाना सुनना है और गाना सुना दीजिएगा, गाने की लिंक भेज रहा हूँ और मेरा भी मैसेज देख लीजिए भारती जी। तो आपका भी मैसेज मैंने देखा है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ लिख रहे हैं कि कौन कहता है हम तबाह नहीं है, मेरी बर्बादी की बस कोई गवाह नहीं है, सब देखते हैं मुझे मुस्कुराते हुए क्योंकि रोने के लिए कोई जगह नहीं है, दिल में बसे हो जरा ख्याल रखना, वक्त मिले तो हमें याद करना। और लिख रहे हैं कि हमें तो आदत है आपको याद करने की, आपको बुरा लगे तो हमें माफ़ करना। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ कृष्णा कुमार पासवान और सऊदी अरबिया धन, मुझे एक गाना सुनना है और प्लीज़ सुना दीजिएगा। और गाने का बोल है, और गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि नैयम अंसारी जमतारा से, और मुझे भी गाना सुनना है और गाने के बोल हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, सॉन्ग सुना दीजिएगा और फिल्म हिना से, तो नाइस सॉन्ग और मेरा भी गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले किया जाए और इन्जॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
3: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं कि नैयम अंसारी जी जो कि लिख रहे हैं सॉन्ग चलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ठोकर ना लगा मुझे पत्थर नहीं हूँ मैं, हैरत से ना देख कोई मंजर नहीं हूँ मैं, तेरी नज़र में कोई कदर कुछ भी नहीं मगर उससे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूँ मैं। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम दिल्ली से। तो इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी कैसी हैं आप, नमस्कार, मैं धनीश कुमार मिश्रा दिल्ली से, मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि आज मेरा वीक पूरा हो गया है और मेरा भी गाना प्ले कर दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपका एक वीक पूरा हो गया और आपका भी गाना प्ले होगा और गाने के भेज सकते हैं आप, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैं भी जुड़ गया हूँ मैम, साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ, और आप कैसी हो? सोनू कुमार चौरसिया रामपुर खरैया कुचायकोट गोपालगंज का रहने वाला हूँ, और बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश है जो कि पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि मनीष रजाक फाजिलगंज से, और गाना सुनना चाहते हैं, और यहाँ कुछ लाइंस पहुँची हुई हैं जो कि लिख रहे हैं कि आपकी आंखें देखी तो मैं बातें भूल गया, मेरे घर फूल रखा था मैं उसे लाना भूल गया, और आप इतनी खूबसूरत हैं मैम, कैसे मैं कैसे बयां करूं, चलो छोड़ो मैं आगे की लाइन भूल गया। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ उनकी तरफ से गाने की बोल पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि गाना है मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले किया जाए और एंजॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

तो अभी हम लोगों ने सुना मनीष जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और उनकी तरफ से जो कि एक खूबसूरत सी लाइन पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि अरे तुम खूबसूरत जैसे चांद लगती हो, तुम नादान लेकिन प्यारी बेहिसाब लगती हो, और लिख रहे हैं कि ये कांच का टुकड़ा और आईना क्या बताए तुम्हारी खूबसूरती, जरा मेरी आंखों से पूछो कितनी लाजवाब लगती हो। ओहो, तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मैडम नमस्ते, मैं रतन कुमार सुपौली बिहार से बोल रहा हूँ, और मुझे एक गाना सुना दीजिएगा, और गाने के बोल है सावन की पवन महीना, पर कोई बोल बम का गाना सुना दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि भक्ति सॉन्ग मैं प्ले नहीं कर सकती, और मैं हर बात यही बात बताती हूँ, आप कोई हिंदी सॉन्ग या भोजपुरी जो सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, लेकिन भक्ति गाना नहीं, और भोजपुरी सॉन्ग भी अच्छा होना चाहिए। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हम घर पे आए हैं, और अमरीश कुमार लिख रहे हैं कि मेरे घर बचा हुआ है और सोहर सुनना है, प्लीज़ मैडम सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं हेलो सर कैसे हैं, और माई नेम इज़ मिजा अंसारी, और विलेज चौरा डिस्ट्रिक्ट सरायकेला स्टेट झारखंड, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है तो सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि गणेश कुमार पिपरा नारायण से, और मुझे भी गाना सुनना है, और गाने की लिंक गाने की बोल यहाँ पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनना है पिया जी के मुस्की सॉन्ग। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले किया जाए और इन्जॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमर।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिंसून 91.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, राधे राधे, हम जुड़ गए हैं। और दुबई से विकास कुमार चौधरी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनने के बाद और लिखत नहीं सुना दी, लिंक भेज दिल बानी। और लिखत नहीं कि नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, परी का हाल चाल बा मैम? तो हमारे तो हाल ठीक बा, रुबा बताई रुबा कैसन बानी। और बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी इस शो में। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी 54 से, और मेरी भी हाजिर लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि बातें की बताने की बात तो नहीं है, पर बताने दोगे क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे, मुझे हक जताने दोगे क्या। और मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं, हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, मैं राजसू लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और नाइस सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हेलो हाय मैडम जी, नमस्कार मैडम जी, गुड आफ्टरनून मैडम जी, मैं प्रीति रायदास विलेज लकड़ी दरगाह डिस्ट्रिक्ट सिवान बिहार से, और आज मुझे भी सॉन्ग सुनना है, और सॉन्ग नेम गोरी है कलैया, और ओल्ड सॉन्ग है, और मेरा भी मैसेज शामिल कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे, और गाना बहुत ही खूबसूरत है, और गाने के बोल तो हैं, गोरी है कलैया पहना दे मुझे हरी हरी चुड़िया। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: और यहाँ प्रीति जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया जो लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मैडम जी सॉन्ग प्ले करने के लिए, और आप भी साथ दीजिए सॉन्ग में, तो इंजॉय कीजिए अपने गाने के।
1: गोरी है गला

0: अभी हम लोगों ने सुना प्रीति जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग गोरी है कलैया, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हम छावे राजन मार्ग से बोल रहे हैं।
0: जी जी,
1: गाना सुने बा?
0: बता दी कौन सा गाना सुने बा?
1: मेरी आई रूप जमाई हम ना सरत दिया भौजी।
0: एक बार और बता दीजिएगा।
1: मेरी आई रूप जमाई हम ना सरत दिया भौजी।
0: अच्छा,
1: हाँ।
0: गाना सुना होगा बाकी के ओके?
1: हाँ।
0: बता दी।
1: बानी रघुआ बानी रामचंद्र बारन हरिंदर बारन पप्पू बारन सब कोई बा।

चलिए और गाना प्ले कर दे ले बनी, एंजॉय कर जाओ रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। नमस्ते।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिक, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार जी कैसी हैं? तो मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? और अपना नाम ज़रूर बताएं कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। तो मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन हैं, तो प्लीज़ ज़रूर अपना नाम बताएं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा नाम रफ्ता जैक स्पैरो है और मैं सिवान से हूँ, और कैसी हैं भारती मैम? और मैं गाना सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इससे पहले हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँच हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
6: जी, नमस्कार भारती जी।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। हाँ जी, कैसे हैं आप?
6: अच्छे हैं, आपने बताइए।
5: हम सब भी अच्छे हैं। तो बता
6: दीजिए।
5: ये तो मैं नहीं बता सकती, ये हमारे मैनेजमेंट बताएंगे।
6: आज हनुमान चौक में रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था क्या?
5: हुआ था, हम ही रिकॉर्ड किए हैं।
6: लगे नहीं रहा था,
5: ज्यादा कॉल आते हैं ना तो बिजी बताता है कभी कभी।
6: तो कुछ भी नहीं बता रहा था, बिजी बताता है ना, बिजी भी नहीं बता।
5: कब कॉल लगाए हैं आप?
6: 11 बजे से 12 बजे तक लगाते रह जाए।
5: शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तब, क्योंकि अधिकतर लोगों के कॉल आए हैं आज 12:30 तक कॉल आए हैं।
6: हो सकता है
5: हमारे। तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है इसमें।
6: गाना सुनना है,
5: गाना सुनाने लायक तो नहीं लग रहा है कि है।
6: गाना तो इसमें के बहुत लोग खराब नहीं है, गाना तो सुना है निरार अच्छा।
5: अच्छा।
6: गाना दिख रहा है तो भैया इसमें गाना कोई गलत नहीं है।
5: एक बार और बता दीजिएगा।
6: भला का मोजर। अरे कि थोड़ा हो जाए वो पागल है।
5: और गाना किसी को सुनाना भी है?
6: जी?
5: गाना किसी को सुनाना भी है?
6: जी जी राम जी पास आपको खाने से जो अभी गाना सुनाए है ना बहुत करम ना दिया बकर है परेशान से उनको भी गाना उनको भी सुनाना है।
5: आप दूसरा गाना बता सकते हैं?
6: जी
5: दूसरा गाना बता दीजिए। जी जी बता दीजिए।
6: दिलवाले पिक्चर का गाना टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए। हाउ गाना जो लड़की जिसकी जीते हैं जिसके लिए
5: अच्छा
6: सुना दीजिए।
5: ओके जी नमस्कार। रेडियो रूम जी में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग दिलवाले मूवी से जीता था जिसके लिए, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि आप भी तो बहुत लाजवाब गाती हैं और साथ में गई। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो नमस्कार भारती जी, राधे राधे, मुझे भी गाना सुना दीजिएगा। और मैं सुजीत कुमार प्रेमनगर बस्त्रा राजा लालगंज मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश 63 से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कल रात तेरी यादों में तेरी तस्वीर बना डाली, इतनी अच्छी लगी कि गले से लगा डाली, दिल बेचैन हुआ कि कोई हमसे चुरा ना ले, इतना रोया कि आंसू से ने तस्वीर मिटा डाली। और मैसेज करने वाले हैं पाजी UP 54 से, और बहुत ही खूबसूरत शायरी है। और इसी के साथ हमारे पास जो कि यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है सन्यासी रंजन जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम बारुआ के भारती मैडम जी, हमहूँ आविल बानी, हमरो हाजिरी लगा दी, हमके भी आज गाना सुनने का है और गाना के नाम है दिल पे चलाई छुरिया, और गीत सुनाना चाहते हैं मनीष पांडे उत्तम सोनी जी को। और लिख रहे हैं कि ठीक हमार काया करी, लाइफ में कुछ नया करी, पैसा बड़ी छापे के बाद भोले बाबा दया करी। और इसी के साथ यहाँ एक और लाइन है जो कि लिख रहे हैं कि पूजा तो हम करते बानी, तनिको हमरा ज्ञान नहीं खे, पटीदार के घर धन बरसावत बाड़ा और हमरा ऊपर तहार ध्यान नहीं खे। और लिख रहे हैं कि रावण के रवा ज्ञान देनी, सोना के मकान देनी, हमरा के देही पलानी में। हमरा के देहनी पलानी में रहे के पटीदार के रउआ 3 तला मकान देहनी। और बहुत ही लाजवाब लाइन के साथ जुड़े हैं और लिख रहे हैं कि कृपया समाचार से पहले हमारा गाना बजा दें। और तो चलिए बिना देरी के लिए सन्यासी रंजन जी के गाना का प्ले कर जाओ, गाना के बोल बाद दिल पे चलाएं छुरिया। तो चलिए बिना देरी के लिए गाना प्ले करते नहीं और इन्जॉय कर जाओ सबके साथ ही प्यारा सा गाना।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हर हर महादेव मनीष पांडे, सन्यासी बाबा के दिल पर के छुरी चला दे बा, और लिखा था नहीं कि हमके सुनावेला बाबा धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि ये वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है, कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, पर वक्त सबको मजबूर कर देता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं धनेश कुमार मिश्रा जी, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं, गाने के बोल हैं दिल के कसूर। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाने का प्ले कर जाओ और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अभी हम लोग सुन रहे थे धनेश मिश्रा जी की तरफ से प्यारा सा सॉन्ग और गाने की बोल थी दिल के कसूर का रहे। और लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा फरमाइश कुछ अलग रहता है और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, मैं सुन रहा हूँ। तो जी आपकी फरमाइश बहुत ही लाजवाब थी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, भारती जी आप बता सकती हैं सोनी जी का ज्वाइनिंग कब तक होगा और क्या इस महीने में होगा या नहीं, बताइए ज़रूर। तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी डिटेल्स हमारी मैनेजमेंट देगी, मैं नहीं बता सकती। और इसी के साथ जो हमारी अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि अगली फरमाइश हमारे पास कॉल के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी भारती, जरूर स्वागत है।
0: हमारे ठीक बा, रुआ बताई रुआ कैसन बानी।
1: अरे ठीक बा, ना गर्मी
0: बा,
1: छत के छपाई सीलिंग बा,
0: अच्छा
1: 2 लीटर पानी दे से गिर गई।
0: तो बता दे,
1: खाना पीना भाई?
0: ना ना, अब खाना हुई
1: सोनी जी ने क्या होता है
0: अब एक बारे में तो हम नहीं बता सकत। ना ना, अब ये सब हमारे मैनेजमेंट बताई हुए हैं, लो बता लो। और सब ठीक बाबे? बता दी, बता दी कौन सा गाना सुने?
1: हेलो,
0: क्रिया खा के कह ईमानदारी से,
1: क्रिया खा के कह ईमानदारी से, नैहर ले रही के ससुरारी से।
0: गाना डेडिकेट भी बा,
1: अगर तुम बा जितना लोग सुनत तो सबके बा, और जाऊर बा, सनी जी के बा, सोनू बाबू के बा, सबको सुनो। चलिए रामा जी भाई, रामा जी भाई खावे तनी ज्यादा वहां के सुन।
0: वहाँ के तरफ से तो एकदम लाजवाब गाना के फरमाइश आवेला।
1: कहीं कहीं सुन लीले तो याद रखने रह ली, तो कब कॉल वो उठा ली तो ना उठा ली तब तो हार आने रहला।
0: अच्छा चलिए फिर, और गाना प्ले करते नहीं एंजॉय। हाँ बोलिए।
1: हेलो माय चॉइस में 4 दिन से 4 बुध तो मार परेशान बानी, कितना रिंग कोइनी, कितना रिंग कोइनी, लेकिन रुगा बाप खाली जी खाली।
0: कहीं करे हम कॉल आवेला तो सबके कॉल तो उठाई के बा।
1: एक बात चली,
0: गाना प्ले करते नहीं सुनते रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

प्यार भी बड़ा बेसरम चीज है, कब हो जाला पता ही ना चले। प्यार की एक झलक पावेला प्रेमी अपना जान पे आ जाला। तू मानो या ना मानो मगर हकीकत है, इश्क हर इंसान की जरूरत है। जरा मेरे महफिल में बैठ कर तो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। लड़का कहता

0: तो अभी हम लोग ने सुना एक प्यारा सा गीत प्यार नहीं हरे तक रही की ससुरारी से, और इसी के साथ हमारे पास जो कि अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी आप मेरे से नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैसेज करने वाले हैं प्रमोद कुमार साहू, ग्राम विरई, जिला बालोद छत्तीसगढ़, और गाना सुनना चाहते हैं। और लिख रहे हैं कि लीला साहू, प्रमोद कुमार साहू, ग्राम विरई, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से, तो गाना सुनना है खेसारी लाल की आवाज़ में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि क्रिया खाके कहीं ईमानदारी से हमरे पसंद के गाना बजाए, हमरा पसंद के गाना बजाए वाले भैया ने, भैया के दिल से धन्यवाद बा। और अगला मैसेज जो कि पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि किसी के ऐप को तू लोगों को तू बेनकाब ना कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर, बुरी नज़र से ना देख मुझको देखने वाले, मैं लाख बुरा सही पर तू अपनी नज़र ख़राब ना कर। और बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो कि मैसेज करने वाले हैं पाजी यूपी चौवन से। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश है, लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्कार, राधे राधे, हम भी जुड़ गए हैं और रेडियो रिमझिम में, और गाना सुनना चाहते हैं और गाने के बोल हैं मेरे दिल को करार आए। और मैसेज करने वाले हैं सुनील कुमार, सुनील कुशवाहा एमपी से, और भारती मैम नमस्कार, हमारा भी गाना बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले किया जाए और एंजॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: शिमारू फिल्मी गाने के नए

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज की तरफ। और दोपहर न्यूज के बाद जिनकी भी फरमाइश बची हुई है उनकी फरमाइश प्ले होगी।

0: माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील, गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया, 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
4: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का, सरकार का जवाब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
3: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
5: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
3: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
6: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
3: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
7: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
3: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
8: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तीनों जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार।

0: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
4: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष

0: 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
9: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
10: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
9: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
11: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
12: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
13: भरोसे वाले से लेंगे,
12: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
13: और कीमत भी।
12: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
13: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
14: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
15: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
16: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
15: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
17: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
15: कॉल करें 85070-32042 पे।
18: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
19: और

0: ये जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,00,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
0: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दोपहर न्यूज के बाद और योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूं भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और यदि आप हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप और इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-91। यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचे हुए हैं, जो कि उससे पहले हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: मंदिर सामने हो तो रास्ता ना मोड़ना, मंदिर सामने हो तो रास्ता ना मोड़ना, मुसीबत कितनो आए हिम्मत ना हारना, अपने हालात और हिम्मत से कभी ना रोना। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। जी, तो अच्छा, आपकी तरफ बारिश हो रही है। तो बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम है हम सैफ अली खान।
0: और गाने की बोल।
1: जग दे सारे गम गाना है, सैफ अली खान का है ना, अच्छा है।
0: गाने के बोल एक बार और बता दीजिएगा।
1: जग दे सारे गम, जग दे सारे गम। मिल जाएगा। मिल गया ना।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: ओके, नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग चक दे सारे गम, और मूवी थी हम तुम। तो चलिए बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार मैडम जी, मैं गाना सुनना चाहता हूँ, और निकेश कुमार चौहान पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से, और प्लीज़ मेरा भी गाना सुना दीजिएगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मोतिहारी मीना बाजार से पुट्टू भाई, और गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्रमोद कुमार साहू ग्राम बिरई जिला बलोद छत्तीसगढ़ से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना सुनना चाहते हैं क्या करती थी साजना हमसे दूर रह के। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, आप मेरा गाना क्यों नहीं सुनाती हैं। तो ऐसी बात नहीं है, चलिए प्रमोद जी आपके गाने को प्ले कर रही हूँ, और इन्जॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ और मेरा नाम सुनील लाल कुमार है और मैं राज का रहने वाला हूँ और मुझे भी एक गाना सुनना है। अभी गाने के बोल पहुँचे हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं भारती जी सलाम अलैकुम, हसमत अली अंसारी चैनपुर सिवान से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वाई आर यू इग्नोरिंग माई सॉन्ग एंड SMS। तो बात ऐसी नहीं है, और मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ और ना ही आपके मैसेजेस को। और लिख रहे हैं कि दर्द ये नहीं कि दिल टूटा, दर्द ये है कि तूने बिना एहसास के तोड़ा, जैसे बच्चे खिलौना तोड़ते हैं वैसे ही तूने मेरा भरोसा तोड़ा। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगली फरमाइश है पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि साउथ अफ्रीका से सुन रहा हूँ, और सोनू कुमार चौरसिया और इनके तरफ से गाने की जो है बोल पहुंची हुई है, जो कि गाना है खेसारी लाल की आवाज़ में। गाने के बोल हैं डोली में मार दिम गोली। और चलिए फिर बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

कि हमारे दर्द ना कि पूरा दुनिया के दर्द है। और प्यार वो खाली खेसारी लाल यादव ही नहीं क्या कहले, ये पूरा दुनिया के लिए बा। लेकिन केहू बता देला केहू ना बता पावेला, लेकिन आज रहो सबके हम बतावे जाता नहीं। ये दीवाना जब पागल होला तो उका

0: सारी दुनिया में अकेला हम ही ना।
1: और यहाँ सोनू कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं बहुत लेट से बजाई मैम, लेकिन थैंक यू सो मच गाना बजाने के लिए, तो एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

और ये आस्ती में सिर्फ बर्बाद भलाऊ जो हर चीज से भूल के फिर ज्ञापन मांग रहे जिंदगी में उखरा भी नहीं लगा फिर धोखा और धोखा के टूटल लोग आ गए।

आपने सोनू जी की तरफ से सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग डोली में गोली मार दे। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार अंसारी बिहार से, और अली हुसैन अंसारी बिहार से जुड़ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका गाना मैं प्ले नहीं कर सकती क्योंकि इनकी बारी शुक्रवार को आती है। और लेकिन बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप पूरे टीम का, और मेरा भी फरमाइश है जो पूरा कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैसेज करने वाली हैं सानिया सैफी चक हसना से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि संजय यादव दुबई से, और गाना सुनना चाहते हैं और गाने के बोल हैं मुझे तुम याद आते हो, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902। नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि सोनी मैडम जी कब आएंगी और गाना बाजी का, और लिखा था नहीं कि सुंदर वाणी तो हमार का दूसरा आधा। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि मोतिहारी से MD मीनू और मोतिहारी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, नमस्कार मैम कैसी हैं, और मैसेज करने वाले हैं राघव जी ओम साई टेलर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे RJ सोनी जी की तरफ से पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रही हैं कि डेडिकेट सभी लिसनर एंड स्पेशल समवन स्पेशल को, और वॉइस भेज रही हूँ फिर प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इनकी वॉइस को प्ले करेंगे और सुनेंगे क्या है वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
4: नमस्कार प्रणाम आप सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूँ आपके अपनी रेडियो दोस्त RJ सोनी, और आज फिर से मैं आप सभी के बीच जुड़ चुकी हूँ एक गाने की फरमाइश के साथ। और ये गाना मैं आप सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, तो आप सभी इंजॉय करिएगा और बताइएगा गाना कैसा लगा जरूर से। और उम्मीद है कि भारती जी मेरे गाने की फरमाइश प्ले करने की पूरी कोशिश करेगी और करिएगा, मैं भी चाहती हूँ। और फिलहाल मैं यहाँ अपने नानी के घर आई हुई थी, सबके साथ बैठ के मैं रेडियो रिमझिम का आनंद ले रही हूँ, तो कोशिश करिएगा अगर समय हो तो मेरे गाने की फरमाइश जो है जरूर प्ले करिएगा, और धन्यवाद।
3: तो चलिए बिना देरी के सोने जी के गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ। और गाने की बोल है मर्डर हो जाए, तो चलिए बिना देरी के ये प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ।

0: और अभी हम लोगों ने सुना अपनी आरजे सोनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और गाना था जान तहरेला मर्डर हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए आगे की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे पास यहाँ अभी बहुत सारी फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हवा चले या बारिश आए, दिल गुनगुनाता रहे, प्यार उसी से हो जो हमेशा मुस्कुराता रहे। और लिख रहे हैं, नमस्कार, आंखों से प्यार होता था, दिल दीवाना होता था, वो बचपन का प्यार था, वो दीवानी थी और मैं दीवाना था। और लिख रहे हैं कि गाना सुनना चाहता हूँ सभी श्रोता के साथ, और सामन शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अभी तो आपके गाने की दिन नहीं है, बुधवार को आपका गाना प्ले होगा, तो प्लीज़ आप बुधवार को ही अपना गाना सुने। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि धनेश कुमार मिश्रा जी, हमारे प्रिय आरजे सोनी मैम के फरमाइश बहुत लाजवाब रहल है, और इसके लिए सोनी जी को दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से, और आपने गाना एंजॉय किया, ये सुन के अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हर हर महादेव, सोनी मैडम जी कब तक आएंगी। तो लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, अभी दुबई से सुन रहा हूँ, और का हाल बात सोनी जी और भारती जी जरूर बताएं, और सॉन्ग जबरदस्त बा सोनी जी के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: थैंक यू मैम।
0: नाम बता दीजिएगा अपना।
1: नूर बात कर रही हूँ, हसना से।
0: अच्छा जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाष

0: अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी मैम नमस्ते, संजय यादव अच्छा गाना बा। और इसी के साथ ही हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, प्रेम मदेसिया पटरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। भारती जी नमस्कार जी, कैसी हैं? गुड आफ्टरनून जी। भारती जी, सोनी जी मेरे तरफ से नमस्कार बोल दें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी तरफ से उनको नमस्कार बोल दिए हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पाजी यूपी चौहान से, जो कि लिख रहे हैं कि किनारों पर मोती मिला नहीं करते, दर्द में कभी गिला नहीं करते, हम अच्छे ना सही बुरे ही सही, पर हम जैसे बुरे भी किसी को मिला नहीं करते। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मेरा भी तो यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से नयापारा विरई जिला बालोद से बसंत कुमार ठाकुर और सईद भाई ठाकुर और इशरा राज ठाकुर और प्रिय मैम जी सादर नमस्कार, गुड आफ्टरनून, राधे राधे भारती दी। और जी मेरा भी फरमाइश पूरा कर दीजिएगा, फिल्म स्वर्ग से सुंदर बोल अब के बरस। और भारती जी, भारती कोयल मैम जी, मेरा सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपका सॉन्ग शुक्रवार को प्ले हुआ था, फिर शुक्रवार को ही प्ले होगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहा है कि सनी शर्मा की, मुझे गाना सुनना है और गाने के बोल है सुंदर बानी ता हमरा का दोस्त बा, आधा पटावे आधा देखे के बेहोश बा। अच्छा, तो बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश है। तो चलिए बिना देरी किए शिल्पी राज की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं सभी के साथ।

तो अभी हम लोगों ने सुना सनी जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग शिल्पी राज की आवाज में, और गाना था देख के बेहोश बा। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ लिख रहे हैं कि धन्यवाद, थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और इसी के साथ जो हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है, लिख रहे हैं कि तेरी मोहब्बत ने हमें बेनाम कर दिया, हमें हर खुशी से अनजान कर दिया, हमने तो कभी नहीं चाहा था हमें मोहब्बत हो, लेकिन उसकी पहली नज़र ने हमें नीलाम कर दिया। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं राघव जी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश है अगली मैसेज जो पहुँची हुई है, जो कि लिख रहे हैं सोनी जी, बड़े होने पर नानी जी के घर कौन घूमता है, रहल बात मर्डर के हमारे तरफ से रियल में हुआ है। अच्छा जी, तो ये तो सुनी जी ही बताएं कि नानी के घरे घूमे के मन के लेवा का है। और एक साथ ही हमारे पास अगला मैसेज पहुँचल बा, जो कि लिखा था नहीं कि हेलो मैम, कैसी हैं आप और गोपालगंज का मौसम कैसा है, मैं राम कुमार हर बात से जुड़ा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गोपालगंज का मौसम अभी फ़िलहाल ठीक है। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मैं गाना सुनना चाहता हूं और निकेश कुमार चौहान पूर्वी चंपारण संग्रामपुर से, और मुझे भी गाना सुनना है और गाना सुनाना चाहता हूं श्याम सुंदर जी को, सोने लाल जी को, और संदीप जी को, मिथिलेश जी को, और दिनेश जी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और चलिए आपकी तरफ से सभी को डेडिकेट है। और गाने की जो बोल पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि गाने की बोल है कब आओगे परदेसी पिया। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे ये खूबसूरत सा सॉन्ग रेडियो रमजम 90.4 FM में।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852-78-82-91। जी हाँ, और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि जिंदगी में हर मोड़ पर कुछ सिखाया है, कभी हंसाया कभी बहुत रुलाया है, पर हम हर दर्द ने मुझे मजबूत बनाया है। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप शर्मा पठरा टोला से, तो लिख रहे हैं नमस्कार मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं मोतिहारी से शाहजहाँ खातून जुड़ी हुई हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो एक और पैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लोग कहते हैं ज़मीन पर किसी को खुदा नहीं मिलता, शायद उन्हें दोस्त कोई तुम सा नहीं मिलता, किस्मत वाले को ही मिलती है पनाह किसी के दिल में, यूं हर शख्स को तो जन्नत का पता नहीं मिलता। और भारती जी आपके लिए दिल से तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैसेज करने वाले हैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ इंस्टाग्राम के माध्यम से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कलामुद्दीन मियाँ सिवान से जुड़े हुए हैं और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने के बोल हैं काहे बियाहला बाबूजी। तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे इनके साथ।

0: अभी हम लोगों ने सुना कलामुद्दीन जी की तरफ से खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा मैसेज सुन कर के रीड नहीं कर रही हैं, और ऐसा क्यों मैम जी? तो ऐसा नहीं है, आपका भी मैसेज देख रही हूँ और रीड भी कर रही हूँ, और वैसे आपके गाने की आज फरमाइश नहीं है इसीलिए मैं गाने को प्ले नहीं कर रही हूँ। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मुझे भी गाना सुनना है और गाने की भूल यहाँ पहुंची हुई है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और फरमाइश पहुंची हुई है जो कि वॉइस के माध्यम से, और लिख रहे हैं कि हम खामोश तबीयत के सादे लोग फालतू उन्हीं से गुफ्तगू करते हैं जो दिल के अच्छे लगते हैं। और बात बिल्कुल सही है। और इसी के साथ जो वॉइस पहुंचा हुआ है, चलिए सुनते हैं क्या इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हम सानिया सैफी खसना से, और आज के शो में मुझे भी गाना सुनना है तो सुना दीजिएगा, और कैसे हैं आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाने की बोल है, तुम्हारी नज़रों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है, डेडिकेट है सभी श्रोताओं को और मेरी कज़न सिस्टर मंडी, और प्ले कर दीजिएगा सॉन्ग को। थैंक यू।

तो बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश पहुंच हुई है, तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी लिसनर के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग रेडियो रंजन 90.4 FM में।

0: अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, तुम्हारी नज़रों ने हमको देखा, जब से चाहत झलक रही है। और इसी के साथ सानिया सैफी जी की तरफ से वॉइस मैसेज पहुंच चुका है, तो चलिए सुनते हैं क्या है इनकी वॉइस।
1: तुम्हारी नजरों में हमने देखा, अजब सी चाहत झलक रही है। तहे दिल से शुक्रिया आपको सॉन्ग को प्ले करने के लिए।
0: और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा मैसेज सीन लिखते हैं कि मैम कभी कभी किसी की खुशी के लिए कुछ भूल भी जाना चाहिए और 7 दिन से पहले भी बजा दीजिए। तो ऐसी बात नहीं है, अगर मैं आपकी खुशी देखूं तो हमारे सारे लिसनर खुश हो जाएंगे और बोलेंगे मेरी खुशी के लिए आज मेरा गाना प्ले कर दीजिए। तो ऐसे तो मेरे सारे लिसनर को गाना प्ले करना पड़ेगा, तो प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने दिन पे ही गाना सुने। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ सभी की तरफ से बाय बाय के मैसेजेस पहुँच रहे हैं और लिख रहे हैं कि मुझे भी आज गाना सुना दीजिएगा, सोनी मैम हमारा गनवा बजा दी। और ये लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून नौसाद MD सदाम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना चाहते हैं जो कि गाने की यहाँ बोल पहुँची हुई है, और गाने की बोल है हम नहीं रहे दिल्ली शहर में। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और सुनेंगे ये प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और क्या हमारे सारे श्रोतागण की तरफ से बाय बाय के मैसेज पहुँच गए हैं? और जो कि यहाँ लिख रहे हैं, थैंक यू मैम गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ आज आप सभी से विदा लूंगी और सुनते रहें ये प्यारा।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
4: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
5: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
6: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
4: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
4: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोपराइटर विजय कुमार केडिया।
6: कॉल करे 87-894-18-744।
7: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: हर घर सूर्य घर।
10: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
11: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
10: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
12: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
13: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
12: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
13: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
12: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान लिया।
13: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
14: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
12: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
15: All right. This is it.

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
4: समय कबीरदास जी एगो समाज सुधारक रहलन आ समाज के हर पक्ष के धैले बढ़न, ओई में से एगो पक्ष के वर्णन उन्हीं के रचना कबीरदास के रचना सुना रहल बनी, ध्यान देव सभी।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452121।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0976-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-300-99-66-999।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
7: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
12: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
11: और लाइट बिल के,
12: अब 0 रुपए कैसे दूं?
11: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
12: पक्का।
13: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
14: हर घर सूर्य घर,
15: 90.4 फ्रीक्वेंसी पर
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
8: All right.

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: ठक ठक।
6: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हेलो
2: जी।
1: हाँ, नमस्ते,
2: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: मैम, गाना सुनना है।
2: जी जी, कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: सावन का महीना।
2: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: हाँ।
2: अच्छा जी, और गाना डेडिकेट भी है। बोल रहे हैं गाना किसी को सुनाना भी है
1: जी?
2: बता दीजिए।
1: अपने पति को सुनाना है।
2: अच्छा जी, बढ़िया है। अपने पति का नाम भी बताएंगे? अच्छा, आप सभी ठीक है ना? जी जी। वैसे आप रेडियो कितने दिनों से सुनती हैं?
1: बहुत दिन से सुनते हैं।
2: अच्छा, रेडियो रिमझिम का कौन कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है?
1: आपको यही अच्छा लगता है गाना वाला? शौक है जो दिल में रहता है, बोलो और सुनो।
2: हाँ हाँ, बिल्कुल। चलिए फिर, अच्छा है, आपको अच्छा लगा रेडियो रिमझिम में कॉल किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: वेलकम।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: मैं राजू बोल रहा हूँ गुजरात सिलवासा से।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ।
1: आज सबको गाना सुना था मैडम,
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: सावन का कोई गाना सुना दीजिए नया खेसारी लाल का।
0: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ हाँ, सभी दोस्तों को और सबने जितने रेडियो टीम वाले हैं हमारे साथ।
0: वैसे रेडियो रंजन को आप कितने दिनों से सुनते हैं?
1: काफी साल हो गया है, बोले तो 5 साल हो गया है सुनते।
0: अच्छा,
1: हाँ, खाली कॉल के माध्यम से मैं जुड़ता हूँ बस।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, बाकी सब तब कार्यक्रम सुनते हैं। हाँ, मोबाइल के द्वारा सुनते हैं।
0: जी जी, चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ठीक है, थैंक यू मैडम।
0: वेलकम।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
8: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
9: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
8: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
10: Now pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
10: Pick it up,
11: hello.
10: Now pick your phone up,
11: hello.
12: Jab phone ki bindi bajti hai to kehte hain hello.
13: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो 90.4 FM में।
14: मनोरमा मैम?
15: नहीं,
14: भारती जी मैम। नमस्ते।
15: नमस्ते,
14: क्या हाल है? आज रवड़े ड्यूटी पे?
15: हाँ।
14: हम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। बहुत बार ट्राई करेंगे, फोन में ना लगा, एक बार लगभग कल तक ना उठा।
15: अच्छा, अब वही के बताए रिकॉर्ड करत
14: रहे बताए तो कोई ना, कल बहुत परेशान हो रहे 12:30 बजे तक फोन कर लगभग कोई बाद में उठलना असर नहीं।
15: और सब बढ़िया बा?
14: अच्छा ठीक बा, बारिश वरिश होता
15: ना? बारिश नहीं चल रही अभी।
14: आज तो ना चली क्या?
15: चली,
14: लेट चली
15: ना, एकदम टाइम से चली आज।
14: अच्छा, तो रिकॉर्डिंग फिर से हम पूरा हो जाए?
15: रिकॉर्डिंग पूरा हम 12 बजे तक करें।
14: तो रिपीटे चलत रहे कई दिन पुराना, कालो चलत रहे गाना।
15: और गाना कौन सा सुने बनेगा
14: आज? आज गाना ना दिन होगा दीपक बिल्ला के, कौन सा टावर पर चढ़े वाला गाना।
15: अच्छा, जो टावर वाला सॉन्ग है वही?
14: हाँ हाँ, टावर वाला सॉन्ग हमें याद नहीं है गाना भी, हमें दिमाग और नहीं हो कैसे, खाली टावर वाला याद बा।
15: गाना डेडिकेट भी
14: बाउड़ा के रही, मनोरमा मैम के रही, सोनी मैम के रही। चलो ठीक है, तब गाना सुना।
15: ओके, फिर गाना प्ले करते नहीं, सुना रहे हैं रेडियो।
14: चलो सुना दो, इंतजार।

0: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM
0: में। जी मैम, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी मस्त है। लगता है आज भारतीय दिन है क्या?
1: लग तो रहा है।
0: हाँ वही तो, आवाज चेंज है। दो दिन से नहीं, सप्ताह हो गया आपको, एक सप्ताह इसरो में आए हुए।
1: जी जी,
0: आपका इंतजार था बहुत पहले से इसरो में।
1: अच्छा,
0: एडवांस में धन्यवाद बोलते हैं इसरो में आपको आने के लिए। मैम आज तो 1 घंटा हम कोशिश किए हैं, तब जाकर लास्ट में लगा है।
1: अच्छा, 1 घंटे से लगा रहे हैं आप?
0: जी मैम, आज तो पता नहीं क्या हो गया था, लग ही नहीं रहा था।
1: नहीं, लगातार कॉल आते हैं ना, तब तक नहीं लगता है।
0: मैम तो इतना पीछे कभी नहीं जाते हैं, फर्स्ट बार, मतलब जब से रेडियो में जुड़ते हैं तब से फर्स्ट बार इतना लेट लगा है।
1: अब कॉल रहेगा तो कॉल वेटिंग में जाएगा ना?
0: नहीं, ये भी हो सकता है कि मतलब आप ज्यादा दिन पे आई हैं इसरो में, तो बहुत लोग पूछ रहे होंगे, इसलिए लंबा हो जाए। मैम तो गाना फरमाइश करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, यही
1: बता दीजिए,
0: पूछना चाहेंगे यही, मतलब ज्यादा लेट लगा है तो आज नहीं बजेगा?
1: देखना पड़ेगा कि अब देखिए, आज नहीं तो कल बज ही जाएगा। लेकिन
0: अच्छा मैम, जो जुम्मा को बजता है, मतलब आज शुक्रवार को, वो वाला तो मतलब रिपीट नहीं चलता है?
1: नहीं,
0: क्योंकि हम कभी कभी शाम को नहीं सुन पाते हैं, तो रिपीट में मतलब सुनते हैं। तो मतलब मैम गाना का फरमाइश आज यही है, गाना का नाम है बेवफा प्यार की राह में।
1: अच्छा,
0: सुनी होंगी, बहुत ही अच्छा गाना है।
1: सुने
0: जी, उदित नारायण और अलका याग्निक का आवाज है, वही वाला सुनना था।
1: बिल्कुल, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
0: डेडिकेट रहेगा आप और मरुमा मैम को और सभी सुनने वालों को, जितने भी 90s के फैन है। मैम रेडियो में हम, मतलब रेडियो जो है ना, बहुत पहले से हम, मतलब हमारा सपना एक था कि रेडियो में रेडियो का आवाज बने, लेकिन बन नहीं पाए कुछ कारण से, इसलिए जुड़ के अपना गाना सुन के ही एंजॉय करते हैं, क्या कर सकते हैं।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: तो मैम सुनते तो हम डेली, कोई भी शो मिस नहीं करते हैं।
1: अच्छा जी,
0: रेडियो से हमको बहुत ज्यादा लगाव है ना मैम।
1: रेडियो सुनना अच्छा लगता है, ये बात अच्छा लगा सुन के।
0: हाँ, और एक सप्ताह से आप आई है तो और भी आज अच्छा लगेगा सुनने में शो को।
1: अच्छा,
0: और योर वॉइस योर चॉइस में आप मेरा मैसेज ही शामिल नहीं करती है, लगता है आप भूल जाती है शो में हमको।
1: नहीं नहीं, शो में किसी को भूलते नहीं है, सबका मैसेज शामिल करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है।
0: देखिए मैम, 3 दिन से हम मैसेज कर रहे थे पिछले हफ्ते में, आप लास्ट वाले दिन में मतलब बजाई थी और बोल रहे थे।
1: कोई बात नहीं, हो जाता है।
0: आज तो चलेगा?
1: हाँ हाँ चलेगा,
0: आप आइएगा।
1: आप वैसे ठीक है फिर?
0: धन्यवाद मैम।
1: ओके, रेडियो रंजन कॉल के इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमरजैट पर।
0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंगीन 90.4 एफएम में।
5: नमस्ते मैम।
6: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
5: बीरबा अब्दुल चौहान।
6: और कहाँ से हैं आप? जी जी, कौन से गाने की फरमाइश है?
5: तो गाना का फरमाइश हाँ, फूल मैं भेजू दिल ये करता है पर तेरा पापा मालूम नहीं। यही सब सुना दीजिएगा। और सुनने वाला बलवानी कुमार, वो भी नुनियत वाला था। अमन कुमार नुनियत वाला था, वो भी। जतिन कुमार, रवि कुमार, ये सब कोई नुनियत वाला था। ये
6: जी जी, वैसे आप रेडियो रिमझिम कितने दिनों से सुनते हैं?
5: हमको सुनने में कम से कम 9-10 साल हो गए। पहले केरला में था, सूरती में थे। आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम भारती है।
5: हाँ, भारती अभी तो नाम आपने सुना था, मैं सुनता रहता हूँ हमेशा।

0: मगर आपका नाम भूल गया था मैं। अभी शूटिंग मैम के, दिव्या मैम के, सब कोई का नाम अभी याद आता है हमको।
1: अच्छा,
0: पल्ली मैम है क्या रहा है?
1: हाँ हाँ,
0: चलिए कब तक सुना दूंगे?
1: शाम को 5 से 7 के बीच में जो चलता है उसी में।
0: वो तो पता है, क्या पता कहीं
1: आज चलेगा नहीं तो कल चलेगा जरूर।
0: अभी तो पहले चला तो लगा था, अभी अभी मैं जयपुर में हूँ राजस्थान में, पहले चला रहता था तो वहाँ से फोन लगाता था, वहाँ से बात कर चुका हूँ। अभी दिल्ली आया हूँ, जयपुर में राजस्थान है, यहीं से अभी फोन लगा रहे हैं।
1: जी जी,
0: आज फोन लगाने के लिए छुट्टी मार दिया हूँ, मेरे को ज्यादा दिन हो गया था, कम से कम 2-3 महीने हो गया मेरे को फोन लगा कर बात किए हुए, छुट्टी मार दिया मेरा। आपका 2300-2350 रुपया मेरा गया।
1: नहीं, छुट्टी नहीं लिया जाता है, उसी में कॉल कभी कर लीजिएगा, हो जाएगा।
0: टाइम नहीं मिलता है, सुबह 8:30 से 8:30 बीती है, 7:30 बजे आते हैं, 8:30 बजे रात को आते हैं।
1: अच्छा,
0: इसलिए तो टाइम नहीं मिलता है। संडे के दिन छुट्टी रहता है तो संडे के दिन तो चालू नहीं रहता है।
1: नहीं,
0: संडे के दिन तो क्या बोलते हो जो सवाल है वो करते हैं, तो वही टाइम नहीं मिलता है मेरा। 2300 रुपया गया, वो भी छुट्टी मारने में सोचा कि आज बात करूंगे मेरे साथ, 2300 रुपया चला गए, कोई बात नहीं। मगर अपने गोपाल बोलते वहाँ फोन करिए, बात कर लिया, गाना मांगूंगी।
1: जी जी, चलिए कोई बात नहीं, फिर गाना
0: ठीक है।
1: हाँ हाँ, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 104.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम जिम 90.4 एफएम में।
1: वेलकम। नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते,
1: हम अरविंद कुमार बात कर रहे हैं, त्रिवेणी सुपौल बिहार से।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, अपना सुनाइए।
0: हम सब भी अच्छे हैं।
1: मौसम उधर का कैसे है?
0: अभी तो मौसम हल्की गर्मी भी है, हल्का धूप है, अभी तो नहीं है, धूप आ रहा है, जा रहा है।
1: मैडम मेरे तरफ तो काफी बारिश हो रहा है घंटे से।
0: अच्छा, चलिए बढ़िया है, बारिश हो रहा है तो।
1: मैडम एक सॉन्ग का फरमाइश है मेरा,
0: बता दीजिए।
1: सारी रात यादव का भोजपुरी सॉन्ग है, ड्राइवर हो बोलबम सॉन्ग है, प्ले कर दीजिएगा और डेडिकेट रहेगा जितने लाइव अभी दोस्त हमारे सुन रहे हैं सभी को, खास करके आपके लिए।
0: ओके जी, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: धन्यवाद।
0: वेलकम।

0: मेरा काट।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
10: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710-3092 या 9765-65750।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
0: हेलो
12: हेलो मैडम
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4
12: FM। स्वागत है रेडियो रिमझिम में। देखिए वही हम गोपालगंज से सुन रहे हैं। हेलो मैडम, आप सोनी है?
0: नहीं, भारती बोल रही हूँ।
12: सोनी कहाँ से बोल रही है आजकल?
0: ये तो मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं मालूम है, ये हमारी मैनेजमेंट बताएगी आप।
12: शादी नहीं है
0: जी,
12: मेरा गाना फिर मासी नहीं रहे, करीब 15-20 गाना दिए हुए, तो बजता
0: गाना नहीं बजता है।
12: कहाँ बज रहा है? बाजे से 6 महीना से हम चला रहे हैं गाना, को कहाँ आ रहा है? तो गाना मेरा
0: 6 महीने से नहीं आ रहा है।
12: नहीं, बीच में 2 बार आया था, इसके बाद कहाँ आ रहा है? हम झारखंड से बोल रहे हैं।
0: कितने बजे सुनते हैं?
12: अरे हमारा 24 घंटा चार्ज में रहता है गोपाल रेडियो।
0: तो नहीं नहीं, ये तो ना 5-7 के बीच में चलता है, उस समय सुनिएगा, क्योंकि उस समय इस शो में जितना कॉल होता है सब बजता है।
12: हम रेडियो बजा रहे हैं, रेडियो।
0: हाँ हाँ, रेडियो का ही बात कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये 5 से 7 के बीच बजेगा।
12: अच्छा, तो हम कोडरमा से बोल रहे हैं, झारखंड कोडरमा। झारखंड कोडरमा सतगावा, अम्माबाद पुटेली से बोल रहे हैं
0: जी।
12: मेरा नाम है रविकांत कुमार, मेरा फरमाती है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
0: मूवी है ना ये, गाना इसमें का कौन सा सुनना है?
12: गाना है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
0: और गाना भी है
12: यही, इसी में ही गाना है।
0: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत

0: हेलो,
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: 11 बजे से मेहनत कर रहे हैं लोग।
0: अच्छा,
1: हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत की है।
0: कौन मैं अपना
1: सही समाचार
0: ठीक है, आप बताइए।
1: हाँ, भी ठीक है, करीब करीब ठीक है, हुआ गए, हवा चल रहा है, ठीक हो गए।
0: हाँ, गाना बता दें कौन सा।
1: गाना आपको बता, ये फूल तो याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद है। एक बंजारा अंजारा आए, जीवन के गीत सुनाए। हाँ, इसी को
0: गाना सुनाए तो वह क्योंकि।
1: हाँ, पहले आप सुनिए, बाद में पूरा रिमझिम के सुनने वाले स्रोत है सब लोग।
0: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करता नहीं सुना रहे रेडियो रिमझिम 90.4।
1: हाँ, कब सुने रहे हो
0: गाना? आज ना तो कल बाद में।
1: काल, ठीक।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
3: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
5: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up. Now pick your phone up.
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो,
12: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। नमस्कार,
13: मनीष राजा फाइन एजुकेशनल बोल रहे हैं।
12: जी जी, कैसे हैं आप?
13: ठीक है, अपना बताइए।
12: हम भी ठीक हैं।
13: क्या हो रहा है?
12: कुछ नहीं, बस आप सभी से बातें हो रही
13: हैं। गाना सुनना है, सुना दीजिएगा।
12: ये कौन सा गाना?
13: बोलबम का गाना सुनना है।
12: और गाने के बोल?
13: बोलबम का कोई भी गाना सुना दीजिए, खेसारी लाल यादव का पुराना गाना।
12: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
13: सबसे पहले आपको पूरा रेडियो सुनने वाले बताओ।
12: जी जी, और सब ठीक है?
13: और सब ठीक
12: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
0: हेलो,
1: हाँ बोलिए।
0: हेलो,
1: हाँ नाम बता दीजिएगा अपना।
0: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ मैं, देवभूमि उत्तराखंड से।
1: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
0: बस बढ़िया है, जकास है, बिंदास है, मस्त है।
1: अच्छा,
0: बारिश हो रहा है। बारिश तो सुबह से हो रहा है, बारिश तो अक्सर हो जा रहा है।
1: हाँ, उधर तो ज्यादा होता ही है शायद बारिश।
0: बहुत बारिश होता है, बहुत लगातार बारिश हो रहा है बहुत दिनों से। कल थोड़ा सा राहत मिला था।
1: अच्छा जी, और सब बताइए, और सब हाल?
0: बहुत बढ़िया है। हमने कहा आज लगाता हूँ फोन आप लोगों से बताने के लिए,
1: कभी कभी बात हो जाना चाहिए।
0: समय की टाइम है ना, मुझे पता ना, आप लोगों को टाइम 11 बजे 12 बजे के बीच में है, और उसमें हमारा हमारा काम रहता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, इस चक्कर से हमें जिले निकाल निपटाना पड़ता है। अभी बस काम निपटा लिया हूँ, तो हमने कहा टाइम है 10 मिनट देखता हूँ, क्या पता बात हो जाए।
1: तो कॉल 12:30 बजे तक चलता है।
0: अच्छा, 12:30 बजे चलता है, ठीक हो गया। अब तो मेरे पास भरपूर टाइम है, 1 घंटे में तो कर लूंगा मैं। हमें इतना पता था कि 11 से 12 होता है, इसलिए मेरे दिमाग में 12 बजे तक ही था।
1: 11 से 12:30 बजे तक होता है।
0: ठीक हो गया। तो हमारे चलिए ठीक हो गया।
1: बता दीजिए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
0: गाना चुनरी चुनरी करके आता होगा ना? हाँ, वही वाला।
1: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
0: हाँ, कामरान भाई को, उत्तम सोनी को, और सगीर आलम, परजू भाई, और जितने भी सुनने वाले हैं, आप भी हैं, सोनी जी हैं, सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा।
1: जी जी, बिल्कुल। तो फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन।
0: ठीक है, ओके, नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
3: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
6: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
5: और लाइट बिल के,
6: अब 0 रुपए कैसे दूं?
5: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
6: पक्का।
7: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in।
8: हर घर सूर्य घर।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी,
10: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4।
11: और मैं ठीक हूं।
10: हाँ हाँ, हम ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
11: हम तो ठीक हैं
10: जी। नाश्ता हो गया है आपका?
11: हाँ हाँ मैम, नाश्ता हो गया, दुकान पे हैं।
10: अच्छा जी, तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
11: गाजन का घर, सावन आए बादल आए बुलबुल चलते फूल खिलाए, यही गाना सुनना।
10: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
11: अजय प्रजापति हैं, लुकमान भाई हैं और कुलदीप भाई हैं, अमित भाई हैं और रवि, हमारे रवि शर्मा जी हैं।
10: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते हैं रेडियो।
11: हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के बोल रहे हैं
10: जी।
11: अयोध्या डिस्ट्रिक्ट।
10: नाम आपका बता दीजिए।
11: सूरज प्रजापति
10: जी।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू और आपको नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और सावन महीने की दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ सभी लिसनर लोगों को भी।
0: जी जी,
1: रेडियो रिमझिम परिवार सब ठीक ना?
0: सब कुछ ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, महादेव की कृपा है। आरजे सोनी जी कहाँ है आजकल? तो उनका शो भी नहीं आ रहा है, आप आ रहे हैं उसमें या फिर उनके शो पे आपका कब्जा हो गया है लग रहा है?
0: नहीं, ऐसा नहीं। अब सर जिसको बोल देते हैं वही काम वही करना होता है हम लोगों को।
1: जी जी, ये जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, मेरा मैसेज शामिल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।
0: नहीं तो सबका मैसेज शामिल करती हूँ।
1: तो आज तो सोचे हैं कि आज मैसेज नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट कॉल ही करेंगे। और उसमें जानती हैं, उसने कॉलिंग का ही प्रोग्राम उसको कर दिया जाए ना तो वो अच्छा नहीं लगे, मैसेज अच्छा लगता है।
0: हाँ, मैसेज सबकी बातें शामिल करना होता है तो अच्छा लगता है, कौन क्या बोला है क्या नहीं बोला है उसको पता चलता है।
1: और उसमें क्या होता है कि आप लोगों को थोड़ा टाइम भी मिलता है और लगातार कॉलिंग हो तो फिर तो ठीक है। गाना आज सोमवारी का ही कोई सुना दीजिए, पवन सिंह का गाना सुना दीजिए, एक बहुत वाले गाना आया था कि हमर जान भूखल बाड़ी, सही था सोमवारी का ही गाना है, वही वाला सुना दीजिए।
0: गाना सुनाना भी चाहेंगे किसी को?
1: सभी लोगों को और खासकर कुंवारे लोगों को।
0: अच्छा जी, ठीक चलिए ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू,
0: वेलकम।

0: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
0: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
0: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के

0: अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
6: नमस्ते दीदी।
7: नमस्ते,
6: गाना सुने के बाद?
7: जी, नाम बता दिया आपका।
6: रामकेश।
7: और कौन सा गाना सुने
6: खेसारी लाल के बंधन फिल्म का गाना? नहीं कहे हुए।
7: कौन सा?
6: खेसारी लाल के बंधन फिल्म का गाना।
7: अच्छा, मतलब हमें तो बहुत सारा गाना बा, मैं कौन सा गाना?
6: कौन बजा दे गाना? याद नहीं क्या, कौन सुना दे गाना? अच्छा,
7: अच्छा जी, गाना सुनाओगे बा? क्यों के गाना मतलब क्यों के सुनाओगे
6: बाटार?
7: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं। सुनत रही रेडियो रंजन 104 FM।

0: हेलो
1: हेलो रेडियो रिमझिम।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ, गोपालगंज वार्ड नंबर 2 से।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी, बिल्कुल सही है। गाना हमको सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: ये नाम फिल्म का गाना है, ये अपना CI है, CI है, ये ही गाना सुना दीजिए।
0: और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: बस आप अभी परिवार को रेडियो रिमझिम का जितने श्रोता गण है। कल गाना सुनाएंगे।
0: ये आपको शो चलता है शाम को 5 से 7 बजे और सुबह में रिपीट होता है 9 से 11।
1: जी जी, बहुत ही है, बहुत मेरी की बात है कि कॉल लग गया, नहीं तो 2-3 बार ट्राई किया, लगा ही नहीं
0: है। जी, कभी कभी नहीं लगता, बिजी रहता है ना, इसीलिए। ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
12: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
12: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
15: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395-56651 या 97-0-97-06-575।
16: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
17: ब्रेक के के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
18: जी हेलो
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
18: जी धन्यवाद मैडम।
19: हेलो
18: जी। हाँ मैडम नमस्ते।
19: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
18: मैडम मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से।
19: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
18: बस मैडम बहुत बढ़िया है हम तो, आप बताइए आप कैसी हैं?
19: हम सब भी अच्छे हैं।
18: जी जी, और मौसम कैसी है मैडम आपकी तरफ?
19: मौसम तो अभी ठीक है, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा मतलब ठंडा, एकदम नॉर्मल है।
18: जी जी बिल्कुल, इसी तरह का मौसम तो अच्छा लगता है मैडम।
19: और बताइए, और सब ठीक है आपके यहाँ?
18: हाँ मैडम, अपने यहाँ सभी लोग बढ़िया हैं। और अपने यहाँ क्या है कि अभी लगातार बारिश हो रही थी 3-4 दिनों से, और कल और आज 2 दिन अभी पानी रुकी हुई है।
19: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
18: मैडम फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, और गीत के बोल हैं झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
19: जी जी, गाना किसी को सुनाएंगे भी?
18: जी मैडम, अपने रेडियो मित्र है सरगुजा रेडियो श्रोता संघ के सभी साथी रहेंगे इस गाने में शामिल, और साथ ही रेडियो मित्र।
19: जी जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो भारती जी।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
1: अच्छा, मैं तो आपका रेगुलर श्रोता हूँ, लिसनर। तो मैं बंगाल से गोपाल बोल रहा हूँ, आप जानते हैं मैं व्हाट्सएप अधिकारी हूँ। तो आपके साथ आज पहली बार बात हो रहा है। आज तो नहीं से तो बात मेरा बहुत पहले से भी हो गया, जान पहचान उससे भी है। तो मैं बंगाल से बोल रहा हूँ, मेरा गाँव तो है, आप तो सिलीगुड़ी नाम सुने हैं?
0: जी जी।
1: सिलीगुड़ी से आगे इधर जो विधाननगर पहुंचा पाइनएप्पल से यहाँ पर फेमस है ना, मैं वहाँ पर रहती हूँ। कैसे है, बोलिए।
0: हम सब ठीक है, आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
1: हम भी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए मैं इसलिए कह रहे थे, भारती जी से बात तो नहीं हुआ है। देखिए आज कॉल भी वगैरह लाइन भी मैं आ गया हूँ, तो गाना भी तो रिक्वेस्ट मैं कह सकती हूँ, लेकिन आपका वो प्रोग्राम जो बहुत अच्छी तरह चल रहा है ना, यहाँ पर बंगाल में नहीं सुनते, लेकिन बंगाल मेरा मैं जो सुनते हूँ ना, मेरा साथ बहुत दोस्त मेरा सुनते हैं, उसे बोलते हैं बार हिंदी में परिवार, तो हम वो जो सब मोबाइल ऐप में सुनते हैं ना, मैं भी तो मोबाइल ऐप से सुनते हूँ, रेडियो भी है बस रेडियो में ना क्लियर नहीं आ रहा है, 94.0 जो ये आज है ना क्लियर नहीं।
0: लेकिन ऐप के जो द्वारा सुनते हैं उसमें तो क्लियर आता है।
1: हाँ, वो तो क्लियर आते हैं, वो तो नेट के तरह चल रहा है ना, नेट रहेगा तो होगा, नहीं होगा। मेरा घर में तो वाईफाई है लगा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो मैं अभी दुकान से बैठ के मेरा गाना सुन रहा हूँ, लेके इसलिए फोन किया।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए गाने की फरमाइश।
1: गाने का फरमाइश है, अमिताभ बच्चन का एक तो मूवी है ना कालिया, कालिया मूवी का जो जहाँ भी तेरी नजर है मेरी नजर, मूवी का गाना तो सुना दीजिएगा किशन कुमार की आवाज में।
0: जी जी,
1: बहुत बढ़िया फिल्म है वो, एक टाइम में बहुत फेमस हुआ था, हम लोग तो पुराना फिल्में देख रहे हैं ना। और ये प्रोग्राम तो आपको तो 5 बजे से चलेगा ना?
0: हाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यही मेरा तो गाना तो सबकी डेडिकेट करते हूँ, आपको डीजे परिवार को, आपको भी। तो एक दिन मेरा गाँव आए ना, विधाननगर सिलीगुड़ी के आए ना, है चला है। आप ये स्टडी करते है क्या, पढ़ाई करते है?
0: जी, स्टडी भी है, स्टडी।
1: अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे है।
0: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
1: ओके ओके, थैंक्स,
0: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: ठक ठक।
2: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
3: अच्छा, मिला ही नहीं।
2: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
2: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
8: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
9: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
9: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
8: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
9: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
11: कॉल करें 87-894-18744।

0: सदा की भांति विक्रम ने बैताल को अपने वश में किया और पीठ पर लादकर चल दिया। और फिर बैताल ने विक्रम को राह काटने के लिए एक नई कहानी सुनानी प्रारंभ की। कहानी थी शत्रुशील नामक नौजवान की। समुद्र के तट पर ताम्रलिपि नामक एक नगर था। वहां शत्रुशील नामक नौजवान काम के लिए राजा से भेंट करने के लिए इधर उधर भटक रहा था।
1: नहीं माने तो चल चलता हूँ, पर वो शर्त नहीं भूलना, बोलना नहीं। अगर तू भूलेगा तो मैं उड़कर अपनी जगह पे पहुंच जाऊंगा। तो सुन, रास्ता काटने के लिए और मन बहलाने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। समुद्र के तट पे ताम्रलिपि नाम का एक नगर था। वहां शत्रुशील नामक एक नौजवान कई दिनों से व्यर्थ चक्कर काट रहा था, भटक रहा था कि उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए।
2: ला माई, पाव भर चना देना।
3: आ गया तू, कहाँ गया था रे?
2: हमने कहाँ जाना, गांव से समुद्र के किनारे ताम्रलिपि में महाराज के दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ के कर्मचारी बहुत दुष्ट है माई, हमें राजमहल में घुसने नहीं देते, कहते हैं बाहर जाओ बाहर जाओ।
3: अरे बावरे, तू क्या करेगा रे राजमहल में जाकर इसी फटी हालत में?
2: माई, हम महाराज के हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे हमें अपनी शरण में ले लो, हमें अपनी सेवा का मौका दे दो।
3: ले ये चने ले, और तू भी तो कमा ले, राजा की नौकरी के पीछे ही पड़ा है, काम ही करना है तो कहीं और कर ले।
2: नहीं माई, हमने भी मन में दृढ़ निश्चय कर लिया है, सेवा करनी है तो सिर्फ महाराज चंद्रसेन की। माई एक आमला देना।
3: नहीं मिलेगा, रोज का ले जाता एक फुकट का। ले।
4: ए बुढ़िया, ए माई, यहाँ से दुकान हटाकर तनी दूर लगा ले।
3: क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगाऊं?
4: अरे अभी महाराज की सवारी निकलने वाली है, पूरा ताम जाम झंका मंका गुजरेगा यहाँ से।
3: हाय भैया, महाराज की सवारी निकल रही है।
2: भाई साहब, महाराज यहाँ से गुजरेंगे?
4: हाँ हाँ, सुना नहीं का?
2: हाँ सुना, महाराज कहाँ जा रहे हैं?
4: शिकार खेलने जा रहे हैं जंगल मृगया पर तुम्हें इसे मतलब?

0: महाराज, महाराज आप यहाँ बैठिए। महाराज
1: कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा?
0: मेरा सप्तशील महाराज।
1: सुंदर नाम है, यहाँ जंगल में रहते हो?
0: नहीं महाराज, हम गांव में रहते हैं। हम ताम्र लिपि से आपके पीछे दौड़ते दौड़ते आए हैं।
1: ताम्र लिपि से हमारे पीछे दौड़ते हुए क्यों?
0: आपके दर्शनों के लिए महाराज।
1: दर्शन तो ताम्रलिपि में भी हो सकते थे।
0: नहीं होते महाराज, वहाँ हमने बहुत प्रयत्न किए। आपके आपके कर्मचारी है ना, वो बहुत दुष्ट हैं। वो हमें आप तक पहुँचने ही नहीं देते।
1: बोलो क्या चाहते हो
0: महाराज? हम वो बाद में निवेदन करेंगे, आप तनिक आराम कर लीजिए। आपने घोड़ा बहुत तेज दौड़ा है ना।
1: कहीं पानी मिलेगा? प्यास लगी।
0: अवश्य मिलेगा, हम अभी लेके आते हैं महाराज।
1: कहीं पानी मिलेगा? प्यास लगी।
0: अवश्य मिलेगा, हम अभी लेके आते हैं महाराज।

0: महाराज हमारे पास कुछ कुछ चने भी हैं।
1: क्या कह रहे थे तुम?
0: महाराज हमारी बचपन से इच्छा है कि हम जवान होके आपकी सेवा कर सके, इसीलिए हम अपना गांव छोड़ के नगर में आए हैं महाराज।
2: ये लो हमारी राजमुद्रिका, इसे पहनकर जब कल तुम राजमहल आओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा।
0: महाराज हमें हमें वाकई आपकी सेवा का मौका मिलेगा?
2: अवश्य मिलेगा, आज से तुम हमारे सेवक हुए।
0: धन्य महाराज, धन्य।

0: धीरे धीरे शत्रुशील राजा का चहेता हो गया। एक दिन राजा शत्रुशील के साथ भ्रमण पर निकले।
1: शत्रुशील
2: जी महाराज,
1: क्या तुम जानते हो हमारे देश में कितने नवयुवक हैं जो बेकार भटकते हैं, जिन्हें काम नहीं मिलता?
2: जानते हैं महाराज।
1: कभी इसका कारण सोचा है तुमने? इसका कारण है व्यापार की कमी। व्यापार नहीं तो रोजगार नहीं, काम धंधा नहीं। कितना बड़ा समुद्र है, ना जाने कितने द्वीप कितने देश हैं हमारे आसपास। अगर हम उनसे व्यापार कर सके तो हमारे देश में खुशहाली आ जाए, सुखी हो जाए।
2: ऐसा क्यों नहीं हो सकता महाराज?
3: हाँ, हो सकता है। यदि कोई नौका में बैठकर जाए, उन द्वीपों का पता लगाए, वे द्वीप कहाँ हैं, कितने बड़े हैं, उनकी आवश्यकता क्या है, तब कहीं जाके व्यापार आरंभ हो। लेकिन उसके लिए साहस चाहिए, संकल्प चाहिए।
2: आप आज्ञा दीजिए महाराज, हम अवश्य जाएंगे।
3: तुम जाओगे? जा सकोगे तुम?
2: क्यों नहीं महाराज, आप आज्ञा दें और हम ना जाएं? धिक्कार है हमारे जीवन पे, हम अवश्य जाएंगे महाराज।
1: शाबाश, आओ।
4: इस ध्वज और हमारी मर्यादा की रक्षा करते हुए तुम उन तमाम द्वीपों की तरफ जाओगे और उन लोगों का मन जीत लोगे, ताकि हमारी और हमारे राज्य की ख्याति बढ़े। समझे? ये योद्धा तुम्हारे साथ है, विजयी हो।
2: ठहरो, ये किसी देश का ध्वज लगता है, नाव का वहां लेके चलो।
5: ये तो चमत्कार है, आसपास कोई भूमि नहीं, ये ध्वज लहरा रहा है।
2: ये ध्वज जरूर किसी देश का है। हमें महाराज ने कहा था कि आसपास के सब देश और द्वीपों का पता लगाना। हम वहां जाते हैं।
5: आप कहाँ जा रहे हैं? ये समुद्र है,
2: उसका पता लगाने का।

0: सुनिए,
1: ये कौन है?
2: पता नहीं कौन है,
1: यहाँ कैसे आ गया?
2: तो देवी से वर मांगती थी ना, ले आ गया।
0: सुनिए मेरी बात तो सुनिए, ये हम कहाँ आ गए? ये पृथ्वी लोग है या पाताल लोग? हम राजा चंद्रसेन के नौकर हैं, उनके सेवक हैं।
1: सेवक?
0: जी, ये उनकी दिव्य मुद्रिका है।
1: ये सब बातें तो बाद में होती रहेंगी, आप चलकर पहले आराम तो कीजिए।
0: चलिए।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
3: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
11: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
12: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
11: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
12: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
11: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
12: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
13: हम पूछते हैं सतुशील कहाँ है, उसे कहाँ छोड़ा है तुम लोग?
14: महाराज, सतुशील जी उस झंडे के पास से सागर में कूदे तो बाहर नहीं निकले।
15: पता नहीं वो कहाँ समा गए, कोई जीव जंतु ना मिल गया उन्हें।
14: जब बड़ी देर तक वे बाहर नहीं निकले तो हम लोग वापस लौट आए महाराज।
1: जी?
0: यहाँ तो बहुत आनंद है।
1: आप भोजन करेंगे?
0: अवश्य करेंगे, हमें तो बहुत भूख लगी है। आप आमले खाएंगे? हम कुछ आमले लाए हैं।
1: जी नहीं धन्यवाद।
0: आप बहुत खूबसूरत हैं। ये बात हम अपने राजा चंद्रसेन से अवश्य कहेंगे।
1: आप भोजन से पहले स्नान नहीं करेंगे?
0: जी, जब हम आपके झंडे के सहारे समुद्र में उतरे थे तो हमारा स्नान हो गया था, लेकिन आप कहती हैं तो हम और कर लेते हैं।
1: वो स्नान समुद्र में हुआ था, अब तालाब में खींचिए ना।
0: चलिए
1: बच्ची,
0: आप जाइए, हम खुद स्नान कर लेंगे।
1: ध्वज के नीचे सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जाए, भविष्य में कोई भी व्यक्ति उस रास्ते से हमारे राज्य में प्रवेश ना करने पाए।
0: राजकुमारी जी, आपका तालाब तो बहुत गहरा है।
16: सत्वशील
0: महाराज, आप यहाँ कब पधारे?
16: ऊपर आ जाओ सत्वशील।
0: महाराज हम सपना देख रहे थे।
16: नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे, तुम तो वहाँ ध्वज के पास समुद्र में उतरे और उसके बाद तुम यहाँ से निकले। इस बीच क्या हुआ ये तुम हमें बताओ सत्वशील।
0: महाराज, वो राजकुमारी थी ना, बहुत खूबसूरत थी। उसका महल बहुत ऊंचा था। जब हम महल के अंदर गए ना महाराज, तो वहाँ बहुत बड़ा दरिया था। हम दरिया के अंदर गए और यहाँ निकल आए। हाँ महाराज,
16: हम वहाँ जाएंगे, हम वहाँ अवश्य जाएंगे।
0: चलिए

0: यदि और भी कोई वीर है इस राज्य में तो आ जाए। राजकुमारी जी, भेजिए अपने सैनिकों को जो लड़ना चाहे।
1: राजकुमारी जी, ज्यादा खून खराबा मत कीजिए, मान लीजिए हार। राजा चंद्रसेन परमवीर हैं, परमवीर।
2: आप जीत गए, आज से ये राज्य आपका है।

0: आज से सत्वशील यहाँ पे हमारे प्रतिनिधि के रूप में राज करेंगे और राजकुमारी जी आप सत्वशील से विवाह करके यहाँ की रानी बन के रहेंगी।
1: जी महाराज।
0: सत्वशील आपके रूप और सौंदर्य की बहुत प्रशंसा करते हैं।

0: याद है जंगल की वो दोपहर।
1: इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से प्रश्न किया, बता विक्रम कि राजा और शत्रुशील में ज्यादा साहसी, ज्यादा वीर और ज्यादा प्रतिभावान कौन है, बता।
2: बैताल, ये तो बहुत आसान है। शत्रुशील राजा चंद्रसेन की तुलना में अधिक साहसी है।
3: हाँ, वो कैसे?
2: देखो, सच्चे बहादुर वो होते हैं जो अनजान रहस्यों से जूझते हैं और ऐसे समय में भी डरते नहीं। जब शत्रुशील झंडे को देखकर समुद्र में कूदा, तब उसे नहीं मालूम था उसके साथ क्या बीतेगी। राजा चंद्रसेन ने तो पूरा वर्णन सुन लिया था, इसलिए समुद्र में कूदते समय वो जानता था कि क्या होगा। दोनों में सच्चा साहसी शत्रुशील है, सच्चा साहस उसी का है।
3: अरे विक्रम, साहसी और बहादुर तो तू भी कम नहीं है। जो उस धूर्त साधु को वचन दिया था ना, उसको निभाने के लिए आधी रात को बस लगा हुआ है। अरे तू तो साहसी और साहसियों का पारख ही है, और तेरे इस साहस का तो जवाब भी नहीं है कि मेरी शर्त है कि तू बोलना नहीं, और तू बोले जा रहा है। मैं चला।
4: मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजद पर।

0: अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
4: ऑलराइट।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से मासिक पेंशन की राशि भेजी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए है तैयार। और सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई यह यात्रा गांधी मैदान स्थित जेपी कोलंबर से शुरू हुई और करगिल चौक पर समाप्त हुई। एक रिपोर्ट।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: हाथों में तिरंगा, जुबा पर देशभक्ति के नारे और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते लोग। मौका था हर घर तिरंगा अभियान के तहत पटना में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा का। यात्रा में राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस के स्वयंसेवकों और बड़ी संख्या में आम लोगों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। जगह जगह तिरंगे से सजी राजधानी में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। तिरंगा यात्रा के दौरान पूरा मार्ग राष्ट्रभक्ति के नारों और देशभक्ति गीतों से गूंजता रहा। तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि तिरंगा हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है और इसका सम्मान करना हर भारतीय का दायित्व है। उन्होंने लोगों से जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली तिरंगा यात्रा में शामिल होने की अपील की।
1: मैं पूरे बिहार वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ,

0: इधर जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अररिया, शेखपुरा, कैमूर, औरंगाबाद, मुंगेर और पटना समेत विभिन्न जिलों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए हृदय स्पर्शी बन गया है। श्री शाह ने नागरिकों से अपील की कि वे तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से इस अभियान में भाग लें और उत्साहपूर्वक मनाएं। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा .com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। श्री रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष से सदन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यवाही में बाधा नहीं डालने का आग्रह किया।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: जदयू से राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि विपक्ष का रवैया संसद को किसी भी हाल में नहीं चलने देने का है, उनको जवाब से कोई मतलब नहीं है।
4: कॉपरेट तो करे विपक्ष, सकारात्मक डिस्कशन होने दे, उसमें सारी बात आ जाएगी। उसमें कहाँ दिक्कत, इससे पहले भी जब रहा है हर एक इशू पर वो बोलते रहे, लेकिन विपक्ष का जो रवैया है वो पार्लियामेंट किसी हाल में नहीं चल रही, उसको किसी जवाब से नहीं मतलब कि कौन क्या जवाब।
1: राजद के संजय यादव ने कहा कि विपक्ष आम लोगों की भावना को सदन में रख रहा है, विपक्ष के दबाव के कारण ही सरकार इस मुद्दे को लेकर चर्चा कराने पर सहमत हुई है।
5: विपक्ष जो जमीन पर जन भावना है उसको सदन में रख रहा है। 20 जुलाई को छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ था, आज हम 10 अगस्त को बात कर रहे हैं, 21 दिन बाद विपक्ष ने इन पर दबाव डाला है, तब जाके ये राजी हुए हैं।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में मासिक पेंशन की राशि DBT के माध्यम से अंतरित की। इसके तहत मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और बिहार निःशक्तता पेंशन योजना समेत 6 योजनाओं के लाभार्थियों के बीच राशि का हस्तांतरण किया गया। लगभग 1,158 करोड़ रूपए अंतरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: बहुत खुशी हो रही है कि आज लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों को एक साथ हम लोग सभी के खाते में 1,100 रूपये का पेंशन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो वृद्धजन है, विधवा बने और दिव्यांग, ये तमाम लोग समाज में अपने आप को आगे बढ़ा सके और पेंशन के माध्यम से मूल भावना है कि उनके जीवन यापन आसानी से चल सके।
0: मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता मौजूद थीं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कटिहार में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिसीमन पूरा होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराए जाएंगे।
2: पंचायत के चुनाव परिसीमन के बाद होने हैं, परिसीमन के बाद पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। दोनों ही काम है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाना है, तो टाइमलाइन हम कमिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब विभाग की तरफ से जो भी सहयोग किया जाना है निर्वाचन आयोग को, सारा सहयोग दिया जा रहा है और पूरी कोशिश है कि विभाग की ओर से भी सही समय पर काम पूरा हो परिसीमन का और उसके उपरांत चुनाव कराए जाएंगे।
0: प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2026 के विरोध में राज्य के सभी सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के 12,000 से अधिक शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी आज सामूहिक अवकाश पर है। इन सभी ने विश्वविद्यालय मुख्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। शिक्षक संगठनों ने प्रस्तावित अधिनियम से विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। पूर्णिया के श्रीनगर में सबसे अधिक 58.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
3: दिनांक 11 अगस्त को उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम भाग में कुछ जगहों पर आंधी तूफान बिजली गिरने की संभावना है।
0: आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है।
4: सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ, मुजफ्फरपुर के गरीब नाथ, सोनपुर के हरिहर नाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, पटना के बैकटपुर धाम, लखीसराय के अशोक धाम, मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलहेश्वर स्थान और सहरसा के मटेश्वर नाथ मंदिर समेत विभिन्न मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर जलाभिषेक कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पहली बार कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई। इधर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवड़िया 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। समाचार कक्ष से कल्पना झा।
0: सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। श्री कुमार ने यह पदक पुरुष एकल वर्ग में अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल में भारत के ही विजेंद्र को पराजित किया। विक्रम उमेश कुमार सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी गांव के रहने वाले हैं। वे अब तक 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप ने आज बिहार पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर योगदान दिया। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति संशोधन नियमावली 2026 के तहत दोनों की औपबंधिक नियुक्ति की गई है। पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने दोनों नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षकों का स्वागत किया। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दोहन ने जिला प्रशासन और प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत की। सहरसा, समस्तीपुर और गया में विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 1,01,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से मासिक पेंशन की राशि भेजी गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए है तैयार। और सीतामढ़ी के विक्रम उमेश कुमार ने पेरू के लिमा में आयोजित पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3092 या 97-65-65-750।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बाल मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
7: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
7: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right.

0: तब रामू काका है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
6: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
6: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
10: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
10: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करें 62052-62112 पे।
10: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 अमरजैट पर।
3: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
4: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
5: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67666।
6: ओम नमः शिवाय।
7: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
7: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
7: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
7: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
7: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
7: बोलबम हर हर महादेव।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
9: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
10: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित।
11: भारतीय पैकेजिंग संस्थान दिल्ली में अस्थाई और संविदागत रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद हैं प्रोफेसर प्रौद्योगिकी एमेरिटस एक पद, प्रोफेसर प्रबंधन एक पद, सह प्रोफेसर प्रबंधन एक पद, सहायक प्रोफेसर प्रबंधन 3 पद, सह प्रोफेसर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट पैकेजिंग 1 पद, सहायक प्रोफेसर AI 1 पद, सहायक प्रोफेसर 1 पद, सहायक प्रोफेसर पैकेजिंग डिजाइन 1 पद, सहायक प्रोफेसर प्रिंटिंग एंड ग्राफिक डिजाइन 1 पद, लेक्चरर कम्युनिकेशन स्किल 1 पद, अकादमिक काउंसलर 1 पद, युवा वृत्तिक प्रशासन 2 पद, युवा वृत्तिक इंस्ट्रूमेंटेशन 2 पद, युवा वृत्तिक लाइब्रेरी 1 पद, प्रयोगशाला परिचर 2 पद और पैकेजिंग डिजाइनर 2 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय पैकेजिंग संस्थान की वेबसाइट www.iip-in.com। रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तकनीकी 1 रिक्ति, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तकनीकी 1 रिक्ति। वॉक इन इंटरव्यू किया जाएगा, दिनांक रहेगा 27 अगस्त 2026 और समय रहेगा सवेरे 9 बजे। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना और आवेदन पत्र रेलटेल की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.railtel.in/careers। वेबसाइट पर जाकर आप करंट जॉब ओपनिंग सेक्शन के अंतर्गत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली को आवश्यकता है प्रशासनिक अधिकारी, उपनिदेशक, लेखा सहायक, आशु लिपिक Grade 2 और प्रवर श्रेणी लिपिक की। आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप, पात्रता की विस्तृत शर्तें और ऑनलाइन आवेदन आदि के लिए देखिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की वेबसाइट www.icssr.org। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान वारंगल को आवश्यकता है प्रधान वैज्ञानिकी तकनीकी अधिकारी, प्रधान छात्र गतिविधि और खेलकूद अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी तथा सहायक पंजीयक की। विस्तृत विज्ञापन, योग्यताएं, अनुभव, वेतन आदि की जानकारी उपलब्ध है वेबसाइट पर, जिसका पता है nitw.ac.in/staff-recruit। आवेदन ऑनलाइन ही जमा किए जा सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि रहेगी 19 अगस्त 2026। राष्ट्रीय बाल भवन में आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाने संबंधी सूचना।

0: राष्ट्रीय बाल भवन में वेतन स्तर 7 में सहायक लेखाधिकारी के पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 साल की अवधि के लिए भरने संबंधी एक विज्ञापन 2 मई 2026 को रोजगार समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया तथा दैनिक जागरण में प्रकाशित किया गया था। इन पदों के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तय की गई थी 30 जून 2026, लेकिन इसे अब 30 दिनों तक के लिए और बढ़ा दिया गया है और ये 30 दिन अतिरिक्त गिने जाएंगे इस विज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशन के। रोजगार समाचार पत्र जो 8 से 14 अगस्त 2026 का है, उससे 30 दिनों के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो देखिए वेबसाइट www.nationalbalbhavan.nic.in। एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड को आवश्यकता है एक मुख्य मानव संसाधन अधिकारी की। तैनाती का स्थान दिल्ली रहेगा। रिक्ति संख्या है 1। पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.aiesl.in तथा www.aiahl.in। समेकित मासिक वेतन रहेगा 1,65,000 रुपये। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10 बजे से 2 बजे तक।
3: पता: जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
11: अरे मुन्नी, तुम आ गई? चल मेरा कान का झुमका ला।
12: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
11: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
12: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
13: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
14: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
13: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
14: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
13: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 9939365923। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में।
11: संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। FIH हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में UPI उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को UPI पर MDR शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
12: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
13: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
11: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
14: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
11: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
15: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 3-3 बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में 2 विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार्य बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
11: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
16: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
11: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
17: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
11: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
18: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर में।
11: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खिंगांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
19: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
11: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
20: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
11: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और herghartiranga.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
21: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
11: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नृत्य निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने देने की अपील की। कहा गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
3: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
22: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
23: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
3: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
24: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
22: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
25: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
25: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
25: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
25: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
24: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
24: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: ठक ठक।
26: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
27: अच्छा मिला ही नहीं।
26: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
27: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
26: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
27: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
28: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। बुधवार को गोपालगंज आ सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 40,000 से अधिक लोगों का हुआ ऑनलाइन इलाज। सड़क हादसे में ससुर और बहू की हो गई दर्दनाक मौत। गंडक नदी में डूबे एक युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि का किया हस्तांतरण। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का गोपालगंज आगमन होने वाला है, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ स्वागत की तैयारी में जुट गया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए DM और SP ने मोर्चा संभाला है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, नेता और स्थानीय विधायकगण भी मुख्यमंत्री के आगमन से उत्साहित हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री बुधवार को आ सकते हैं, हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, परंतु प्रशासनिक स्तर पर तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी चल रही थी, परंतु अचानक कार्यक्रम निरस्त हो गया था। अब फिर से बुधवार को मुख्यमंत्री के आगमन की जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे बिहार स्तर पर गोपालगंज जिले का नाम रोशन किया है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक महीनों में 40,000 से अधिक मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श दिया है। दरअसल ई संजीवनी टेली कंसल्टेंसी अभियान चल रहा है, इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने घर, परिवार या गाँव क्षेत्र से ही ऑनलाइन स्वास्थ्य विभाग से चिकित्सकीय परामर्श ले सकता है। और बताया जा रहा है कि एक महीने में 40,000 से अधिक लोगों ने इस अभियान का लाभ उठाया है। गांव में रहने वाले मरीजों को अब सामान्य बीमारी के इलाज के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय स्थित अस्पताल की दौड़ लगाने की जरूरत कम हो रही है। गांव के नजदीकी स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते ही मरीज वीडियो कॉल के माध्यम से सीधे डॉक्टर से जुड़ रहे हैं और अपनी बीमारी के बारे में चिकित्सकीय सलाह ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ई संजीवनी टेली कंसल्टेंसी सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को मजबूत करने के साथ साथ डॉक्टर और मरीज के बीच दूरी को भी कम कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही बताया जा रहा है कि एक महीने में 40,534 मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। लक्ष्य के मुकाबले 172% उपलब्धि हासिल कर गोपालगंज जिला पूरे बिहार में पहले स्थान पर पहुंच गया। लक्ष्य से दोगुने मरीजों को इस सेवा का लाभ मिला। आज कुचायकोट थाना क्षेत्र के सांसा मूसा के बेलवा गांव के पास नेशनल हाईवे पर एक भीषण दुर्दांत सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार एक वाहन ने बाइक सवार बहू और ससुर को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दोनों के शव भी छत विछत हो गए। सूचना मिलने के बाद कुचायकोट पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लिया। इस दौरान जैसे ही लोगों को जानकारी हुई और स्थिति को लोगों ने देखा तो मौके पर हड़कंप मच गया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई घंटों तक आवागमन को जाम कर लोगों ने विरोध किया। प्रशासन के वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझा कर स्थिति को नियंत्रित किया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृत दोनों व्यक्ति बिशंभरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया खास गांव के रहने वाले 60 वर्षीय दीनानाथ ठाकुर और उनकी 40 वर्षीय बहू सोना देवी बताई जा रही हैं। दोनों किसी काम से मोटरसाइकिल से आए थे और इसी दौरान जाते समय कुचायकोट के बेलवा गांव के पास यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक रॉन्ग साइड से आया और बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके वजह से दोनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। एक सड़क हादसा माझा थाना क्षेत्र के भड़कुइया गांव के पास का भी बताया जा रहा है। यहां देवघर से पूजा कर लौट रहे 70 वर्षीय एक कांवरिया की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है मृतक बस से नीचे उतरकर टहल रहे थे, इसी दौरान अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे कांवरिया की मौके पर मौत हो गई। मृतक कांवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले रामचंद्र गुप्ता बताए जा रहे हैं। माझा के भड़कुइया गांव के पास हुए इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और आगे इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। दो दिन पहले गंडक नदी में डूबे एक युवक चिंटू यादव का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। लगातार गंडक नदी में सर्च अभियान चलाते हुए SDRF की टीम ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस आगे विधिक कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक भैंस चराकर घर लौट रहा था, इसी दौरान नदी में तेज धार के चपेट में आने से नदी में बह गया। युवक माझा थाना क्षेत्र के बलुही बाजार के पास गंडक नदी में डूब गया था और भैंसही गांव का ही यह चिंकू यादव था। पुलिस ने आज जैसे ही शव बरामद किया तो परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से पुलिस ने लगातार अभियान चलाकर शव को ढूंढने का प्रयास किया था। आज मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा गया और इसमें आगे की जाँच पड़ताल की जा रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जुलाई महीने के सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि का DBT के माध्यम से आज हस्तांतरण किया गया। इसका पूरा कार्यक्रम जिला समाहरणालय में आयोजित किया गया था। बताया जा रहा है कि अगस्त माह के पेंशन की राशि लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से भेजी गई। हस्तांतरण मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस दौरान जिला मुख्यालय में समाहरणालय कक्ष में आयोजित इस लाइव कार्यक्रम में जिलाधिकारी समीर सौरभ और सामाजिक सुरक्षा जिला जनसंपर्क पदाधिकारी DPO ICDS सहित तमाम पदाधिकारीगण और सैकड़ों की संख्या में विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। इस योजना का उद्देश्य वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। जिले के विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत कुल 2,77,963 लाभार्थियों के खाते में 30,57,00,000 रुपए DBT के माध्यम से हस्तांतरित किए गए। पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। DBT प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख को यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजे जाने से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनी हुई है। हथुआ राज की पुष्पा शाही ने 5 लोगों पर जमीन का जाली पेपर बनाकर 8 बीघा जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। उन्होंने हथुआ थाने में आवेदन देकर बताया कि उनकी जमीन हथुआ पैलेस के पीछे मौजा गोपालपुर में है और उनकी जमीन का कुछ लोग जाली दस्तावेज बनाकर अवैध कब्जा करने की नीयत से लगे हुए हैं। उन्होंने थाने में आवेदन देकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इधर जिन लोगों पर उन्होंने आरोप लगाया है उन लोगों के द्वारा इस आरोप को निराधार बताया गया है और उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन से न्याय की उम्मीद है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की अध्यक्ष गीता गुप्ता के निर्देश के आलोक में कम्युनिटी मेडिएटर्स का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनूप कुमार उपाध्याय द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र सौंपते हुए दायित्व बोध कराया गया। अब ये कम्युनिटी मेडिएटर्स ग्रामीण स्तर पर मध्यस्थता का कार्य कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आज जन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई की गई। इस दौरान डीएसपी मुख्यालय विजय कुमार मिश्रा ने लोगों की फरियाद को सुना और उसे संबंधित पदाधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए निर्देशित किया। सासामुसा रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में एक युवक को पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवक नशा खुरानी गिरोह का शिकार हुआ होगा, ऐसी आशंका लोग जता रहे हैं। कथित तौर पर नशीला पदार्थ खिलाकर लूटपाट करने की बात लोगों के द्वारा कही जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने पीड़ित युवक की पहचान की है। यह कुचायकोट थाना क्षेत्र के रामगढ़ का रहने वाला विनोद भगत बताया जा रहा है। फिलहाल पीड़ित का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सावन की आज दूसरी सोमवारी पर जिले के सभी शिवालयों में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोग भोले बाबा को जल समर्पित करने के लिए सुबह से ही कतारों में दिखाई दिए। थावे दुर्गा मंदिर परिसर में भी कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भीड़ को देखते हुए डीएमएसपी के निर्देश पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले शिवालयों पर पुलिस बल की तैनाती दंडाधिकारियों के साथ की गई है। भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था को लेकर भी पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने भी अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। उन्होंने संबंधित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। कुछ मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर समस्याओं के शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जनता की शिकायतों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विजयपुर थाना की पुलिस ने चोरी की एक मोटरसाइकिल के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। बताया जा रहा है कि पानी वाले 5 मोटर पंप और चोरी की एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोटियारी बगीचा के पास छापेमारी की और यहां पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को खदेड़कर पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में नौशाद अंसारी पिता मनसरीम अंसारी साकिन मुसहरी, बिरजू राम पिता नागेंद्र राम साकिन धोबोल, तरवेज आलम पिता जमालुद्दीन अंसारी साकिन मुसहरी, ये सभी विजयपुर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। आरोपियों के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और चोरी के पंप मिले हैं। इनके ही निशानदेही पर चोरी की घटनाओं में शामिल विधि विरुद्ध बालकों को पकड़ा गया है। दोनों विधि विरुद्ध बालकों को भी निरुद्ध करते हुए इस पूरे कांड में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। बुधवार को गोपालगंज आ सकते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। 40,000 से अधिक लोगों का हुआ ऑनलाइन इलाज। सड़क हादसे में ससुर और बहू की हो गई दर्दनाक मौत। गंडक नदी में डूबे एक युवक का शव पुलिस ने किया बरामद। मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि का किया हस्तांतरण। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: ओम न
25: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
25: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
25: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
25: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
25: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
25: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
12: सुनिए सुनिए सुनिए,
13: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
12: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
13: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
12: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
14: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
15: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
16: तो रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
17: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
16: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
17: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
16: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
17: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
18: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
16: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।

0: डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ ढेर है मेरे दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।
2: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम के हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 94.4 FM पे समय 9:30 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और लेट हो गए हैं आप सभी के बीच, लेकिन कार्यक्रम को स्टार्ट कर दिए हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165696। ध्यान रखना कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो आप लोगों को पुराने गाने की फरमाइश करना है ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। ऐसा ना हो कि आप नए गाने की फरमाइश करें और आपकी फरमाइश हम ना प्ले कर पाएँ और आप इंतज़ार करते रह जाएं। तो ऐसी घटना आप अपने आप को ना बनाएं, क्योंकि कार्यक्रम स्पेशली पुराने गाने के लिए ही यह बना हुआ है। ये बातें हर रोज़ आप सभी से निवेदन पूर्वक की जाती है और कई श्रोतागण हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा समझने की प्रयास करें और पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो रेडियो रिमझिम, नमस्कार सोनू भाई, सभी दोस्तों को नमस्कार बोलिएगा। मैं राजेश प्रसाद सूरत से आपको सुन रहा हूँ और आज मुझे भी एक गाना सुनना है। गाने का बोल है, रेशमी झुलफे ये शरबती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये गाना सबसे पहले आपको और सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को और मीडियम जी के साथ सुनना चाहता हूँ। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और काफ़ी प्यारा गाना है और ये गाने सुनने के बाद से बहुत दिल खुश हो जाता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू सर जी, कैसे हैं आप? अनूप यादव जी तो बिल्कुल बढ़िया हैं। अनूप यादव जी, आप भी बन रहे हमारे साथ और आप बताएं कि आप कैसे हैं। फिलहाल आगे भी गाने के फरमाइशों वाला मैसेज सेंड करें ताकि समय रहते हुए आपकी भी फरमाइश हम सुना सकें। आगे अभी तो दो ही मैसेज हमारे पास पहुंचे हुए, तो चलिए मैसेज पहुंचेंगे तो शामिल करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं गाने के साथ। गाने का बोल काफ़ी प्यारा पहुंचा हुआ है, ये शरबती आँखें।

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करेंगे और आगे कुछ से गाने की भी फरमाइश है, तो अगले गाने भी हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, आप कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार यानी सलाम बोलिएगा, और सावन की दूसरी सोमवारी को ढेर सारी शुभकामनाएं है और आप सभी को। मुझे आज सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग का बोल है, हे शिव शंकर मेरे भोलेनाथ डेडिकेट। तो बिल्कुल जब गाने हम प्ले करेंगे तो आप ये सारे मैसेज शामिल करेंगे। और यहाँ पे आगे मैसेज करती हैं, वाह काफ़ी प्यारा सॉन्ग, बिल्कुल इन्हें ही देखकर जी रहे हैं सभी। और इस मैसेज को करती हैं रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि नींद आई है तेरी यादों के, नींद आई है तेरी यादों के साथ, नींद भी रूठी है तेरे बिना, आज दिल बस यही पूछता है हर पल मिलने कब आओगे मेरे। बस हर पल मिलने कब आओगे मेरे पास। हेलो हाय, क्या हाल है? सोनू भैया गुलाम हुसैन वेस्ट मुंबई से, और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मेरा एक वीक 3 दिन हो गया है, और सुनो भैया अनूप यादव, तो बिल्कुल यदि आपकी फरमाइश पहुंचती है तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। हम तो पहले ही बोल चुके हैं आपसे कि यदि आप फरमाइश करते हैं तो पूरा करेंगे समय रहते। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा, हेलो सर मैं भी आ चुकी हूँ आपके शो में और मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करती हैं निशा पांडे, बिल्कुल बने रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, और चलिए मैसेज पहुँचाने के बाद फिर डिलीट भी कर दिए, तो यदि मैसेज पहुंचता है तो शामिल करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे, और अगले गाने के फरमाइश हमारे श्रोतागण जी अरशद जी हैं, और डेडिकेट है नशीमा सरीना जरीना, इन सभी के साथ सुनना चाहते हैं। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं और गाने का बोल देते हैं अखियों के झड़ोखों से। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे।

काफी प्यारे गाने सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और कौन से गाने सुनने हैं, गाने का नाम और कहाँ से मैसेज कर रहे हैं, उस स्थान का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। और बशर्ते आप लोगों को ध्यान देना है कि पुराने गाने की फरमाइश पूरी की जाती है, तो पुराने गाने की फरमाइश ही करेंगे। जैसे कि आप सभी अभी सुन रहे हैं दो गाने, और तीसरे गाने भी ओल्ड इज गोल्ड, रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज़ों में प्ले होगी। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ, तो मैसेज को शामिल करते हैं। और आगे लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं भी आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। कहते हैं कि नाइस सॉन्ग, बिल्कुल काफ़ी प्यारे सॉन्ग। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सर प्रणाम, मुझे चल रे कंवरिया शिव के धाम गाना सुना दीजिए, मेघनाथ माझी जी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि गाने का बोल परदेसी, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, अनूप यादव जी मैसेज करते हैं। चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो भैया, गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? तो बिल्कुल बढ़िया, आप सभी के बीच उपस्थित हैं। और मैसेज करती हैं सजदा मिरगंज से। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं रोशनी की। और इनके तरफ से ही गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। कुछ से डेडिकेटेड नाम में भी है, तो उसको भी शामिल कर दें। और लिखा गया है कि डेडिकेट आपको एंड मेरी सिस्टर हैं सब, प्रियांशी, पूजा, कुछ से रेडियो दोस्त हैं, रानी, रजनी, संतरा, कुशवाहा, सविता चौहान, असद चौहान, निशा सिंह, निशा भारती, सबीना पी, शिल्पी सिस्टर, इरफान भैया, कमरान भैया, अर्केश भैया, गुलाम भैया, समीर भैया, दिलीप भैया, वीरेंद्र भैया, लवली भाभी एंड ऑल रेडियो फ्रेंड्स को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: प्रसाद क्लिनिक।
5: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
4: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
5: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
6: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
6: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
9: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
10: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म, और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MGM 94.4 FM पे। सो चल रहा है SMS फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को देखा जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि दिल से थैंक्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो MGM सुनने के लिए रोशनी। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि भैया मुझे भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे साजिदा। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग, मैसेज करने वाले रुखसार जादूपुर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि जब आपके एक दूसरे के बिन दिल या रहा नहीं जाता तो हमेशा के लिए एक हो जाए भाई, पर सोनो बाबू हम भी जुड़े हैं, जगह हो तो हमें भी एक सॉन्ग सुना देंगे। वीरेंद्र गुप्ता भैया के करिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से मैसेज किए हो, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और देखे तो समय तो बहुत कम ही है, मैसेज कर दीजिए गाने के फरमाइशों वाला, यदि समय मिलेगा तो पूरा करने की कोशिश रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे, और इस गाने के फरमाइश करने वाले हैं अनूप यादव जी, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है परदेसी, परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। तो चलिए इनके गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो MGM 94.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेमझिम 94.4 FM पे सुन रहे हैं और इस शो चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ और मिसेज पहुँचाने वाले गुलाम हुसैन वेस्टे मुंबई से और गाने का बोल देते हैं उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। और इस गाने को डेडिकेट करते हैं मासूम कैसर जुनेद कमरान भाई नौसाद फरहान और जगदीप आयुष प्रिंस लक्की शमीर शाकिब रुबीना ब्यूटी हिना गुड़िया सजदा गुलशन शबीना यास्मीन सलेहा रोशनी आफरीन और आपको हमें भी। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा देखा जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर जी गाना बजाने के लिए। अनूप यादव जी मैसेज करते हैं चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए और यदि समय से मैसेज पहुँचेगा मेरे पास समय रहेगा तो ऐसा नहीं है कि हम किसी की गाने ना सुनाएं, सबकी गाने सुनाने की कोशिश रहता है मेरा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है हेलो सुनो भैया नमस्ते MD 97 दरभंगा भाजीदपुर से। और आजकल तो सभी सॉन्ग लाजवाब सुनाए हैं बस इसी तरह सुनाते रहिए रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को थैंक्स। मैसेज करते हैं नौसाद जी तो आप बन रहे हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया कि वेरी नाइस सॉन्ग बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना चाहिए बट परदेश जाना भी मजबूरी है। मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि मुझे भी गाना सुनना है तो गाने सुनने हैं तो आज तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि काफ़ी समय निकल गए हैं और बहुत कम समय मेरे पास बचे हुए हैं कल कोशिश रहेगा। और आगे बढ़ते हैं अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और गाने सुनते हैं गुलाम हुसैन की पसंद उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में देखती रह जाएगी सखिया बेचारी।

बिल्कुल उठा कर ले जाइए, लेकिन हम लोग को भी बताइएगा क्योंकि हम लोग को भोज खाना है। गुलाम हुसैन कब लेकर जा रहे हैं? और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सनविया गुड नाइट। सजदान सारी मैसेज करती हैं और कहते हैं कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। तो चलिए आपकी सॉन्ग सुनाएंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है मेघनाथ माझी जी करते हैं, सर मेरा गाना नहीं बजेगा क्या? तो कई गाने आज नहीं बज पाएंगे। आगे मैसेज पहुंचा, काफ़ी प्यारा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और कहते हैं कि थैंक्स मुझे सॉन्ग सुनाने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है सुपर ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक्स सनविया। बिल्कुल सुपर सॉन्ग तो है, लेकिन आप जवाब दे कि हम लोग को बुलाएंगे कि नहीं, क्योंकि लगन आप लोगों का चालू हो गया है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सनो बाबू जब दोनों की राय विचार ज़बरदस्त है तो ज़बरदस्त से ढोली में उठ कर ले जा। लिखते हैं कि ज़बरदस्ती से डोली में उठा कर ले जाने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैसेज करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया और आगे मैसेज पहुंचते जा रहे हैं। मैसेज पहुंचा सनो भाई गुड नाइट। अनूप यादव जी मैसेज करते हैं, अभी रोकना है, अभी एक दो गाने और सुना जाएगा क्योंकि कार्यक्रम लेट से स्टार्ट हुआ है, तो दो गाने सुनाने का विचार बना हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे हैं हम सभी रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और यहाँ पे हमारे श्रोतागण जुड़े हैं ब्रिज बिहारी पांडे जी राजेंद्र नगर गोपालगंज से, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि लुप छिप बदरा में चमके जैसे चंदवा, काफ़ी पुराना गाना फरमाए हुए हैं, तो इन्हीं के गाने हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे कुछ मैसेज है तो मैसेज देख ले। और लिखा गया है कि भैया बहुत बहुत शुक्रिया सॉन्ग सुनाने के लिए, साजदा मैसेज करते हैं। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रिमझिम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है रोशनी की तरफ से, बिल्कुल काफ़ी प्यारा सॉन्ग। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग तो आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे समय बहुत कम है मेरे पास। और आगे हम पांडे जी की फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं, और आप सब बने रहें, अभी एक दो और गाने सुना जाएगा रेडियो रिमझिम 94.4 एफएम पे।

रेडियो एमसीएम 94 एफएम पे काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे, ओल्ड इज गोल्ड। और इस गाने के फरमाइश किए हुए थे ब्रिज बिहारी पांडे जी और राजेंद्र नगर गोपालगंज से। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बहुत खुश हैं। चलिए, हम लोगों का कोशिश रहता है कि सब कोई खुश रहे, खुशी के लिए यही कार्यक्रम चलता है। और बस आप लोगों से विनती रहता है कि जैसा कार्यक्रम चले वैसे गाने की फरमाइश करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो प्रणाम सलाम, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे ऑल लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, निशा भारती विलेज ओजवलिया मुझका गांव प्रखंड से, और सारे सॉन्ग लाजवाब सुपर हिट। बिल्कुल स्वागत है आपका भी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे एक और मैसेज पहुंचा हुआ है, उसको शामिल कर दें। लिखा गया है कि काफ़ी प्यारा सॉन्ग, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और इस मैसेज को करने वाले हमारे श्रोता हैं। लिखा गया है कि गुड नाइट आपको और सभी रेडियो फ्रेंड्स को, और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे। और

और यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। वीरेंद्र गुप्ता भैया के एक और मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ था और मिल नहीं रहा है। लिखा गया है कि मिल चुका है, लिखा गया है कि क्यों नहीं सबको बुलाएंगे सनम भैया, जब डोली में ले जाएंगे वो कोई नहीं रोक सकता, सबके सामने ले जाएंगे। गुलाम हुसैन, चलिए आप ही के मैसेज ढूंढ रहे थे और फिर से रिपीट किए हुए हैं, तो आपके मैसेज हमने शामिल कर दिए, बिल्कुल बुलाइएगा और हम सभी को, यही नहीं कि एक को, यहाँ पे सब कोई आपके इंतज़ार में लगे रहेंगे और जैसा मैसेज पहुँचेगा वैसे आपके द्वार पे पहुँचने की कोशिश करेंगे। आगे मैसेज तो पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़, तो आज तो नहीं पा रहे, अंतिम गाने हम प्ले कर रहे हैं और गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है खरिया रक्सौल नेपाल बॉर्डर से और गाने का बोल भी है, चल चल रे कंवरिया काठमांडू। तो चलिए अब चलते हैं हम सभी और वहीं पे शिव जी का दर्शन करते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, सुनते रहें रेडियो 96.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
2: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 today, with Rajya Sabha returning it to Lok Sabha after discussion. The Lok Sabha has already passed the bill. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman had moved the bill. The bill seeks to amend the Payment and Settlement Systems Act 2007, the Income Tax Act 2025, and the Finance Act 2026. The legislation will replace the Income Tax Amendment Ordinance 2026, which was promulgated on 5th June this year. Replying to the discussion, the Union Finance Minister said that the objective of the bill is to strengthen India's manufacturing ecosystem, attract further investment, generate employment, and promote manufacturing activities. She said, the second major reform relates to providing tax exemptions to foreign companies procuring data services from specified data centers in India and enhancing ease of doing business. The minister clarified that the bill does not impose any tax or transaction charge on UPI users.
1: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
4: The Parliament also passed the Bankers Books Evidence Bill 2026, with Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Lok Sabha Speaker Om Birla today made a personal appeal to the floor leaders to cooperate in the smooth functioning of the House and participate in the discussion on key bills. Mr. Birla stated this during the Business Advisory Committee BAC meeting held at Parliament House. He said, "The people's issues cannot be left waiting in the corridors, and they must be reflected, debated and resolved on the floor of this House." Speaking to reporters at the Parliament premises after the BAC meeting, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready for a detailed discussion in Parliament regarding the recent student protests and related issues. Mr. Rijiju appealed to the opposition to allow the House to function so that Union Home Minister Amit Shah can make a statement about the students' protest and address all concerns raised by the opposition members. In Jharkhand, protests have intensified over alleged irregularities in recruitment examinations after clashes between students and police during assembly march in Ranchi. Thousands of aspirants led by the JPSC-JSSC reforms marched towards the Vidhan Sabha and attempted to cross several barricades, following which police used water cannons and tear gas. The protesters are demanding an independent CBI probe into the JSSC-CGL examination and comprehensive reforms in the JPSC-JSSC examination system. The 80th Independence Day celebrations this year will highlight Yuva Shakti and the contribution of young India towards building a Viksit Bharat by 2047, along with the commemoration of 150 years of the national song Vande Mataram. Briefing media in New Delhi today, Defence Secretary Rajesh Kumar Singh said the celebrations will be led by Prime Minister Narendra Modi from the historic Red Fort. The Prime Minister will unfurl the national flag and address the nation. For the first time, the national song will be sung from the ramparts of the Red Fort during the Independence Day ceremony. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of national song Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. 47 people were killed and dozens of buildings collapsed in cities across western Colombia today after a powerful 7.4 magnitude earthquake struck. And that is the end of this news bulletin.
0: Ab suniye, aaj shaam saadhi. रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
2: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: इतना सवाल एक बार पूछ ले बू, पहले अपन बताओ तो हम अपन बताओ तनी।
2: अच्छा तो सुन लो, खोल के ना बताई, बिशारा के बाद इशारे में समझ ली है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: All right।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हाँ हेलो।
1: हेलो
2: जी।
1: हाँ, नमस्ते।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: मैम, गाना सुनना है।
2: जी जी, कौन सा गाना?

0: सुना आपको
1: सावन का महीना अलग है।
0: सावन का महीना पवन करे शोर।
1: हाँ
0: अच्छा जी, और गाना डेडिकेट भी है, बोल रहे हैं गाना किसी को सुनाना भी है
1: जी,
0: बता दीजिए।
1: अपने पति को सुनाना है।
0: अच्छा जी, बढ़िया है। अपने पति का नाम भी बताएंगी?
1: अक्षय
0: अच्छा, आप सभी ठीक है ना?
1: हाँ बस।
0: जी, वैसे आप रेडियो रिमझिम कितने दिनों से सुनती हैं?
1: बहुत दिन से सुनते हैं।
0: अच्छा, रेडियो रिमझिम का कौन कौन सा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है?
1: आपको यही अच्छा लगता है गाना वाला शौक है जो दिल में रहता है, बोलो और सुनो।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, चलिए फिर, अच्छा है आपको अच्छा लगा रेडियो रिमझिम में कॉल किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: हेलो
1: नमस्ते मैडम
0: जी। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: मैं राजू बोल रहा हूँ गुजरात सिलवासा से।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ।
1: आप सबने को गाना सुना था मैडम,
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: सावन का कोई गाना सुना दीजिए, नया खेसारी लाल का।
0: अच्छा, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: हाँ हाँ, सभी दोस्तों को और सबने जितने रेडियो टीम वाले हैं हमारे साथ।
0: वैसे रेडियो रंजन को आप कितने दिनों से सुनते हैं?
1: काफी साल हो गया है, बोले तो 5 साल हो गया है सुनते सुनते।
0: अच्छा,
1: हाँ, खाली कॉल के माध्यम से मैं जुड़ता हूँ बस।
0: अच्छा जी।
1: हाँ, बाकी सब तब कार्यक्रम सुनते हैं। हाँ, मोबाइल के द्वारा सुनते हैं।
0: जी जी, चलिए फिर बढ़िया है, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ठीक है, थैंक यू मैडम,
0: वेलकम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone din de bajte hai to kehte hai hello.
0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029494011। जी हाँ, 80029494011। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो

0: 90.4 FM में।
1: मनोरमा मैम?
0: नहीं,
1: भारती जी मैम। नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: क्या हाल है? आज रविवार ड्यूटी पे।
0: हाँ।
1: हम धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। बहुत बार ट्राई कहीं फोन में ना लगा, एक बार लगभग कल तक ना उठा।
0: अच्छा, अब वही के बताए, रिकॉर्ड करत रहे।
1: हाँ, उन्हें बताए तो कोई ना, कल बहुत परेशान हो गए, 12:30 बजे तक उनको लगभग कही बाद में उठल ना।
0: और सब बढ़िया बा?
1: अच्छा ठीक बा। बारिश वरिश होता
0: ना? बारिश नहीं छे अभी।
1: तो ना चली क्या?
0: चली,
1: लेट चली
0: ना, एकदम टाइम पे चली आज।
1: अच्छा, तो रिकॉर्डिंग फिर से पूरा हो जाए?
0: रिकॉर्डिंग पूरा हम 12 बजे तक करें।
1: तो रिपीटे चलत रहे कई दिन पुराना, कालो चलत रहे गाना।
0: और गाना कौन सा सुने पड़ेगा
1: आज? आज गाना ना दिन हुआ दीपक बिल्ला के, कौन सा टावर पर चढ़े वाला गाना।
0: अच्छा, जो टावर वाला सॉन्ग है वही?
1: हाँ, टावर वाला सॉन्ग हमें याद नहीं है, गाना भी हमें दिमाग और नहीं हो, कैसे खाली टावर वाला याद बा।
0: गाना डेडिकेट भी
1: बाउरा के रही, मनोरमा मैम के रही, सोनी मैम के रही। चलो ठीक है, सब गाना सुना दो।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनाते रहिए रेडियो।
1: चलो सुना दो, इंतजार।

0: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैम, कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हाँ जी मैम, लगता है आज फालतू दिन है क्या?
1: लग तो रहा है।
0: हाँ वही तो, आवाज चेंज है दो दिन से, नहीं साप्ताह हो गया आपको एक

0: नमस्कार। इसरो में आए हुए आपका इंतजार था बहुत पहले से इसरो में।
1: अच्छा,
0: लिए एडवांस में धन्यवाद बोलते हैं इसरो में आपको आने के लिए। मैम आज तो एक घंटा हम कोशिश किए तब जब लास्ट में लगा है।
1: अच्छा, एक घंटे से लगा रहे हैं आप?
0: जी मैम, आज तो पता नहीं क्या हो गया था, लग ही नहीं रहा था।
1: नहीं, लगातार कॉल आते हैं ना तब तक नहीं लगता है।
0: मैम तो इतना पीछे कभी नहीं जाते हैं, फर्स्ट बार, मतलब जब से रेडियो में जुड़ते हैं तब से फर्स्ट बार इतना लेट लगा है।
1: अब कॉल रहेगा तो कॉल वेटिंग में जाएगा ना?
0: नहीं, ये भी हो सकता है कि मतलब आप ज्यादा दिन पे आई हैं इसरो में तो बहुत लोग पूछ रहे होंगे, इसलिए लंबा हो जाए। मैम तो गाना फरमाइश करने से पहले एक बात बोलना चाहेंगे, यही
1: बता दीजिए,
0: पूछना चाहेंगे यही, मतलब ज्यादा लेट लगा है तो आज नहीं बजेगा?
1: देखना पड़ेगा कि अब देखिए, आज नहीं तो कल बज ही जाएगा। लेकिन
0: अच्छा मैम, जो जुम्मा को बजता है मतलब आज शुक्रवार को, वो वाला तो मतलब रिपीट नहीं चलता है?
1: नहीं,
0: क्योंकि हम कभी कभी शाम को नहीं सुन पाते हैं तो रिपीट में मतलब सुनते हैं। तो मतलब मैम गाना का फरमाइश आज यही है, गाना का नाम है बेवफा प्यार की राहों में।
1: अच्छा जी,
0: सुनी होंगी, बहुत ही अच्छा गाना है।
1: सुने हैं
0: जी, उदित नारायण और अलका याग्निक का आवाज है, वही वाला सुनना था।
1: बिल्कुल, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
0: डेडिकेट रहेगा आपको और मरुमा मैम को और सभी सुनने वालों को जितने भी 90s के फैन है। मैम रेडियो में हम मतलब रेडियो जो है ना, बहुत पहले से हम मतलब हमारा सपना एक था कि रेडियो में हम रेडियो का आवाज बने, लेकिन बन नहीं पाए इस कारण से, इसलिए जुड़ के अपना गाना सुन के ही एंजॉय करते हैं, क्या कर सकते हैं।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: तो मैम सुनते तो हम डेली कोई भी शो मिस नहीं करते हैं।
1: अच्छा जी,
0: रेडियो से हमको बहुत ज्यादा लगाव है ना मैम।
1: रेडियो सुनना अच्छा लगता है, ये बात अच्छा लगा सुन के।
0: हाँ, और एक सप्ताह से आप आई हैं तो और भी आज अच्छा लगेगा सुनने में शो को।
1: अच्छा,
0: और योर वॉइस योर चॉइस में आप मेरा मैसेज ही शामिल नहीं करती है, लगता है आप भूल जाती है शो में हमको।
1: नहीं नहीं, शो में किसी को भूलते नहीं है, सबका मैसेज शामिल करते हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है।
0: देखिए मैम, 3 दिन से हम मैसेज कर रहे थे पिछले हफ्ते में, आप लास्ट वाले दिन में मतलब बजाई थी और बोल रहे थे।
1: कोई बात नहीं, हो जाता है।
0: आज तो चलेगा?
1: हाँ हाँ चलेगा,
0: आप आइएगा।
1: आप वैसे ठीक है फिर?
0: धन्यवाद मैम।
1: ओके, रेडियो रंजन कॉल के इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
6: नमस्ते मैम।
5: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
6: बीरबा अब्दुल चौहान।
5: और कहाँ से हैं आप?
6: मुनिया समस्या के पास।
5: जी जी, कौन से गाने की फरमाइश है?

0: सुना दीजिएगा। सुनने वाला बलवानी कुमार वो भी यूनिट हुआ था, अमन कुमार यूनिट हुआ था वो भी, सचिन कुमार, रवि कुमार, तो सबको यूनिट हुआ था।
1: वैसे आप रेडियो रिमझिम कितने दिनों से सुनते हैं?
0: हमको सुनते हुए कम से कम 9-10 साल हो गए। पहले केरला में था, सूरती में थे। आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम भारती है।
0: हाँ भारती, अभी तो नाम आपने सुना था रेडियो में, सुनता रहता हूँ हमेशा।
1: अच्छा जी,
0: मगर आपका नाम भूल गया था मैं। अभी सूरती मैम के, दिव्या मैम के, सब कोई का नाम अभी याद आता है हमको।
1: अच्छा जी,
0: चलिए पल्ली मैम कह रहा है।
1: हाँ हाँ,
0: चलिए कब तक सुना दूंगे?
1: शाम को 5 से 7 के बीच में जो चलता है उसी में।
0: वो तो पता है, क्या पता कहीं चला
1: आज चलेगा तो, नहीं तो कल चलेगा जरूर।
0: अभी तो पहले केरला से लगाता था, अभी अभी मैं जयपुर में हूँ राजस्थान में। पहले केरला रहता था तो वहाँ से फोन लगाता था, वहाँ से बात कर चुका हूँ। अभी दिल्ली आया हूँ, जयपुर में, राजस्थान है, यहीं से अभी फोन लगा रहे हैं।
1: जी जी,
0: आज फोन लगाने के लिए छुट्टी मार दिया हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा दिन हो गया था, कम से कम 2-3 महीने हो गया मेरे को फोन लगा कर बात किए हुए। आज छुट्टी मार दिया मेरा, आपका 2300 रुपया, 2300-2500 रुपया मेरा गया।
1: नहीं छुट्टी नहीं लिया जाता है, उसी में कॉल कभी कर लीजिएगा, हो जाएगा।
0: टाइम नहीं मिलता है, सुबह 8:30 से 8:30 बीती है, 8:30 बजे हैं, 8:30 बजे रात को आते हैं।
1: अच्छा,
0: इसीलिए तो टाइम नहीं मिलता है। संडे के दिन छुट्टी रहता है तो संडे के दिन तो चालू नहीं रहता है।
1: नहीं,
0: संडे के दिन तो क्या बोलते हो जो सवाल है वो करते हैं, तो वही टाइम नहीं मिलता है मेरा। 2500 रुपया गया, वो भी छुट्टी मारने में सोचा कि आज बात करूंगे मेरे साथ, 2500 रुपया चला गया, कोई बात नहीं। मगर अपने गोपाल बोलते वहाँ फोन करेंगे, बात करेंगे, आज गाना मांगूंगी।
1: जी जी, चलिए कोई बात नहीं, फिर गाना
0: ठीक है।
1: हाँ हाँ, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
0: ठीक है।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 FM में।
0: वेलकम। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते,
0: हम अरविंद कुमार बात कर रहे हैं त्रिवेणी सुपौल बिहार से।
1: जी जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक है मैडम, अपना सुनाइए।
1: हम सब भी अच्छे हैं।
0: मौसम उधर का कैसे है?
1: अभी तो मौसम हल्की गर्मी भी है, हल्का धूप है, अभी तो नहीं है, धूप आ रहा है, जा रहा है।
0: मैडम मेरे तो काफी बारिश हो रहा है घंटे से।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया है, बारिश हो रहा है तो।
0: मैडम एक सॉन्ग का फरमाइश है आज मेरा,
1: बता दीजिए।
0: सारी रात यादव का भोजपुरी सॉन्ग है, ड्राइवर हो बोलबम सॉन्ग है, प्ले कर दीजिएगा और डेडिकेट रहेगा।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो।
3: हेलो मैडम
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: स्वागत है रेडियो रिमझिम में। देखिए वही हम गोपालगंज से भी सुन रहे हैं। हेलो मैडम, आप सोनी है?
2: नहीं, भारती बोल रही हूँ।
3: सोनी कहाँ से मिल रही है आजकल?
2: ये तो मैं नहीं बता सकती, मुझे नहीं मालूम है, ये हमारी मैनेजमेंट बताएगी आपको।
3: शादी नहीं है
2: जी।
3: मेरा गाना फेमस ही नहीं रहे, करीब 15 दिन

0: गाना दिए हुए तो नहीं बजता है।
1: गाना नहीं बजता है?
0: कहाँ बज रहा है, आगे से 6 महीने से हम चला रहे हैं गाना, तो कहाँ आ रहा है तो गाना मेरा?
1: 6 महीने से नहीं आ रहा है?
0: नहीं, बीच में दो बजे आया था, इसके बाद कहाँ रहा? हम झारखंड से बोल रहे
1: हैं। सुनते हैं?
0: अरे हम 24 घंटा चार्ज में रहता है गोपाल जी रेडियो
1: तो। नहीं नहीं, ये तो ना 5-7 के बीच में चलता है, उस समय सुनिएगा, क्योंकि उस समय इस शो में जितना कॉल होता है सब बजता है।
0: हम रेडियो बजा रहे हैं, रेडियो।
1: हाँ हाँ, रेडियो का ही बात कर रहे हैं। तो ये जो अभी आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ये 5 बजे से 7 बजे के बीच बजेगा।
0: अच्छा, तो हम कोडरमा से बोल रहे हैं, झारखंड कोडरमा। झारखंड कोडरमा सतगावा, ग्राम अम्बाबाद पुटोली से बोल रहे हैं
1: जी।
0: मेरा नाम हुआ रविकांत कुमार, मेरा फरमाश है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: मूवी है ना ये, गाना इसमें का कौन सा सुनना है?
0: गाना है दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे।
1: और गाना भी है?
0: यही इसी में ही गाना है।
1: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: 11 बजे से मेहनत कर रहे हैं लोग।
0: अच्छा,

0: हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत किए है।
1: कहो बात ना,
0: सही समाचार
1: ठीक है, आप बताइए।
0: हाँ भी ठीक है, करीब करीब ठीक है, हुआ गए, हवा चल रहा है, ठीक हो गए। हाँ
1: तो गाना बता दें कौन सा
0: सुना
1: हुआ।
0: गाना हमको बता, ये फूल तो याद नहीं है लेकिन थोड़ा सा याद है। एक बंजारा अंजारा आए, जीवन के गीत सुनाए। हाँ इसी को
1: गाना सुनाए तो वह क्योंकि
0: हाँ पहले आप सुनिए, बाद में पूरा रिमझिम के सब सुनने वाले स्रोत है सब लोग।
1: अच्छा जी, चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुना रहे रेडियो रिमझिम 90.4।
0: हाँ कब कब सुने गए
1: गाना? आज ना तो कल बाद जाए।
0: कल ठीक ठीक है ठीक।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।

0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। नमस्कार,
1: मनीष राजा बोल रहे हैं।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: हम भी ठीक हैं।
1: क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, बस आप सभी से बातें हो रही हैं।
1: गाना सुनना है, सुना दीजिएगा।
0: बच्चे कौन सा गाना?
1: बोलबम के गाना सुनना है।
0: और गाने के बोल?
1: बोलबम के कोई भी गाना सुना दीजिए, खेसारी लाल यादव का पुराना गाना।
0: और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: सबसे पहले आपको पूरा रेडियो रंजन सुनने वाले बताओ।
0: जी जी, और सब ठीक है?
1: और सब ठीक
0: जी। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रेंजिंग 90.4 FM में।
1: हेलो,
0: हाँ बोलिए।
1: हेलो,
0: हाँ नाम बता दीजिएगा अपना।
1: उमा शंकर सिंह बोल रहा हूँ मैं, देवभूमि उत्तराखंड से।
0: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, जकास है, बिंदास है, मस्त है।
0: अच्छा,
1: बारिश हो रहा है। बारिश तो सुबह से हो रहा है, बारिश तो अक्सर हो जा रहा है अभी।
0: हाँ, उधर तो ज्यादा होता ही है शायद बारिश।
1: बहुत बारिश होता है, बहुत लगातार बारिश हो रहा है बहुत दिनों से। कल थोड़ा सा राहत मिला था।
0: अच्छा जी, और सब बताइए, और सब हाल चाल?
1: बहुत बढ़िया है। हमने कहा आज लगाता हूँ फोन आप लोगों से बतियाने के लिए,
0: कभी कभी बात हो जाना चाहिए।
1: समय की टाइम है नहीं मिल पाता ना आप लोगों को, टाइम 11 बजे 12 बजे के बीच में है, और अब उसमें हमारा हमारा काम रहता है।
0: अच्छा,
1: हाँ, इस चक्कर से हमें जल्दी काम निपटाना पड़ता है। अभी बस काम निपटा लिया हूँ तो हमने कहा टाइम है 10 मिनट देखता हूँ, क्या पता बात हो जाए।
0: तो कॉल 12:30 बजे तक चलता है।
1: अच्छा, 12:30 बजे चलता है, ठीक हो गया। अब तो मेरे पास भरपूर टाइम है, 1 घंटे में बहुत कर लूंगा मैं। हमें इतना पता था कि 11 से 12 होता है, इसलिए मेरे दिमाग में 12 बजे तक ही था।
0: 11 से 12 बजे तक होता है,
1: ठीक हो गया। तो हमारे चलिए ठीक हो गया।
0: बता दीजिए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: गाना चुनरी चुनरी करके आता होगा ना। हाँ, वही वाला।
0: और गाना

0: क्रिकेट भी रहेगा।
1: हाँ, कामरान भाई को, उत्तम सोनी को और सगीर आलम, परजू भाई और जितने भी सुनने वाले हैं, आप भी हैं, सोनी जी हैं, सभी लोगों को टिकट रहेगा।
0: जी जी बिल्कुल, तो फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4।
1: ओके, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up.

0: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4।
2: और मैं ठीक हूं।
1: हाँ हाँ, हम ठीक हैं। आप बताइए, आप कैसे हैं?
2: हम तो ठीक हैं
1: जी। नाश्ता हो गया है आपका?
2: हाँ हाँ मैम, नाश्ता हो गया, दुकान पे हैं।
1: अच्छा जी, हाँ। तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
2: साजन का घर, सावन आए बादल आए बुलबुल चलते फूल खिलाए, यही गाना सुनना।
1: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
2: अजय प्रजापति हैं, लुकमान भाई हैं, और कुलदीप भाई हैं, अमित भाई हैं, और रवि, हमारे रवि शर्मा जी हैं।
1: जी जी, ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते हैं रेडियो।
2: हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के बोल रहे हैं
1: जी।
2: अयोध्या डिस्ट्रिक्ट।
1: नाम आपका बता दीजिए।
2: सूरज प्रजापति।
1: जी जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में।
1: थैंक यू। और आपको नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: और सावन महीने की दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ सभी लिसनर्स लोगों को भी।
0: जी जी।
1: सब रेडियो रिंगम परिवार सब ठीक है?
0: सब कुछ ठीक है। आप बताइए, आप कैसे हैं?
1: बस बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, महादेव की कृपा है। आरजे सोनी जी कहाँ है आजकल? तो उनका शो भी नहीं आ रहा है, आप आ रहे हैं उसमें, या फिर उनके शो पे आपका कब्जा हो गया है लग रहा है?
0: नहीं, ऐसा नहीं। अब सर जिसको बोल देते हैं वही काम वही करना होता है हम लोगों को।
1: जी जी, ये जुड़ रहे हैं प्रोग्राम में, मेरा मैसेज शामिल नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों।
0: नहीं तो सबका मैसेज शामिल करती हूँ।
1: तो आज तो सोचे हैं कि आज मैसेज नहीं करेंगे, आज डायरेक्ट कॉल ही करेंगे। और उसमें जानती हैं, उसने कॉलिंग का ही प्रोग्राम उसको कर दिया जाए ना, तो वो अच्छा नहीं लगे, मैसेज अच्छा लगता है।
0: हाँ, मैसेज सबकी बातें शामिल करना होता है तो अच्छा लगता है, कौन क्या बोला है क्या नहीं बोला है उसको पता चल।
1: और उसमें क्या होता है कि आप लोग को थोड़ा टाइम भी मिलता है और लगातार कॉलिंग हो तो फिर तो ठीक है। गाना आज सोमवारी का ही कोई सुना दीजिए, पवन सिंह का गाना सुना दीजिए, एक बहुत वाले गाना आया था कि हमर जान भूखल बाड़ी, ऐसा ही था, सोमवारी का ही गाना है, वही वाला सुना दीजिए।
0: गाना सुनाना भी चाहेंगे किसी को?
1: सभी लोगों को और खास करके कुंवारे लोगों को।
0: अच्छा जी,
1: ठीक
0: चलिए ठीक है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM।
6: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते,
6: गाना सुनेगा
5: जी? नाम बता दिया अपन
6: राम के।
5: और कौन सा गाना सुनेगा?
6: खेसवारी लाल के बंधन फिल्म का गाना। नहीं,
5: कौन सा?
6: खेसवारी लाल के बंधन फिल्म का गाना।
5: अच्छा, मतलब हमें तो बहुत सारा गाना बो, मैं कौन सा गाना?
6: कौन बजा दे गाना? बस याद नहीं किया, कौन सुना दे जाना अच्छा।
5: अच्छा जी, गाना सुनाओगे बा के? गाना मतलब क्यों के सुनाओगे
6: बाटा सब लोग?
5: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रही रेडियो रंजन 24 FM।

0: हेलो
1: हेलो रेडियो रिमझिम।
0: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ गोपालगंज कार्यालय वार्ड नंबर 2 से।
0: जी कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल सही है। गाना हमको सुना दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
1: ये नाम फिल्म का गाना है, ये अपना सी आई है। ये ही गाना सुना दीजिए।
0: और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: बस आप अभी परिवार को रेडियो रिमझिम का जितने श्रोता गण है। कल गाना सुनाएंगे।
0: ये आपको शो चलता है शाम को 5 से 7 बजे और सुबह में रिपीट होता है 9 से 11। जी जी
1: बहुत रिया बहुत मेरी की बात है कि कॉल लग गया, नहीं तो 2-3 बार ट्राई किया लगा ही नहीं है।
0: जी कभी कभी नहीं लगता, बिजी रहता है ना इसीलिए। ओके जी फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो।

0: शहर का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello,
3: hello, hello, hello, hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी जी हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
6: जी जी धन्यवाद मैडम।
7: हेलो
6: जी। हाँ मैडम नमस्ते।
7: नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
6: मैडम मैं चंद्रभान रजवाड़े बात कर रहा हूँ, गांव अनुजनगर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से।
7: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
6: बस मैडम बहुत बढ़िया है हम तो, आप बताइए आप कैसी हैं?
7: हम सब भी अच्छे हैं।
6: जी जी, और मौसम कैसी है मैडम आपकी तरफ?
7: मौसम तो अभी ठीक है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा मतलब ठंडा, एकदम नॉर्मल है।
6: जी जी बिल्कुल, इसी तरह का मौसम तो अच्छा लगता है मैडम।
7: और बताइए, और सब ठीक है आपके यहाँ?
6: हाँ मैडम, अपने यहाँ सभी लोग बढ़िया है। और अपने यहाँ क्या है कि अभी लगातार बारिश हो रही थी 3-4 दिनों से, और कल और आज 2 दिन अभी पानी रुकी हुई है।
7: अच्छा, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: मैडम फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु, और गीत के बोल हैं झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
7: जी जी,
6: गाना
7: किसी को सुनाएंगे भी?
6: जी मैडम, अपने रेडियो मित्र है सरगुजा रेडियो सुरदर्शन के सभी साथी रहेंगे इस गाने में शामिल, और साथ ही रेडियो मित्र।
7: जी जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: ओके मैडम।

0: हेलो
1: हेलो भारती जी।
0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
1: अच्छा, मैं तो आपका रेगुलर श्रोता हूँ, लिसनर। तो मैं बेंगलुरु से गोपाल बोल रहा हूँ, आप तो जानते हैं मैं व्हाट्सएप अधिकारी हूँ। तो आपके साथ आज पहली बार बात हो रहा है। आज तो इसे तो बात मेरा बहुत पहले से भी हो गया, जान पहचान से भी हो गया। तो मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ, मेरा तो गाँव तो है, आप तो सिलीगुड़ी नाम सुने हैं?
0: जी जी।
1: सिलीगुड़ी से आगे इधर जो विधाननगर बोलता है, पाइनएप्पल से यह बहुत फेमस है ना, मैं वहाँ पर रहती हूँ। कैसे है बोलिए?
0: हम सब ठीक है, आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
1: हम भी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपसे बात करने के लिए मैं इसलिए कह रहे थे, भारती जी से बात तो नहीं हुए है। देखिए आज कॉल भी मेरा लाइन भी आ गया हूँ, तो गाना भी तो रिक्वेस्ट मैं कर सकती हूँ, लेकिन आपका वो प्रोग्राम जो बहुत अच्छी तरह चल रहा है ना, यहाँ पर बेंगल में नहीं सुनते, लेकिन बेंगल मेरा मैं जो सुनते हूँ ना, मेरा साथ बहुत दोस्त मेरा सुनते हैं, उसे बोलते हैं बार हिंदी में बड़ी बार, तो हम वो जो सब मोबाइल ऐप में सुनते हैं ना, मैं भी तो मोबाइल ऐप से सुनते हूँ, रेडियो भी है, बस रेडियो में ना क्लियर नहीं आ रहा है, 94.0 जो ये है ना क्लियर नहीं।
0: लेकिन ऐप के जो द्वारा सुनते हैं उसमें तो क्लियर आता है।
1: हाँ वो तो क्लियर आते हैं, वो तो नेट के तरह चल रहा है ना, नेट रहेगा तो होगा नहीं होगा, मेरा घर में तो वाईफाई है लगा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो मैं अभी दुकान से बैठ के मेरा गाना सुन रहा हूँ, लेके इसलिए फोन किया।
0: अच्छा जी, तो बता दीजिए गाने की फरमाइश।
1: गाने का फरमाइश है, अमिताभ बच्चन का एक तो मूवी है ना कालिया, कालिया मूवी का जो जहाँ भी तेरी नजर है मेरी नजर मूवी का गाना तो सुना दीजिएगा, किशन कुमार की आवाज में।
0: जी जी।
1: बहुत बढ़िया फिल्म है वो, एक टाइम में बहुत फेमस हुआ था, हम लोग तो पुराना फिल्में देखे हैं ना। और ये प्रोग्राम तो आपको तो 5 बजे से चलेगा ना?
0: हाँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये मेरा तो गाना तो सबकी डेडी के करते हूँ, आप डीजे परिवार को आपको भी। तो एक दिन मेरा गाँव आए ना, विधाननगर सिलीगुड़ी आए ना, है चला है। आप ये स्टडी करते है क्या, पढ़ाई करते
0: है? जी स्टडी भी है, स्टडी भी।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे है।
0: ओके जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो।
1: ओके ओके थैंक्स,
0: वेलकम।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: तू जतना खर्चा करेबू हम उतना खर्चा करब। ओकरा खाती हम भागल ना है। आ जदी हमरा के छोड़ के गइलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।
2: बनब

0: बेटा जितना तुहरा से रात में बात कोइले बनी न उतना केहू और खाती जागल ना है। लेकिन जदि तू हमार दिल तुरलू तो बुझ ली हम
1: संतोष पागल नहीं।

0: खाली गर्जे वाला बादल ना हो आ जदि हमारा के छोड़ के गयलू तो बुझ लीह
1: हम संतोष पागल नहीं।

0: हालत हुआ कि हम ग्रेड ए पोल नहीं पोल नियर खड़ा हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट कारवा मिनी।
2: सारे गामा कारवा इस तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ।
3: बदन पे सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो जैना, जरा पास

0: अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा। अरे पूरा इंडिया हिली बाबू, खाली तू देखत जा।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिंजन 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिनांक 11 अगस्त 2026 दिन मंगलवार के इस पावन प्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:30 तथा सूर्यास्त शाम 6:30 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य।

ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन दिखाई दे, लेकिन अंत में यही रास्ता सच्ची सफलता और सम्मान तक पहुंचाता है। श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने प्रकृति को जगाना शुरू कर दिया है और हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5 बजने का संदेश दे रही है। नई उमंग, नई ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक मधुर और भक्तिमय गीत के साथ।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।